मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि तदनुसार 25 मई सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव FM पर आरंभ हो रही है।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया।

0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। आइए इस पावन बेला में करते हैं परमपिता परमेश्वर की वंदना।

कलकल करती निर्मल धारा जो हर लेती जन जन की पीरा, कोटि कोटि पापों की नाशनी, धन है माँ गंगा मैया का नीरा।

हिमगिरी की गोद से उतरकर जो सींचती है ये धरा हमारी, हे पतित पावनी गंगा मैया, सबसे भोली सबसे न्यारी।

ऐ रब तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी की भी हो सबको सलामत रखना। दर्द छूकर गुजर जाए नासूर ना बनने पाए, आई है जो आंधी ऐ मेरे रब तू इस आंधी से सबको बचाए रखना।

तूफान में भी जो राह दिखाए, वो नूर है नानक भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाए। वो सुर है नानक, नानक की वाणी में समाया है सारा संसार, जिनका जीवन ही है मानवता का सार।

जटाशंकर की शोभा बढ़ाए। भगीरथ की तुम हो तपस्या प्यारी, चरणों में तेरे बहता जो जल, उससे धुल जाए दुनिया ये सारी।

0: वंदना। अभी आप सुन रहे थे ये भक्तिमय कार्यक्रम। आज के कलाकार थे अनूप जलोटा, राकेश काला, इफ्तिखार अहमद व साथी, मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सुभाषित।
1: जीवन में सुभाषित अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुभाषित भारतवर्ष के समाज में सभी स्तर पर मनुष्यों के द्वारा अपने ढंग से उपयोग किए जाते हैं। सुभाषित अनादिकाल से साहित्य द्वारा, समाज द्वारा, काव्य द्वारा, नाटक, दर्शन, इतिहास, पुराण, धर्म आदि के द्वारा प्रयुक्त होते रहे हैं। कथ्य और तथ्य दोनों को सुंदर बनाने का काम सुभाषित ही करते हैं। पुराण, इतिहास और रामायण में जो सारभूत वचन है वे सभी सुभाषित हैं। सुभाषित में मानव हृदय को प्रभावित करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि सरस व्यक्ति का ध्यान किसी सुभाषित पर चला जाए तो उसके जीवन में सोचने का आधार ही बदल जाता है। जिन व्यक्तियों का हृदय रमणियों के सौंदर्य में लगा होता है, जो साहित्य रूपी समुद्र में तल्लीन नहीं होते, वे मेरे प्रयासों को उसी प्रकार नहीं समझ सकते जैसे नेत्रहीन व्यक्ति नर्तकी की भाव भंगिमा और सौंदर्य की प्रशंसा नहीं कर सकता। साहित्य में सुभाषित अन्योक्ति की असाधारण क्षमता से युक्त है। अपने इसी गुण के कारण सुभाषित विविध माध्यमों द्वारा मानव के उत्तम गुणों की शिक्षा देता है। यदि नीतिपूर्ण बात अन्योक्ति द्वारा कही जाती है तो वो हृदय की गहराई तक पहुंचकर प्रभावित करती है। महर्षि भर्तृहरि ने कहा है कि उस स्वर्ण अथवा सुमेरु पर्वत से क्या लाभ।

0: जबकि वहां स्थित वृक्ष वृक्ष ही बने रहते हैं, उनमें सोने अथवा चांदी जैसा कोई गुण नहीं आता। उस मलय चंदन पर्वत की प्रशंसा मैं करना चाहूंगा जिसके आश्रय में रहने वाले कंकोल, नीम और कुटज जैसे वृक्ष में चंदन के गुण आ जाते हैं। कुपित ब्रह्मा भी हंस के कमल वन में विहार करने के सौंदर्य को ही छीन सकते हैं, परंतु वह भी उसके दूध से जल अलग करने के गुण को नहीं छीन पाते। इसलिए मनुष्य को गुणवान बनना चाहिए, मनुष्य को सुभाषित होना चाहिए। गुणों को धारण करने के लिए केवल आवरण बदलकर गुणवानों की संगति में चले जाने पर दूसरे लोगों को भले आप पहचान न सके, किंतु कार्य समय पर तो स्वतः करना चाहिए। ऐसा करने से आपका कार्य समय पर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। कहते भी हैं कि तुल्य वर्ण छद कृष्ण कोकिले सह संगतः केन विज्ञायते काक स्वयं यदि न भासते। यदि कौआ अपने आप को कोयल के वर्ण के समान परिवर्तित करके कोयलों के समूह में सम्मिलित कर ले तो उसे कौन पहचान सकता है? जब तक वह स्वयं न बोले, बोलने पर उसकी स्थिति क्या होगी कल्पना मात्र से ही रोमांच हो जाता है। इसलिए अपने को, अपने बोल चाल को ध्यान में रखना चाहिए। सज्जनों की सभा में नीति और शिष्टाचार के दर्शन होते हैं। वानरों की सभा में वृक्षों की शाखाओं पर कोमल आसन होना, उनकी चीखों का सुभाषित होना, दांत और नाखूनों से नोचना खसोटना ही उनका अतिथि सत्कार होना सर्वथा उचित ही है। सुभाषित जीवन के सभी पहलुओं को उजागर करते हैं। मानव जीवन विविधताओं से परिपूर्ण होता है। उनमें सद्गुणों को स्थापित करने के लिए विद्वानों ने अपनी अन्योक्तिपूर्ण सुभाषितों में अनेक संदेश दिए हैं। वे कहते हैं, हे बादल, जिस सागर के जल कणों को प्राप्त करके तुम ऊंचाई तक पहुंच गए हो, उसी सागर के ऊपर गरजते हो, वह तुम जैसे मलिन वर्ण हृदय वालों के लिए उचित है। अर्थात दूसरों की कृपा से साधन संपन्न होकर उसी पर अहंकारपूर्ण गरजना सर्वथा अनुचित है। विद्वानों के कार्य करने का एक अपना अनूठा तरीका होता है। अपने से श्रेष्ठ के आने पर वे स्वतः ही स्थान रिक्त कर देते हैं। इसलिए सुभाषित का जीवन में हमेशा उपयोग करना चाहिए। जुगनू चंद्रमा की अनुपस्थिति में चंद्रमा सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश का स्रोत बन जाता है। प्रकाश के स्वामी सूर्य के आते ही ये स्रोत स्थान रिक्त करके क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार विद्वान अपनी स्थिति का निर्धारण स्वयं कर लेते हैं।
1: सुभाषित, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश के अंतर्गत बच्चों की नेत्र सुरक्षा, इस विषय पर डॉक्टर गिरिजेश केन को।
2: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर जानकारी देना चाह रहे हैं जो कि आंखों से संबंधित है। हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर गिरिजेश केन, जो कि मुरादाबाद में आई एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आंख हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको हम कैसे स्वस्थ कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य रूप से लोगों में दिखाई पड़ती
3: हैं? आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप दिन में एक या दो बार अपनी आंखों को नॉर्मल या ठंडे पानी से धोएं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, पीले फल खाएं, और यदि कुछ भी आंख में जाता है, धूल या डस्ट, तो आपको बिल्कुल भी ना मले। आमतौर पर, सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें मायोपिया की बीमारी बहुत कॉमन होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल के स्कूल में बच्चों को बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं
2: जी।
3: तो बच्चों को कम दिखने की बीमारी बहुत कॉमन है। यंग एज में, जो कि 20 से 25 साल 30 साल की एज में, ड्राइनेस की बहुत कॉमन बीमारी होती है कि आंखों में सूखापन आ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करने से। यंग एज में के बाद यदि तकरीबन 50 से 60 साल की उम्र की हम बात करें तो तब हमें मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है, तथा उन लोगों में जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है उनको पर्दे की बीमारी, डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाती है। ये कॉमन बीमारी है जो कि आमतौर पर हर दूसरे या तीसरे मरीज में देखी जाती है।
2: बहुत सारे बच्चे और ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या सावधानी बरतें हैं ताकि उनकी आंखें ठीक रहे और उन पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े?
3: मोबाइल की स्क्रीन छोटी होने के कारण बच्चों की आंखों में मूवमेंट्स रुक जाते हैं
2: जी।
3: तथा पलक

0: खुले के खुले रह जाते हैं, जिससे ड्राइनेस डेवलप हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्स्टेंटली 6 घंटे 8 घंटे मोबाइल देखने से आंखों में चश्मे का नंबर आ जाता है, तो हमें इस चीज से बचाव करना चाहिए। बच्चों को कम से कम टाइम के लिए क्लासेस लेने के लिए मोबाइल दिया जाए, और कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन पर उनकी क्लासेस करें, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पे हो
1: जी।
0: इस चीज से आप बिल्कुल घबराएं ना। यदि आपके बच्चे को स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, या पीछे बैठने से दिक्कत होती है, या बहुत ज्यादा सर नीचे करके वो लिखता है या पढ़ता है
1: जी।
0: तो ये एक सामान्य चीज है। बच्चों को मायोपिया जिसको बोलते हैं, वो चीज होती है जिसमें कि आंख की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन चश्मा लगाने से वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जब बच्चा 21 साल के आसपास का होता है तो लेसिक लेजर करके वो नंबर भी हट जाता है। तो इस चीज से घबराएं ना, बल्कि बच्चों को चश्मा है तो उसे जरूर लगाएं, वरना उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाएगी।
1: क्या बेसिक कारण हो सकता है जिसकी वजह से कुछ बच्चों में मायोपिया हो जाता है, कुछ में नहीं?
0: ये कोई इस तरह की बीमारी नहीं है कि एक बच्चे को हो गए तो दूसरे बच्चे को हो जाएगी, एक नॉर्मल चीज है। मायोपिया में हमारी आंख का जो डायमीटर है या जो आंख की लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती। कहने का मतलब है कि बड़ी आंख होने के कारण थोड़ा सा नंबर आ जाता है चश्मे का, तो वो एक नॉर्मल चीज है और कुछ बच्चों में आता है। जरूरी नहीं है कि आपके एक बच्चे में आए तो दूसरे में आएगा, या आपके मदर फादर को चश्मा लगाए तो बच्चों को लगेगा, लेकिन लगने के चांसेस हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती है, या कभी कभी धूल की वजह से हो जाती है, या कभी कभी चोट लग जाती है।
0: देखिए, यदि आपकी आंख में धूल जाता है, डस्ट जाती है, या किसी तरह की चोट लगती है, तो सबसे पहले आप आंख को ठंडे पानी से धोएं और आंख को मले बिल्कुल ना। यदि आप सोचिए छोटा सा कण यदि धूल का आपकी आंख में गया है और आपने उसे मल लिया, तो वो पूरी पुतली पे जख्म करा देगा। उसको आंसू आने दें, आंसू से धीरे धीरे निकल जाएगा। यदि फिर भी नहीं निकलता तो एक रुमाल लें, आंख को बंद कर दे, पलक चलना आपका रुक जाएगा, और फिर जाके किसी डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, वो उस दाने को निकाल देगा आपको
1: जी।
0: आंखें लाल होना बहुत कॉमन है, कंजक्टिवाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है, इन्फेक्शन हो जाता है धूल से, डस्ट से, एलर्जी से, गंदे हाथ से, इवन जो एक्सेसिव सैनिटाइजर यूज करते हैं उससे भी आंखें लाल हो जाती हैं, तो वो इन्फेक्शन थोड़ा सा कॉमन है, अभी इन दिनों काफी ज्यादा कॉमन है। उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, 4 से 5 दिन की आप दवा लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपनी आंखों को हम सुंदर और स्वस्थ रख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम आने के लिए।
2: बच्चों की नेत्र की सुरक्षा, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गिरीश केंद्र का स्वास्थ्य संदेश। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 6:40 हुए हैं। आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग, जिसमें आपको सुनवाई जाएगी भाग संख्या 308। सवेरे 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे, जिसमें आज का विशेष होगा कार्यक्रम गंगा दशहरा पर, और साथ ही आपको सुनवाई जाएगी आकाशवाणी के 90 वर्ष पर विशेष बातचीत। सवेरे 8:45 पर सुनिएगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स, समय याद रखिए 8:45 पर। आज सुबह 9:50 पर उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकेंगे रजा हुसैन खां का सारंगी वादन। दोपहर 1:15 पर होगा कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज के कलाकार होंगे क्षमा जौहरी।

आज हमारी दूसरी सभा में शाम 5 बजे आप सुनिएगा राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह प्रथम का प्रसारण। समय याद रखिए शाम 5 बजे। शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप सुनेंगे गजलें संजीव पराशरी से, साथ ही कलाकार होंगी द्विता अग्निहोत्री। रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीत गाता चल, जो कि होगा व्हाट्सएप पर आधारित। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत आप सुनेंगे बीना और सपना शर्मा के कुछ लोकगीत। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियां को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान का,
1: एपिसोड नंबर 308।

मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे हमारा उद्देश्य पूरा और उसका कल्याण हो। श्री राम का ये वचन हृदय में धारण कर अंगद लंका में प्रवेश करते हैं। राह में रावण के एक पुत्र से भेंट होती है जो इनके समान ही अतुलनीय बलशाली है। बातों बातों में दोनों में झगड़ा हो जाता है। रावण पुत्र ने क्रोध में इन्हें मारने को जो लात उठाई तो अंगद ने वही लात पकड़ उसे मार गिराया। पूरी लंका में भय और आतंक छा गया। बालीपुत्र अंगद तब रावण की सभा में उपस्थित होते हैं। परिचय पूछे जाने पर अंगद कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं। मेरे पिता बाली तुम्हारे मित्र थे, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की बात करने आया हूं। पुलस्त ऋषि के पौत्र होने के नाते तुम उत्तम कुल के वंशज हो। सभी लोकपालों तथा राजाओं को तुमने जीता है, लेकिन मदांधता

अवश्य तुम जगत जननी सीता को हर लाए हो। अब अपनी करनी के पश्चाताप स्वरूप मेरी सलाह मानकर श्री राम की शरण जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करो।

श्री रामचरितमानस कान, अभी आपने सुना आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अभी तो बहुत दूर है स्कूल,
1: देर भी बहुत हो गई है मोना। क्यों ना ऐसा करें, चल दौड़ लगाते हैं, कौन दौड़ते हुए पहले स्कूल पहुंचेगा, जो जीतेगा उसे चॉकलेट।
2: हो सोना, बड़ा मजा आएगा, शुरू हो जाए।
1: हाँ हाँ, शुरू करो शुरू करो।
2: अरे सोना तो भागती है।

0: जा रही है और मुझे तो जरा सी दूर दौड़ने में ही हाफ लगने लगी। सांस भी बहुत फूल रही है, नहीं भागा जा रहा मुझसे।
1: अरे ये मोना कहाँ रह गई? वापस जाकर देखती हूँ, कहाँ रुक गई बीच में। अरे मोना, तू यहाँ क्यों बैठ गई और क्या हुआ तेरी सांस को? तेरी सांस इतनी क्यों फूल रही है? ले पानी पी।
0: सोना, चक्कर आ गया था मुझे। पता नहीं, जरा सी तेज चलो या बहुत ज्यादा काम करो तो जब तब चक्कर आ ही जाते हैं। क्या बताऊं मैं तुझे, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ। हाथ कांपते हैं, हाथ से सामान तक छूट जाता है कभी कभी।
1: मोना, तू डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती?
0: कोई बीमारी या बुखार हो तो दिखाओ ना, ये तो अक्सर यूं ही होता रहता है। माँ भी कहती हैं कि मैं हर काम टेंशन लेकर करती हूँ, इसीलिए ऐसा होता है।
1: लेकिन मोना, मेरी माँ तो मुझे हर हफ्ते स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि समय समय पर हमारे शरीर में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे याद है वो बात जो उन्होंने मेरे सामने मेरी माँ से कही थी।
2: बहन जी, आप बहुत अच्छा करती हैं जो हर हफ्ते अपने बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने यहाँ आ जाती हैं। और कामों की तरह आपने स्वास्थ्य जांच को भी जरूरी माना है, ये बहुत अच्छी सोच है। देखिए बहन जी, अच्छी सेहत और डॉक्टरी इलाज, ये हर बच्चे का अधिकार है। बच्चे सेहतमंद रहेंगे तभी तो बड़े बड़े काम करेंगे।
1: मोना, मुझे तो लगता है तुझे सही इलाज कराना चाहिए। तू खाती भी तो कितना सा है, खुराक भी ठीक नहीं है तेरी। चल, स्वास्थ्य केंद्र पास ही है और वहाँ डॉक्टर तो आ ही गए होंगे, अब तक देर तो हो ही गई है। अब टीचर से सॉरी बोल देंगे।
0: मुझसे नहीं चला जाएगा सोना।
1: हिम्मत कर मोना, वो देख जरा सी दूरी पर ही तो है, सामने ही तो है।
0: चल अच्छा ठीक है।
2: हाँ सोना, देखो मोना का चेकअप मैंने कर लिया है, बहुत अच्छा हुआ तुम इसे समय से यहाँ पर ले आई हो। मोना में आयरन की बहुत कमी है और डाइट भी इसकी बैलेंस नहीं है, यही बीमारी की वजह है। सोना, तुम मोना की मम्मी से कहना कि इसकी खुराक पे जरूर ध्यान दें। देखो, संतुलित और पौष्टिक भोजन ही इसे खिलाएं। और हाँ मोना
0: जी, जी डॉक्टर साहब,
2: तुम हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और मौसमी फल जरूर खाया करो, यानी खर्च कम और फायदा ही फायदा।
0: ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, दवाई?
2: भाई दवाई तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ही मिलेगी और वो भी मुफ्त, लेकिन पौष्टिक और संतुलित भोजन करना बिल्कुल मत भूलना और स्वास्थ्य की जांच भी समय समय पर जरूर कराती रहना। तुम्हारा यानी बच्चों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि भाई तुम ही तो कल के स्वस्थ नागरिक हो, समझ गए?
0: जी डॉक्टर साहब।
3: मोना तो समझ गई, पर ये बात बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता को समझनी जरूरी है। अगर बच्चे का मन काम में नहीं लग रहा है, उसे बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो इसे बच्चे का बहाना न समझें। यह पोषण की कमी का लक्षण है जिसके विषय में सरकार भी सचेत है। यूं तो सन 1983 से ही सितंबर माह का प्रथम सप्ताह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता रहा है। इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि पूरे विश्व की 12.9% आबादी कुपोषण का शिकार है। वहीं भारत में विश्व के एक तिहाई कुपोषित बच्चे रहते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने संकल्प लिया देश को कुपोषण से मुक्त करने का। अस्तित्व में आया राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत सभी बच्चों को आधार से जोड़ने का भी लक्ष्य है। सरकार का प्रयास है, जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर काम किया गया, उसी तरह अगर पोषण मिशन पर भी काम हुआ तो तस्वीर ही बदल जाएगी। 40 साल में पहली बार ICDS की उचित तरीके से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान की शुरुआत की।
4: राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है, ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए ऐसा नहीं है, हर सरकार में कोई न कोई योजना बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अनुभव कहता है

0: सिर्फ खाना ठीक हो जाए इतने से समस्या का समाधान नहीं होता। एक पूरा इकोसिस्टम करेक्ट करना पड़ता है। खाना अच्छा भी मिल जाए लेकिन अगर वहां पानी खराब है, कितना ही खाते जाओ वो कुपोषण की स्थिति में फर्क नहीं आता। बहुत कम लोगों को मालूम होगा बाल विवाह ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पे कोई भरोसा कर सकते। जीवन से जुड़े जितने पहलू है, अगर बीमार है तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीने का सौभाग्य, तो माँ अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन हम उस हेल्थ सेक्टर की जितनी सेवाएं हैं उपलब्ध हैं, बजट है, अफसर हैं, लोग हैं, लेकिन हम वहां तक जाते नहीं और उसी का परिणाम है कि वो कोई न कोई बीमारी का शिकार हो जाता है। अब ये आदत कौन डालेगा कि बच्चों को माँ खिलाती है तो माँ का भी हाथ धोना होना चाहिए और बच्चा खुद मुंह में कुछ डालता है तो उसका भी हाथ धोया होना चाहिए, ये कौन सिखाएगा? ये काम हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारना, ये हम सबका दायित्व है। और उसी के तहत इस योजना को एक मिशन मोड में और बिखरी हुई सारी योजनाओं को एक साथ जोड़ करके, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे दवाइयां की समस्या हो, चाहे परंपरागत कठिनाइयां हैं, आज हमारे देश में उम्र के हिसाब जो ऊंचाई होनी चाहिए उसमें काफी कमी नजर आती है। हमारे बच्चे तंदुरुस्त हो, वजन को हो, ऊंचाई हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दे करके एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब देश में पोषण के क्षेत्र में हम गर्व के साथ कह सके दुनिया के सामने कि हमने अचीव कर दिया है। और हम अपने बच्चों को देखें, उनको देखते ही हमारा दिन पूरा इतना बढ़िया चला जाए, ऐसे हंसते खेलते बच्चे हर पल नजर आए, जहां जाए वहां नजर आए, ये स्थिति हमें पैदा करनी।
1: भारत में कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर 2 में से 1 महिला खून की कमी का शिकार है। हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। 1 साल में 1000 में से 37 बच्चे 1 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं कर पाते। यही सब कारण रहे कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को स्वयं से भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण कहा।
0: तो मेरी इनको प्रार्थना है कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला करे, न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं दिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन दिखना चाहिए।
1: संतुलित पौष्टिक आहार से महकाएं अपना घर संसार, इस आवश्यक और अनिवार्य आवश्यकता पर जरूर करें विचार। गर्भवती को मिले पोषक आहार, नवजात को दें माँ के पहले दूध का उपहार। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह।
2: परंपरागत मूल्यों के द्वारा कुछ तिथियों को कुछ आयोजन होते हैं, जैसे प्रत्येक माह के 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को ममता दिवस, 25 को लाडली दिवस, जिसको अब सुपोषण दिवस के रूप में मनाया जाए। इसमें जो बच्चे 6 माह पूर्ण कर लेते हैं उनकी अन्नप्राशन की गतिविधियां कराई जाती हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 माह पूरा होते ही उसको अर्ध ठोस आहार देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जिसके लिए गर्भवती माताओं को वहां बुलाया जाता है और उनके परिवार के अन्य सदस्य, चाचा चाची ताई, सबको बुलाया जाता है। और जिनके बच्चे 2 साल के हो गए हैं, 4 महीने के हैं, 3 महीने, उनको भी बुलाया जाता है। और गांव के जो अग्रणी लोग हैं, मातृ समितियां बनी हैं, सदस्य भी आती हैं, जिससे एक जागरूकता का रूप फैले और जन आंदोलन का रूप ले। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे को हमारे यहाँ जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल डाइट जो है दिया जाता है, अनुपूरक पुष्ट आहार। इसके साथ स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान दें, तो कुपोषण को हमें तोड़ना है। और विशेष रूप से जो पोषण अभियान है, 1000 दिन का बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। जो किसी महिला के गर्भावस्था से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों तक अगर हम विशेष रूप से ध्यान दे दिए तो हमारा कुपोषण का कुचक्र टूट जाए।
1: कुपोषण के कारण श्रोताओं, देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP को 4% नुकसान हो रहा है। महिलाएं और बालिकाएं अभी भी अपने भोजन के प्रति गंभीर नहीं है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री ओम प्रकाश विमल कहते हैं,
3: जहां तक ICDS विभाग में है तो इस समय जो गवर्नमेंट व्यवस्था पौष्टिक आहार के रूप में किया है, जिसको हम अतिरिक्त पोषाहार बोलते हैं, उसमें तो 6 माह से 3 साल तक के बच्चों के लिए वीनिंग फूड आता है, जो पाउडर के रूप में दलिया के रूप में होता है। इसी प्रकार उनको एक मीठा दलिया भी दिया जाता है, इसी प्रकार नमकीन दलिया दिया जाता है। उसमें जैसे गेहूं है, चीनी है, मूंगफली है, बंगाली चना है, वनस्पति तेल है, सोयाबीन है, संपूर्ण दूध पाउडर मिलता है। और इस वीनिंग फूड में जो हमारा कंपोजिशन है, 4 से 11.58 kg कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है बच्चे। इसी प्रकार मीठा दलिया में गेहूं है, चीनी है, सोया है, दूध पाउडर है, वनस्पति तेल है, रागी है, विटामिन और खनिज तत्व है। ये भी लड्डू के रूप में ये लोग बना के खा सकते हैं और इसमें 4 से 21.22 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। इसी प्रकार जो नमकीन दलिया है तो उसमें गेहूं, चीनी, सोया, दूध पाउडर है, अरहर की दाल है, रागी है, मूंगफली है, मसाला है, विटामिन और खनिज है। इसमें भी 4 से 46.95 कैलोरी एनर्जी मिल जाती है बच्चे। इसी प्रकार मीठा दलिया, नमकीन दलिया गर्भवती धात्रियों के लिए होगा और 3 से 6 साल तक के उनको जो है भी पोषाहार दिया जाता है 50 ग्राम की मात्रा के रूप में। जनरली हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, एएनएम है, आशा है, सीडीपीओ है, मुख्य सेविकाएं भी जब गृह भ्रमण जाती हैं तो पौष्टिक आहार के बारे में उनको पूरा परामर्श दिया जाता है होम विजिट के दौरान। अब समय समय पे हम लोग सामुदायिक सहभागिता के भी कार्यक्रम कराते हैं। सबसे बड़ी कमी आज हिंदुस्तान के अंदर कुपोषण की है, जो जागरूकता की वजह से है कि जो जागरूक नहीं है, जबकि पौष्टिक आहार उनके क्षेत्र में इतना अच्छा उपलब्ध है लेकिन जानकारी के अभाव में उसको आप ले नहीं पाते। पोषण माह चल रहा है, पर्डे हमारी कोई ना कोई गतिविधि होती है, आंगनबाड़ियां जाती भी हैं, लोगों से भी मिलती है, महिलाओं से भी मिलती है, आप लोग भी लाभ लीजिए।
1: राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत बच्चों, महिलाओं, किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया, नवजात के वजन में कमी तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को कम करना है। श्री दीपक कुमार के अनुसार,
4: विकासशील देशों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कुपोषण व्याप्त है। हमारे यहाँ अशिक्षा, गरीबी ये ज्यादा मिलती है, लोगों में जागरूकता की कमी भी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए वहाँ इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। जहाँ तक बच्चों की बात हो गई, जैसे छोटे बच्चे हैं आपके, 6 माह से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उसमें तो एनीमिया की पहचान जांच द्वारा भी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन किशोरों में जैसे 11.9 किससे अगर कम हो रहा है तो उसको एनीमिक माना जाता है। एनीमिया एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग इतना ध्यान से नहीं देखते हैं। 50% ये नेशनल एवरेज है, करीब 48% महिलाओं को और किशोरियों को एनीमिया होती है। और इसके सीधे सिंपल सिम्टम होते हैं कि जैसे काम करते हुए जल्दी थकान आना, कमजोरी होना, आंखों और नाखूनों का पीलापन होना, उसके लिए खान पान और स्वास्थ्य सलाह दी जाती है। एनीमिया मुख्य तौर से खान पान की ही समस्या है।
1: आज भारत विकास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, लेकिन देश सशक्त तभी होगा जब ये विशाल मानव बल मजबूत होगा, शरीर से भी और मन से भी। आइए कुपोषण की जंग लड़ें सुपोषण के हथियार से, माँ बच्चे को स्वस्थ बनाएं पौष्टिक भोजन के उपहार से।

अभी आप सुन रहे थे संकल्प सुपोषण, इस विषय पर सेहतनामा। प्रस्तुति थी असीम सक्सेना की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:18 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राष्ट्रवाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन

0: तथा किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
1: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएसी फ्लड पीएसी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
4: जैसा कि

0: की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः आपके साथ आपका रेडियो साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह का वक्त यानी कि भागदौड़ भरी जिंदगी, हर घर में चहल पहल, उथल पुथल, ऐसा सा ही कुछ माहौल रहता है। रसोइयों में हमारी माएं, बहनें, पत्नियां सब खाना बनाने में व्यस्त होती हैं, सुबह का नाश्ता बनाने में व्यस्त होते हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ पापा लोग बच्चों को तैयार कराते हैं, कुछ भाई बहन आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, इस तरह का कुछ माहौल होता है। और ये होता है प्यार। ये प्यार इजहार नहीं होता, ये होता है एहसास वाला प्यार। कहा जाता है कि प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, पर सच तो यह है कि सबसे मुश्किल समझ आने वाली चीज प्यार ही है। कभी हमें मुस्कुराना सिखाता है तो कभी हमें सबसे गहरे दर्द से मिलवाता है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन होती है इस प्यार की। किसी के लिए प्यार देखभाल है, किसी के लिए कबूल कर लेना ही प्यार है, और किसी के लिए खामोशी में भी महसूस होना। हम सब ने कभी ना कभी किसी को पूरे दिल से जरूर चाहा होगा, कभी पाया, कभी खोया, कभी समझा और कभी खुद को ही सवालों में खो दिया। पर क्या हमने कभी ये समझा कि प्यार असल में होता क्या है? क्या ये सिर्फ दिलों का मेल है या आत्मा का रिश्ता है? क्या सिर्फ एक इजहार ही आजीवन इम्तिहान है? जहां प्यार इजहार नहीं, वहां पर दोस्तों प्यार एहसास बन जाते हैं, जो हमारे घर में हम देखते हैं ना, ये हमारी माँ का और हमारा रिश्ता, हमारे पिता का और हमारा रिश्ता, हमारे भाई बहन का रिश्ता, हमारी बीवी से, हमारे परिवार के सभी सदस्यों से जो हमारा ये रिश्ता होता है, ये एहसासात का रिश्ता होता है, जहां प्यार मांगना नहीं पड़ता, देना सिखाता है, और जहां प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसकी हर चीज, हर कमी को अपने दिल में जगह देता है। कभी कभी जब हमें भूख लगती है, हम मां से एक रोटी लाने को कहते हैं तो वो दो लेकर आएंगी। वो दो इसलिए नहीं लेकर आती क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है, वो इसलिए लेकर आती हैं ताकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। कभी अपने पिता के सामने झूठ मूठ में ही खांस कर देखना, भले ही उनके घुटनों में दर्द हो, उनसे चला ना जाए, पर आपकी दवा के लिए वो दुकान तक, मेडिकल स्टोर तक जरूर जाएंगे। तो ऐसा ही होता है कुछ एहसासात का प्यार।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। श्रोताओ, आज है 25 मई और आज हम मना रहे हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी शुभ दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा का अर्थ 10 और हरा से मिलकर बना है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्नान करने या ध्यान करने से मनुष्य 10 प्रकार के पाप, 3 शारीरिक, 4 वाचिक वाणी के और 3 मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ गंगा में डुबकी लगाते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि संभव हो सकता है तो लोग हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज इन जगहों के पवित्र घाटों पर जाकर गंगा माँ में स्नान करते हैं। यदि गंगा जी तक जाना संभव नहीं हो पाता है तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं और माँ गंगा का ध्यान करते हैं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। संख्या 10 को इस पर्व में अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए दान भी 10 की संख्या में करने की परंपरा है। निम्न तरह की चीजें आप दान कर सकते हैं, पानी से भरे मटके, सत्तू, ठंडा शरबत, मौसमी फल, हल्के सूती कपड़े, पंखा, छाता। इसके साथ ही अपनी क्षमता के अनुसार लोग गरीबों को अन्न दक्षिणा का दान अवश्य करते हैं। गंगा दशहरा देवी गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की पौराणिक कहानी है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा माँ धरती पर आने को तैयार हुई। लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धरती पर छोड़ा। तो श्रोताओं, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारा ये जो आकाशवाणी का सफ़र है 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है, तो इसी श्रृंखला में आज हमने बात की एक खास शख्सियत से। तो आपको सुनवाते हैं ये बातचीत।

0: आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत पुराने श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब।
1: रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं एक बार चाहूंगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें।
2: मैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और आकाशवाणी केंद्र जो 90 वर्ष बना रहा है उसकी संध्या को बहुत अच्छे बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी जानिब से।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहले से ही मालूम है कि आकाशवाणी जो है वो 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है,
2: जी
1: तो कैसा सफर रहा तब से लेकर और अब तक का, क्या कहना चाहेंगे?
2: प्यारा खुशक सफर रहा साहब आकाशवाणी केंद्र का
1: जी,
2: और दिल से चाहते हैं प्रोग्राम और भी अच्छे अच्छे रहे, बहुत यादगार प्रोग्राम रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के
1: जी।
2: और मैं नियमित सुनता हूँ आकाशवाणी रामपुर का कंटिन्यू प्रोग्राम सुनता हूँ।
1: कोई जो आपके उस दौर के जो कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जो आज भी आपको याद आते हो, मैं चाहूंगा कि एक बार वो साझा करें हमारे साथ।
2: जी सर, प्रोग्राम हुआ करता था साहब, आज के दौर में चल रहा प्रोग्राम आपका पत्र मिला, उस समय चलता था आपकी चिट्ठी मिली प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को पेश किया करते थे विनोद आनंद दयाल साहब पंडित वाजपेयी जी।
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता, अन्य अंदाज से प्रोग्राम किया करते थे, पहचान में नहीं आते थे उनकी आवाजें। जब उनसे हम मिलने गए एक बार
1: जी,
2: तो उन्होंने अपना आमने आमने सामने देखा उनको, तो उनकी आवाज तो अच्छी होती ही थी और लोग भी अच्छे निकले और आपकी पसंद प्रोग्राम भी हुआ करते थे, रात को भी हुआ करता था दिन में हुआ करता था, रोज अच्छे अच्छे नगमे सुनने को मिलते थे आकाशवाणी केंद्र से
1: जी।
2: और मैं 1985 से आकाशवाणी रामपुर को और मैं लेटर डालना शुरू किया मैंने
1: जी।
2: जब देखा कि वहाँ नाम बोलते हैं श्रोताओं के
1: जी,
2: उस समय में ज्ञान नहीं था कैसे नाम बोलते हैं कैसे डालने पड़ते हैं चिट्ठी। मेरे भाई लियाकत हुसैन थे,
1: अच्छा,
2: वो आकाशवाणी रामपुर का युवाड़ी प्रोग्राम सुनते थे, उस समय पोस्ट कार्ड 15 पैसे का हुआ करता था
1: जी,
2: वो चिट्ठी लेके मैं डाकखाने जा करता था डालने। तब से मुझे भी जब मैंने देखा वो इस तरह से लेटर लिखते हैं

0: मैंने भी एक लेटर अपने पास छुपा कर रख लिया उनका, डालने का पोस्ट कार्ड, उसी की नकल करके भी भेजना शुरू कर दिया मैंने। हाँ,
1: अच्छा,
0: ये सफर शुरू हुआ मेरा साहब।
1: बहुत बहुत बहुत यादगार सफर है आपका और
0: जी
1: बहुत सारी यादें भी जुड़ी हैं सुनकर,
0: जी
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी आवाजें जो आपको बहुत पसंद रही हों और आज भी पसंद हों, जिनके कारण आप आकाशवाणी की तरफ खींचते हों, तो वो चीज हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: मैं एक आवाज के क्या कहूँ, आकाशवाणी रामपुर के इतने प्यारे अनाउंसर हैं, उनकी हर प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं।
1: जी
0: नए हो या पुराने हो,
1: जी
0: उस टाइम जो थे पहले तो यही लोग थे, ब्रह्मानंद दास साहब थे, अंजलि वाजपेयी जी थी, चंद्रमोहन
1: जी
0: सिंह जी थे, ठीक
1: जी
0: है, ये तीन आवाजें बहुत ज्यादा हमारे कानों में गूंजती रही हैं और नाटक झलकियां बड़े अच्छे सुनने को मिल रही हैं।
1: जी
0: बहुत अच्छा प्रयास ये लोगों ने किया है प्रोग्राम में बनाने के लिए, हम श्रोताओं को पहुंचाने तक। हर
1: जी
0: प्रोग्राम हमें आकाशवाणी काम रामदूर का बहुत अच्छा लगता है, आज भी
1: जी
0: सुनते हैं। अब मैं आपसे 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ,
1: जी
0: असीम सक्सेना जी आ गए हैं हमारे, और आपके हमारे जो है चंद्रमोहन सक्सेना जी तो हो गए हैं, और उसके बाद सुधांशु नंदन जी
1: जी सुधांशु नंदन जी थे,
0: थे, जी सुरेंद्र राजश्री थे,
1: सुरेंद्र
0: बेहद
1: जी
0: प्रोग्राम
1: जी
0: किया
1: राजश्री
0: करते
1: जी
0: थे
1: थे,
0: पेयर
1: जी
0: जी। और
1: नौटियाल जी
0: जब
1: थे, सुरेंद्र नौटियाल
0: जी
1: जी
0: हाँ,
1: थे
0: तो
1: जी, काफी सारी
0: ये
1: आवाजें
0: लोग
1: थी।
0: बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया करते थे, बहुत अच्छे ढंग से किया करते थे, और हमारा दिल भी लगता था कि इन लोगों से हम मिले।
1: जी
0: एक बार मैं आकाशवाणी रामपुर गया भी था, दोबारा गया था मैं, तो
1: जी
0: चंद्रमोहन सक्सेना जी से ही मिला था मैं,
1: जी
0: असीम भाई भी थे, ड्यूटी ऑफिसर के सामने जो रूम है आपका वहां बैठा था मैं।
1: जी
0: हाँ, तो मैं मुझे सुरेंद्र राजेश्वरी जी मिले, ये सुधांशु नंदन जी भी उस टाइम मिले मुझे।
1: जी
0: हाँ, सुपरस्टार थे ये लोग हमारे रेडियो में जन्मत थे, और
1: जी
0: उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, सबने बहुत एहतराम भी किया हमारा।
1: अच्छा, आकाशवाणी रामपुर के साथ साथ और कौन कौन से स्टेशन्स आप सुनना पसंद करते हैं आकाशवाणी के?
0: मैं लोकप्रिय स्टेशन जो है वो आकाशवाणी रामपुर ही है, सुनने को तो मैं बहुत श्रोता हूँ, बहुत पुराना श्रोता हूँ, तो बहुत जगह मैंने रेडियो सुना है, बस
1: जी
0: फार्मेसी पर लेटर डाल के सुन ले लेते हैं, और ज्यादा प्रोग्राम में वहां रुचि रखता नहीं हूँ
1: जी
0: सुनने को। तो जब सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम सुना करते थे आकाशवाणी रामपुर, नजीबाबाद, और तुम आपका दिल्ली केंद्र हो गया,
1: अच्छा
0: ये यहाँ से हम ये लोकप्रिय हमारे प्रोग्राम सुनते थे यहाँ पर, इन्हीं की आदत थी। फिर हमारा विस्तार बढ़ गया, फिर तो हम रेडियो जम्मू सुना, रेडियो श्रीनगर सुना,
1: जी
0: और आपसे क्या बताएं, बहुत शिमला हुआ,
1: जी
0: लखनऊ हुआ, बहुत केंद्र है। मैं 40-45 रेडियो को सुनता था, आकाशवाणी केंद्रों को।
1: अच्छा,
0: मैं सबसे ज्यादा कौन जो सुनता हूँ आकाशवाणी रामपुर के ही सुनता हूँ, क्योंकि
1: बहुत बहुत
0: मैं
1: शुक्रिया,
0: आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्राम बहुत पसंद आते हैं,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: बहुत दिल से प्रोग्राम ये लोग करते हैं,
1: जी।
0: तो हमारे भी दिल चाहता है इनके प्रोग्राम सुने।
1: अच्छा सिद्दीकी साहब, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे कि फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तो अच्छे ही लगते
0: जी,
1: हैं अधिकतर सबको, क्योंकि आपके नाम उसके अंदर बोले
0: जी
1: जाते
0: हाँ,
1: हैं, अपने नाम
0: लगाव तो
1: सुनने के लिए
0: लगाव तो
1: श्रोताओं
0: हमारा
1: को
0: उसी
1: जी
0: प्रोग्राम से रहता
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा
0: जी
1: उत्सुकता रहती है कि आप हमारे नाम आएंगे, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप आकाशवाणी पर सुनना पसंद करते हैं?
0: एक चार वेद का प्रोग्राम आता है, आज भी आ रहा है, 30-40 साल से भी आ रहा है,
1: जी
0: वो लोकप्रिय प्रोग्राम है, वो सुनते हैं आज भी, वार्ता भेंट वार्ता भी सुनते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम का इंतजार करते थे, हमारे प्रोग्राम जो है 10 बजे आएगा, 9:15 बजे आएगा, तो उससे पहले जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो, उनसे पहले हम उन प्रोग्राम को सुनते थे,
1: जी
0: तब वो प्रोग्राम हमें सुनने को मिलता था, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना, आज जैसे आप जो शुरू करा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करा, हो सकता
1: जी
0: है आपने हमारा नाम शुरू में बोल दिया हो,
1: बिल्कुल
0: इसलिए लिहाज से 1 घंटा आधा घंटे पहले हम रेडियो के पास बैठ जाया करते थे।
1: पहले से
0: हाँ
1: रेडियो के सामने आकर बैठ
0: जी जी
1: जाते
0: हाँ, अरे
1: हैं
0: ये
1: और
0: खाने पीने
1: प्रोग्राम
0: हम
1: का
0: तो रेडियो साथ
1: इंतजार
0: ही
1: करते
0: करते
1: हैं।
0: हैं,
1: जी, अरे आप
0: ये
1: लोगों का यही प्यार है और इसी वजह से हम लोग और हमारा अस्तित्व है
0: जी।
1: आकाशवाणी का, जो आज 90 वर्ष पूर्ण जो है करने जा रहा है, और
0: जी
1: आशा है कि 90 क्या आगे आने वाले समय में 100 साल भी हम लोग आपके साथ में इसी तरह से इस सफर को पूरे करेंगे।
0: हाँ, बहुत
1: और
0: बहुत शुक्रिया, सफर चलता ही रहेगा, जाता जिंदगी तक चलता रहेगा, जब तक
1: बिल्कुल
0: रेडियो है रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: एक रेडियो मात्र हुआ करता था, मैं मेरी जहां तक मेरी समझ है
1: जी
0: 1980 टाइम की बात बता रहा हूँ आपको मैं,
1: जी
0: उससे पहले टीवी दूरदर्शन ये कुछ नहीं हुआ करता था,
1: जी
0: एक घर में मात्र ट्रांजिस्टर रेडियो हुआ करता था,
1: हाँ
0: जो हर घर में था, उसे रेडियो की आवाज सुन सुन के

0: गाने सुनने में हम भी बैठ जाया करते थे, क्योंकि हम फिल्में तो देखते नहीं थे उस समय, छोटे थे।
1: टेलीविजन उस दौर में टेलीविजन भी सबके यहाँ कहाँ हुआ करते थे?
0: नहीं हुआ था, एक पूरे मोहल्ले में एक दो जगह हुआ
1: एक
0: करता
1: दो
0: था।
1: जगह
0: तो ये
1: टेलीविजन।
0: मान लीजिए चित्रहार नाम से आता था प्रोग्राम, गाने सुनने गाने वाला,
1: जी
0: उसे देखने के लिए जाया करते थे।
1: जी
0: घर में धक चुपके चोर से जाके बैठ रहे, वहां घर वाले भगा रहे, चलो भीड़ हो गई, जाओ कल मार
1: रेडियो
0: बैठे।
1: हर घर में उस वक्त में मौजूद
0: हाँ
1: था
0: उस समय, उसके बाद रेडियो जो तो हर घर में है, आज
1: जी,
0: भी है।
1: आज भी है।
0: अब सबसे बड़ी उपलब्धियां ये है कि अब जो है रेडियो को रेडियो ना रख के लोग बाग मोबाइल पर रेडियो सुनते हैं, ठीक
1: मोबाइल ऐप से अब सुन पा रहे हैं, वो
0: है। हाँ
1: ज्यादा आसान हो गया है।
0: जी,
1: जी
0: हमें जानकारी आकाशवाणी रामपुर से ही दी गई थी। एक बार जब जब आपके यहाँ आकाशवाणी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस समय मुझे
1: जी
0: बुलाया गया था, तो मैं वहां गया हुआ था। शिकायत ये थी कि रेडियो बहुत कम सुनाई दे रहा है आजकल,
1: जी
0: रामपुर भी बहुत दबके बोल रहा था, क्योंकि जो भी पावर होगी एक ट्रांसमीटर जो भी है आपका वो कम चल रहा था, वो उसी
1: जी
0: एक चल रहा था उससे ही रेडियो सुना कर रहे थे, आवाज
1: जी
0: कम थी। तो
1: जी
0: वहाँ जो भी इंजीनियर साहब थे उन्होंने ये बताया कि आप मोबाइल ऐप पे ही प्रोग्राम सुना करें, सुचारू रूप से सुनने मिलेगा, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो
1: जी
0: साहब ने फिर मोबाइल ऐप लोडिंग कर लिया मोबाइल में,
1: जी
0: आज तक रेडियो मोबाइल पे सुन रहे हैं हम तो,
1: बहुत बहुत अच्छी बात है। और
0: कहीं भी
1: इसी तरह
0: जाते हैं
1: से
0: रेडियो
1: जी,
0: हमारे हाथ में ही है।
1: इसी तरह से आप आकाशवाणी के साथ में जुड़े रहें, रेडियो से जुड़े रहें, हमारी तो
0: जी जी
1: यही
0: जी
1: अभिलाषा है, और यूं ही हमें अपना प्यार देते रहें। असद हुसैन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बातचीत की।

0: अभी आपने सुनी हमारे बहुत पुराने श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब से हमारी बातचीत। ये सफ़र यूं ही जारी रहे, हमारी तो यही दुआ है, पर समय हमें अब और इजाज़त नहीं दे रहा कि आपसे और बातचीत की जाए। इसी के साथ अपने साथी अंकुर राजपूत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
7: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
7: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद

0: जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति। हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा। पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ। आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं। उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postponed CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously.

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत गुरु रंधावा, हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में। फिल्म का नाम है खेल खेल में।

कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हाउसफुल 5 से। आवाजें हैं मधुमंती बाथी, सुमोंटू मुखर्जी और साथियों की।

अभी आप सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से, आवाजें हैं मी ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और साथियों की।

अभी आप सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म जवान में।

0: आकाशवाणी एट 90
1: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: जिले की है।
1: ये
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
3: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी दोस्त मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
4: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही हैं।
3: कन्नौज जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र

0: को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गाँव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गाँव में भी देख लें कि कोई भी जानवर प्यासा न रह जाए। इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों उनकी भी।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान व स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इस नेक कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
4: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का फार्म जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदरकांड कांड, हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने बताया,
5: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई है और ये 144 टीमें

0: जनपद की चीनी मिलें और जो जनपद से बाहर की चीनी मिलें हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही हैं। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
1: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे की 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले की गौरव गाथा।

0: ये प्रेरक प्रसंग गोपाल कृष्ण गोखले जी के जीवन से। भारतीय जनजीवन में स्वाधीनता का मंत्र फूंकने वाली अग्रणी विभूतियों में एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी जैसे स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वस्तुतः गोखले जी ने ही उन्हें स्वाधीनता संग्राम में उतरने का मंत्र दिया था। वो बड़े स्वाध्यायी पुरुष थे। अंग्रेजी में तो उनकी विद्वता अद्भुत थी। तत्कालीन भारतीय कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर ने तो उनके बारे में एक बार यहां तक कहा था कि गोखले ने यदि कोई अंग्रेजी पुस्तक नहीं पढ़ी तो वो पढ़ने योग्य होगी ही नहीं। ऐसी थी गोखले जी की विद्वता की धाक। उन्होंने देश की सेवा के लिए एक संस्था बना रखी थी, भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। मुंबई म्युनिसिपैलिटी के एक इंजीनियर थे जो इस देश में आकर देश सेवा की इच्छा रखते थे। संकोच के नाते उन्होंने गोखले जी को स्वयं पत्र न लिखकर डॉक्टर देव से एक पत्र लिखवाकर अपना मंतव्य जाहिर किया। उन्हें शंका थी कदाचित गोखले जी उन्हें अपनी सोसाइटी में भर्ती करेंगे या नहीं। इसी नाते उन्होंने डॉक्टर देव से यह भी कहा कि पहले मैं सोसाइटी को प्रार्थना पत्र दूंगा, यदि वो मंजूर हो गया तो म्युनिसिपैलिटी की नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, न मंजूर होने की हालत में नई नौकरी कहां ढूंढता फिरूंगा। परंतु गोखले जी बड़े पारखी थे। वो ठोक बजाकर किसी को भी संस्था में भर्ती करते थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर देव से इंजीनियर महाशय को यह कहलवाया कि वो पहले नौकरी से इस्तीफा दे दें, फिर उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। उनकी दृष्टि में इस कदम से इंजीनियर की देश सेवा की भावना की परीक्षा होनी थी। परंतु इंजीनियर भी था कट्टर देशभक्त। जब उसे गोखले जी का संदेश मिला तो उसने फौरन नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, तनिक भी विलंब नहीं किया। फिर उसके प्रार्थना पत्र पर विचार करके गोखले जी ने उसे अपनी सोसाइटी में सदस्यता दे दी। ये उस इंजीनियर के जवानी के दिनों की घटना है जिसे आगे चलकर सारा हिंदुस्तान ठक्कर बापा के नाम से जानता था। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बचपन का ही प्रसंग है कि एक बड़े से लड़के ने गोपाल का बायां हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया और नन्हे गोपाल के चेहरे पर आंखें कढ़ाते हुए बोला, क्या तुझे अंग्रेजों से डर नहीं लगता? नन्हे गोपाल ने उस बड़े लड़के की आंखों में अपनी आंखें डालते हुए कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं? तभी एक दूसरा लड़का सामने आया और गोपाल का मजाक सा बनाते हुए बोला, अरे भाई तुमने प्रश्न ही गलत पूछ लिया, तुम्हें पूछना चाहिए था गोपाल क्या अंग्रेज तुमसे डरते हैं। तब गोपाल ये कहता, हाँ बिल्कुल अंग्रेज मुझसे डरते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, गोपाल ने बड़े सहज भाव से कहा, अंग्रेज हम सभी से डरते हैं, सब देशवासियों से डरते हैं, हमारे गांव के रहने वालों से डरते हैं। तभी तो वो घोड़ों पर सवार होकर हाथों में चाबुक लेकर चलते हैं, बात बात पर हमारी गरीब जनता पर चाबुक चला देते हैं। वो हमें डराते हैं क्योंकि वो खुद हमसे डरते हैं। वाह वाह गोपाल वाह, एक लड़की ने तालियां बजाई। उसके साथ ही कई लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे। तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं गोपाल, एक आवाज आई पीछे से। गोपाल व उसके सहपाठियों ने चौंक कर पीछे देखा। स्कूल के मुख्य अध्यापक पीछे खड़े थे, सबने उन्हें प्रणाम किया, चुप हो गए। मुख्य अध्यापक ने दाएं हाथ में पकड़े गेंद से इशारा किया, जरा इधर आओ। तो सभी बच्चे सहम गए, सबको लगा कि गोपाल की खैर नहीं। कुछ बच्चे सोचने लगे, अच्छा है ये पिटे, छोटे मुंह बड़ी बात, पिद्दा सा है नहीं और बड़ी बड़ी बातें करता है। परंतु नन्हा गोपाल निर्भीकता से आगे बढ़ा, मुख्य अध्यापक के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुख्य अध्यापक ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे सीने से लिपटा लिया, कंधा थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे बच्चे।
1: अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले की गौरव गाथा। कार्यक्रम था प्रेरक प्रसंग। अब आपको ले चलते हैं हमारे लखनऊ केंद्र, जहां से आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रजा हुसैन खां का सारंगी वादन।

अभी आपने सुना उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रजा हुसैन खां का सारंगी वादन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमारे पास आई है आप सभी की, मोताला महाराज से विजय सुरलकर रतनमाला, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, और साथ में है आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, मलयान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन सरधना मेरठ से, मुंबई से अनुवर जातिया, शमशुल खान, अनुराज बेनारा, मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी। इसी गीत को सुनना चाहा है ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका, शिवाय राठौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सदस्य। हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ, कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी। हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और समस्त डागला परिवार। इसी गीत को सुनना चाहा है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी और आपके परिवार के सभी सदस्यों ने। आप सभी की फरमाइश है फिल्म मर्यादा में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ की, तो सुनिए आपकी पसंद आपके रेडियो सेट्स पर।
1: अरे चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ हमारे साथ हैं हमारे आप सभी साथी पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और साथ में हैं असद अंसारी, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की खां, बुशरा खां, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गजन खां, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशां, शहनाज, बाबू अंसारी, राजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमन, लता मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता, अंश गौतम और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इम्बन खान, नाजिम खान, सलमान, शाहरुख खान, आरिश खान, कटराचंद खान मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति मौर्य और इनके परिवार के सभी सदस्य, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकम खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके परिवार के सभी सदस्य, पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजबी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्जा नसीन बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य, थाना टीम ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा बेगम, शीबा, इमरान खां, रेहान, इकराम, शमीना, आसिफा, शबीना और इनके परिवार के सभी सदस्य, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजम बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमशीन, शमरीन परवीन, मोहम्मद, रेहान, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा, असलम हुसैन, महमूद हसन, बीवीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली और इनके परिवार के सभी सदस्य, मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान, आप सभी ने यह फरमाइश भेजी है जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से, बहेड़ी से अंजुम भाई, खालदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल, शफक, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन।

ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। ज़िला मुरादाबाद, संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना, मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल, अजय, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्य। जातुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, नाज परवीन, चांदनी नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती, खनक, शगुन, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रताप सिंह ने। बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रखवाला में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारका, हार्दिक और वंश बत्ता, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर राही, मेहराज जहाने, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, शिखा यादव और तेजल, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और इन्हीं के साथ हैं झावेंद्र कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास, मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगपुरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, महाराजा रेडियो छोटा संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू और इनके परिवार के सभी सदस्य, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल और समस्त मेहरा परिवार, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता, मुस्कान और समस्त मालाकार परिवार, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल, कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगरविंदे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगरदेवे, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक और समस्त विरक परिवार, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी वोड़के, नंदा वोड़के, हनुमान वोड़के और उत्तम जमदाड़े। इसी गीत को सुनना चाहा है ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराय आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोरी सकरा से जयंत कुमार वैरागी। इसी गीत को सुनना चाहा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, सलीम अहमद और डॉक्टर शहबाज ने, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, महताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है आशा भोसले और चितलकार की युगल आवाजों में फिल्म शारदा का ये गीत। आप सभी की फरमाइश आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: सोमवार का मुहूर्त अति शुभ है, उसके पश्चात ही महीने तक तारा डूबा रहेगा और कोई मंगनी ब्याह ना कर सकेगा।
1: ठीक है, हम सोमवार को ही मंगनी कर देंगे। सुनिए, ये मेरी बेटी गा रही है, कितनी अच्छी आवाज आई है।
2: हाँ हाँ, बहुत सुरीली है।
0: कर दूंगा शादी। मगर सेठ जी, ये सुरीला कौन है?
1: सुरीला? कोई नहीं, ये तो मेरी बेटी गा रही है।
2: हाँ, बेटी गा रही है।
3: कल ही रजिस्टर कर दूंगा शादी।
0: जले तो जले। क्या जादू है आपकी बेटी के गले में, अकेली गाती है ये मालूम होता है कि तो गा रहे।
1: अच्छा,
4: कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमारे आप सभी श्रोताओं की। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 1767 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, महादेव घाट अमलेश्वरपुर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज, भैयू, दादा, आप सभी ने ये गीत सुना चाहा है। रामगंज खंडवा से साथ में है शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला महोबिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर, राही श्रीमती सरिता गवाहणकर, प्रिंस एकांश और इनके परिवार के सभी सदस्य, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, आप सभी ने सुनना चाहा है जमीन आसमान में किशोर कुमार और लता मंगेशकर को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।

0: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
0: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
8: Sir.
4: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
4: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
6: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
4: हाँ हाँ, कहो।
6: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
4: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
6: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
4: गो अहेड यंग मैन।
6: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
5: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
5: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
7: जी जनाब।
8: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
6: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
6: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
2: उस दिन टैंकों

0: का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: ये था प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जिंदगी के आईने में। आज आप सुनेंगे इसकी 11वीं कड़ी।
1: जिंदगी के आईने में सभी श्रोताओं को असीम सक्सेना का नमस्कार। जिंदगी सांसों की सरगम पर एहसासों की रवानी, कुछ पाने कुछ खोने की कहानी। समय इंसान को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ हाथों से फिसल भी जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम कुछ पल ठहरते हैं। जिंदगी के आईने में बीते हुए लम्हों को निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में लबों पर कभी मुस्कुराहट थिरकती है तो कभी आंखों की कोर से आंसू भी जमते हैं।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं रेडियो के जाने माने लेखक, बहुत सारे टीवी सीरियल्स के स्क्रिप्ट राइटर, इतिहास के क्षेत्र में एक जाना माना नाम। खासतौर पर जब जब रोहिलखंड की बात चलती है, इस एरिया की बात आती है, तो उन्हीं पर जाकर निगाहें ठहरती हैं। वो शख्सियत हैं जनाब नफीस सिद्दीकी साहब। नफीस साहब आज हमारे साथ हैं और हम उनसे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके लेखन कार्य के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो नफीस साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत से बात की जाए, किस तरह की परवरिश आपको मिली?
1: मैंने जब होश संभाला तो स्टेट तो मर्ज हो चुकी थी क्योंकि 1944 की पैदाइश है, 1947 में सब कुछ लेकिन जो आप शूट थे स्टेट के वो मैंने देखे। मतलब हम लोगों को इजाजत नहीं थी कि बगैर टोपी के घर से बाहर निकले। हम लोगों को ये हिदायत थी कि घर में जो काम करने वाली आती है सफाई का, उन्हें कट्टो खाला कहें। तो इस तरह के आदाब घर से ही शुरू हो गए थे। बाहर भी ऐसा होता था कि अगर कोई गलत कदम पड़ा तो बुजुर्ग होते थे, वो टोक दिया करते थे कि किसके बेटे हो भाई, जरा संभल के चलो, इतनी शरारतें नहीं करते हैं। तो इस तरह से हर कदम पर एक रहनुमाई हम लोगों को मिलती रही। उसके बाद यही जमाना आ गया कि जब हमारे हिंदुस्तान की तालीम का सिलसिला हुआ।
0: जी जी।
1: बेसिक स्कूल, टाट पट्टियां, हाथ में एक लिखने वाली
0: तख्ती
1: होती थी, फिर पिनोल भिगोया, उसमें पानी डाला,
0: कलम दवा तैयार
1: हुआ। और इस तरह से ये तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते हाई स्कूल हो गया। अच्छा स्कूल था, हामिद स्कूल, जहाँ अच्छे ही बच्चे पढ़ा करते थे। शाम हुई, स्पोर्ट्स में चले गए, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। ये एक डेली प्रैक्टिस थी जो हम लोगों को करना पड़ती थी। उस्ताद ऐसे कि जब इम्तिहान का जमाना आया तो कहा करते थे, अरे खेलते रहोगे, पढ़ोगे भी या नहीं? हाँ साहब पढ़ेंगे, शाम को घर आ जाना।
0: अच्छा।
1: लिहाजा उनके घर पहुंच गए, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, कोई बायोलॉजी की दे रहा है, नो ट्यूशन एट ऑल। तो इस तरह से ये मालूम होता था कि ये हमारे बाप हैं। उस जमाने में भी मिड डे मील हुआ करता था, कोई ऐसी योजना नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन निहायत साफ सुथरा, बड़े इज्जत से हम लोग खाते थे, खेलते थे। ये एक सिलसिला हाई स्कूल के बाद चला गया। फिर मुरादाबाद चले गए, केजी के कॉलेज में पहुंच गए, वहां पढ़ते रहे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए, वहां एडमिशन ले लिया। वहां ये देखा कि कोई माहौल ऐसा नहीं था कि जिसमें म्यूजिक हो, स्टेज हो, उसको भी छोड़ के चले गए।
0: मन नहीं लगा।
1: लखनऊ चले गए, वहां एडमिशन ले लिया, उसे भी छोड़ दिया। फिर सोचा कि लाओ कुछ और करो, तो फिर वहां से फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया।
0: अच्छा।
1: डिप्लोमा कर लिया फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग की तरफ तबीयत हो गई। फिर सोचा कि ये कोई बात नहीं बन रही है, कम से कम जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तो हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, वहां पर मेडिकल हिस्ट्री में एडमिशन लिया, वहां से एमए किया। लेकिन मालूम हुआ कि ये एमए कोई काम की चीज नहीं है, लिहाजा घर वालों ने कहा कि भाई जामिया में लिया जाओ। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट था कि जहाँ पर तालीम भी थी और तरबियत भी थी।
0: जी।
1: ऐसे उस्ताद थे कि जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया करते। मतलब हमारे उस्ताद थे एक प्रोफेसर मुजीब, वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे। इसी तरह वो तमाम रिवायात जो ऑक्सफोर्ड की हुआ करती थी वो हमें रखना पड़ती थी उनके क्लास में। खास तौर से उनकी हिदायत थी कि देखो बेटा, बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह से वो कहा करते थे कि देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट। तो फैक्ट को ढूंढो जो ट्रूथ के नीचे ही आपको मिलेगा। तो मालूम हुआ कि नहीं, ये बात सही है। सच्चाई में फर्क है, हकीकत में फर्क है। हर चीज जो हम देख रहे हैं वो सच्ची तो हो सकती है लेकिन वो हकीकत नहीं हो सकती। तो ये वो ट्रेनिंग थी जो हमको इब्तदाई से दी जाती।
0: अच्छा, आपने नौकरी कहा?
1: नौकरी मैंने नहीं की, यूं समझो।
0: अच्छा।
1: एक शेर में सुनाई देता हूँ, क्या पूछते हो हाले दिले दार अदा, आवारगी में हमने जमाने की सैर की।
0: क्या बात है।
1: इस आवारगी ने जाने कहाँ कहाँ घुमाते फिरे। अब दिल्ली का माहौल ऐसा था कि जहाँ स्टेज था
0: जी,
1: बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, बलवन गार्गी, रईस मिर्जा, कुक्कू माथुर, हबीब तनवीर,
0: बहुत बड़े बड़े नाम।
1: तो ये नाम थे कि इनके साथ जुड़े रहे, कहीं किसी का स्टेज हो रहा है तो वहाँ पर चले गए। कभी अलकाजी थे उनके चले गए, कैसे रिहर्सल हो रही है, क्या हो रहा है। उसी जमाने में एक कल्चरल विंग था, बल्कि यूं कह सकते हैं कि यूथ विंग पार्टी का, और प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी थे, भूपेश गुप्ता थे। हफ्ते में एक एक क्लास लेते थे वो दोनों, तो वो हमें सब समझाया करते थे कि भाई किस तरह से सोशलिज्म को लाना है, क्या करना है। एक वाकया उस जमाने का मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एमपी थे इधर शाहजहांपुर, वो भी बैठे हुए थे उस दिन, तो जब ये हमें बता रहे थे कि सोशलिज्म क्या है, रेवोल्यूशन किस तरह लाया जा सकता है, तो आखिर में कहने लगे, अरे भूपेश इन बच्चों को क्यों बहका रहा है, ये हिंदुस्तान है, बहुत बदल चुका है, इनको जेल में बंद कर दो और ये अब 20 दिन के बाद ये भूखे आएंगे तो ये क्रांति नहीं लाएंगे, बल्कि जहाँ रोटी दिखाई देगी वहाँ ये हाथ फैला देंगे, तो इसलिए क्रांति का ख्वाब छोड़ दो। तो मालूम हुआ कि भाई ये रास्ता भी बुरा है। फिर रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम शुरू हो गए लखनऊ से, उस जमाने में ये स्टूडियो नहीं था जहाँ हम बैठे हुए।
0: पहला प्रोग्राम आपने रेडियो से कौन सा दिया?
1: मुझे याद नहीं, एक याद आता है जो फीचर था लखनऊ से हुआ था।
0: अच्छा,
1: और उस जमाने में उसके 25 रुपए मिले थे।
0: फीचर आपने रेडियो के लिए लिखा था?
1: हाँ, नई किरण, मुझे याद आया।
0: अच्छा,
1: तो मुझे उस पे गर्व है आज भी कि लखनऊ से हुआ था फीचर।
0: किस पृष्ठभूमि पर आधारित था वो?
1: मेरे ख्याल से वो यूथ के ऊपर था, और मुझे याद होता है कि मैंने उसमें शाहिर की एक नज्म है, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान में जो भी क्रांति आ रही थी, क्रांति क्या आ रही थी, एक तब्दीली आ रही थी जब ब्रिटिशर यहाँ आ गई थी और गांवों पर उसका असर पड़ रहा था, जिसमें यह है कि पन्हारियां पनगढ़ छोड़ गईं और मुलायम धरती पर बूटों के खराशे पड़ने लगीं। उसमें आखिर में एक बात वो कहते हैं स्टूडेंट से नहीं बल्कि नौजवानों से, कि बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का कि जब जवान हों बच्चे तो कत्ल हो जाएं, बहुत दिनों से है ये खत हुक्मरानों को कि दूर दूर के मुल्कों में कैद हो जाएं। असल में तो इसी शेर पर वो आधारित था नई किरण, की दिशा ये है हमारे चलने की।
0: नफीस साहब, पूरी जिंदगी में आपने बहुत सारे लोगों को पढ़ा भी है और बहुत सारे लोगों ने आपके दिलो दिमाग पर अपना असर भी डाला है, तो आप किससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, किसको पढ़ना आपके दिल को बहुत सुकून देता था?
1: देखिए, मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं हर राइटर के, और उनको हमने गुरु भी मान लिया। जब कबीर को पढ़ा तो एक शांति मन को मिली
0: जी।
1: जब फारसी के शुआरा को पढ़ा, जो सूफी थे, बड़ी शांति मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा तो थोड़ा सा उन्होंने दिमाग में आए कि सोचो भी और समझो भी। इस तरह अमृता प्रीतम को जब पढ़ा, वो मुझे बहुत पसंद में आपको बता, उनकी बहुत सी नज़मों का मैंने उर्दू तर्जुमा भी किया है, मंजूम तर्जुमा भी, उनसे मैं ज़्यादा बहुत इम्प्रेस हूँ। इसी तरह से मैं आमतौर पर लोगों से ये करता हूँ कि देखो, कितना ही पढ़ लो लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ना, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारी तालीम अधूरी है। इसी तरह से जहाँ तुम कुरान पढ़ते हो वहाँ गायत्री मंत्र को पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा इन दोनों के अंदर, सूरह अलहम्द में या गायत्री मंत्र में। तो ये वो एस्पेक्ट हैं जो असर डालते रहे।
0: आपने इतिहास को अपना खास विषय बनाया
1: जी, जी जी,
0: और बहुत शोध कार्य आपने की, लगातार बहुत सारी रिसर्चेज आपने की हैं और वो पब्लिश भी हुई हैं, उस बारे में जानना चाहेंगे।
1: देखिए, इतिहास ये इत्तेफाक है कि मेरा सब्जेक्ट रहा और कल्चर भी मेरा सब्जेक्ट रहा। मैंने इतिहास को थ्रू कल्चरल वैल्यूज जानने की कोशिश की, क्योंकि यही वो बड़ी सीधी सच्ची चीज होती है जिससे हमें इतिहास को समझने में आसानी होती। फिर रोहेला इतिहास की तरफ मैं आया, तो तकरीबन 20-25 साल हो गए जब मैं इसी इतिहास पे काम कर रहा हूँ। ऐतिहासिक नाटकों को, उसकी घटनाओं को मैंने सामने रखा, तो मैंने ये सोचा कि उस्ताद का कहना था कि बी ऑब्जेक्टिव, क्या इतिहास का प्लाट हम इसलिए बना रहे हैं कि एक पुरानी कथा कह दें, या इसकी कोई यूटिलिटी है हमारी जिंदगी में? ये सोचकर मैंने स्टडी किया हिस्ट्री को। मसलन मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने की जब मैंने तारीख को देखा और एक नाटक लिखा, एक कुर्बानी गुमनाम
0: जी,
1: तो उस जमाने के जो हालात थे कि जितने भी सूबेदार थे वो सब लालची और खुदगर्ज हो चुके, और एक तरह से उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर मैंने सोचा कि हिंदुस्तान भी कुछ इसी रास्ते पे चल रहा है, प्रोविंशियल पार्टीज जो हैं वो पावरफुल होती जा रही हैं
0: जी,
1: सेंटर कमजोर हो रहा है, गिव एंड टेक सब शुरू हो चुका है, तो क्या हम इस नाटक के माध्यम से ये बता सकते हैं? उस नाटक के माध्यम से मैंने ये बताना चाहा कि आज हिंदुस्तान की सिचुएशन पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे मोहम्मद शाह के ज़माने में हुई। 1739 में एक विदेशी आया था नादर शाह, जिसने हिंदुस्तान को लूटा, कत्ल व गारत की और दौलत लेके चला गया। उससे पहले भी महमूद गजनवी आया, एक डाकू जिसने यहाँ की दौलतों को लूटा और हिंदुस्तान से चला गया, तो हम क्या सबक दे सकते हैं इस नाटक के माध्यम से? तो उसमें सबक यही था कि जो सिचुएशन मोहम्मद शाह के जमाने में थी आज भी वही है। अगर हमारा सेंटर सतर्क ना हुआ तो हिस्ट्री में रिपीट है। इसी तरह से जब मैंने नाटक लिखा वजीद अली शाह पर, उस नाटक के अंदर मैंने जब उनको पढ़ा तो मैंने ये पाया कि 13 लाख रुपए सालाना की ऑफर दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप दीवानी और फौजदारी के अख्तियार हमें देते, और इसके अलावा तमाम जो बेगमात थी और उनकी रिश्तेदार थी उनको स्टाइपेंड अलग देना चाहा, लेकिन उस शख्स ने उसको कबूल नहीं किया। और वहां वो ये कहता है कि क्या आप शेर लोमड़ी के दस्तरखान से खाएगा, और उसने उस छोड़ को कलकत्ता चले गए। तो इसका मतलब है कि गैरतदार आदमी था।
0: जी जी जी।
1: तो ये है असल हिस्ट्री, ये है वो हकीकत जो मैं उजागर करना चाह रहा हूँ हिस्ट्री के माध्यम से। यह अभी एक और ड्रामा था जो आकाशवाणी रामपुर ने किया, और क्षमा जलती रही उसका नाम है।
0: जी जी।
1: वो भी एक ऐसा अनटोल्ड स्टोरी है कि जिसके बारे में हमारी यंग जनरेशन नहीं जानती। उस क्रांति में एक तवायफ का आना, एक जनानी फौज बना लेना, फिर 187 अंग्रेजों को औरतों को शूट करना, और उसका कन्विक्शन होना और सूली पर चढ़ जाना।
0: नफीस साहब, आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे नाटक लिखे हैं जो रेडियो से तब से प्रसारित हो रहे हैं जब से रेडियो से ड्रामा प्रोडक्शन शुरू हुआ है। सामाजिक विषयों को भी आपने लिया है अपने नाटकों में, ऐसे कौन कौन से नाटक आपके जहन में है?
1: देखिए, एक नाटक रहा, ये जो शेर होते हैं और दोहे होते हैं हमें प्रवोक करते हैं कि हम इस पे प्लाट बनाएं। गालिब का एक मिसरा मेरे सामने आया, शमा जलती है तो उसमें से धुआं उठता है। तो मैंने सोचा शमा जलती है तो धुआं उठता है, लेकिन शमा की क्या हालत होती? एक लड़की जिसकी शादी होती है वो जाती है, लेकिन उस माहौल में वो शमा की तरह जलती जरूर है लेकिन पिघलती रहती, उसका कोई अस्तित्व अपना बाकी नहीं रहता। तो वो सिचुएशन जो हमारे समाज में आजकल घरों घरों है, तो जलती हुई पिघलती हुई शमा की हालत उसमें मैंने बयान की, ये एक सामाजिक चीज है। या इसी तरह से जैसे कि एक नाटक और है, वो सुबह कभी तो आएगी।
0: जी जी।
1: आज कॉलोनी बन जाती है, 10 साल के बाद ये मालूम होता है कि वो जगह तो है गैर कानूनी है, मुकदमा शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने लोन लिया बैंक से, इधर से उधर से, उनके बच्चे भी उस कॉलोनी में हो जाते हैं। ये पता नहीं चलता मुकदमे का फैसला कब होगा, लेकिन बच्चों को भी ख्वाबों में ये दिखाई देता है जैसे बुलडोजर आ रहे हैं और हमारी ढाई दे रहे हैं बिल्डिंग को। सारा माहौल उस शांति वन का शांति में बदला हुआ है। ये आज का टॉपिक।
0: नफीस साहब, आपने तो वो दौर भी देखा जब नाटक स्टेज होते, आपके बहुत सारे नाटक स्टेज हुए।
1: जी जी।
0: और धीरे धीरे ये परंपरा कहीं खो गई, अब नाटकों का मंचन बहुत कम मिलता है, हम भूलते जा रहे हैं अपनी उस रिवायत को। तो आपको क्या लगता है कि एक न दिन ऐसा आएगा कि नाटक कहीं खो जाएंगे?
1: नाटक तो नहीं खोएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं, नाटक जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है अब दिल्ली में और बॉम्बे में।
0: जी जी।
1: होते हैं
0: बड़े शहरों में,
1: बड़े शहरों में जहाँ से नाटक का जन्म हुआ था, छोटे शहरों से वहाँ नाटक खो चुका है। खास तौर से मैं रामपुरी के विषय में बात आपसे कर रहा हूँ कि वो जगह थी कि जहाँ नाटक स्टेट के जमाने में 1902 से शुरू हुए, और यहाँ पृथ्वीराज कपूर,
0: अच्छा,
1: जोहरा सहगल जैसों ने एक्टिंग की यहाँ नाटकों में। इसी तरह से यहाँ वो आगा करके जो मशहूर हैं, एक आगा हाशिर काश्मीरी, वो यहाँ पर रहे मौजूद। ये नाटक पहले तो किले के अंदर शुरू हुए, वहाँ आज भी है स्टेज जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज से अटैच हो गया है।
0: जी।
1: दूसरे फिर आवाम के लिए एक नाटक शुरू हुए जो आज किले के गेट के पास मदरसा आलिया है, उसके नीचे एक हॉल था जहां लोग आवाम देखा करते। पूरा डिपार्टमेंट यहां पर नाटक का कायम हुआ, जहां बहुत सारे आर्टिस्ट नौकर भी। फिर ये रजाली खान के जमाने में जिंदा हुआ स्टेज। आज यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ बच्चे नाटक कर सके। मैंने यहाँ के, माफ कीजिएगा नाम नहीं लूंगा, MP से रिक्वेस्ट की थी कि मैडम ऐसा कीजिए कि हमारे लिए एक मंदिर बनवा दीजिए। का मंदिर? मैंने कहा जी आप मदरसों को पाठशालाओं को बहुत पैसा देते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मंदिर कर दीजिए। कैसा मंदिर है? मैंने कहा हमारा मंदिर हमारा स्टेज होगा जहाँ हम होंगे, बच्चे होंगे, जो भी कुछ उनमें टैलेंट है वो उभर कर सामने आएगा। वायदा किया खत्म। आज के मंत्री से ही मैंने यही बात कही कि ये बच्चे कहाँ जाएं, ये सब टैलेंट खत्म होते जा रहे हैं। और इस बात को भी आप जहन में रखें कि हमारे रामपुर की जो जबान है और यहाँ का जो लहजा है वो हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा। इनमें बहुत टैलेंट है।
0: रामपुर की तारीख और इस रियासत की तारीख के ऊपर आपकी कुछ किताबें रजा लाइब्रेरी से शाया भी हुई हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी।
1: जी जी
0: जी, उस बारे में।
1: एक तो है रोहिला इतिहास, जिसका पीडीआर 1760 से लेके 1774 तक। एक है तारीख रोहिला, इसका भी तकरीबन पीरियड एक है, ये उर्दू में है लेकिन थोड़ा इसके अंदर बदलाव है।
0: तो इनमें आपने क्या क्या विषय समेटे?
1: एक और किताब है जो बड़ी मशहूर हुई है, वह है रामपुर दरबार के संगीत का
0: जी, जी, जी।
1: एवं नवाबी रस्में। इन रस्मों को हमने स्टेज किया, बड़ा अच्छा लगा, और उस तमाम तारीख को हमने बयान किया जो 350 साल से यहाँ संगीत की परंपरा रही। तो इसमें भी मैंने कोई खास बात बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये जरूर बताना चाहा कि देखो कैसा आपसी सौहार्द यहाँ बना हुआ था। अगर यहाँ पर मनसबदार अयोध्या प्रसाद मान लो नाम था, तो मोहम्मद अली भी थे, एक दूसरे के ताल्लुकात भी थे, ये रस्में सब मिला मिलजुल कर बयान किया करते थे। माहौल ऐसा बना हुआ था, मुझे याद है बचपन का, कि शायद मैं 8वीं क्लास में था, तो उस जमाने में यहाँ एक नाग मंदिर है
0: जी।
1: तो यहाँ बसंत मनाया जाता था, पूरी रात बसंत गाया या बजाया करता था। उसमें पंडित अयोध्या प्रसाद, सादक अली खां बिनकार, मुश्ताक हुसैन खां, सैयद इबन अली मियाँ, अता हुसैन खां, न जाने कितने इस तरह के मौसीकार जमा हो जाया करते। आज वो बसंत कहाँ गया, किसने तोड़ा इन तमाम चीज़ों को। इसी तरह की तमाम चीज़ें थी जो आज रिश्ते बने हुए हैं रामपुर के अंदर। सब खानदान एक दूसरे को बाई नेम जानते हैं, और सब हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे के घर इसी तरह जाते हैं। ये स्टेट की देन थी।
0: नफीस साहब, संगीत आपकी आत्मा में रचा बसा है, बहुत पसंद है आपको, और हर कोई आपके दिल को छू भी नहीं सकता। खासा मुश्किल होता है आपकी कसौटी पर खरा उतरना। तो संगीत के प्रति इतना रुझान कैसे हुआ, और अब किस तरह से आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है?
1: इसमें हुआ ये है कि संगीत तो खैर सबको ही पसंद।

0: अच्छे थे कि जैसे रामपुरी के आदमी ही इस तरह मिला करते थे, तो यूं एक सिलसिला जुड़ गया क्लासिकल मौसीकी
1: से। तो अब संगीत को किस तरह से आपने खुद से जोड़ रखा है?
0: देखिए, संगीत एक रूह की गिजा मैं मानता हूँ। जितनी शांति संगीत सुनकर मिलती है किसी से मिलती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई ड्रामा लिख रहा हूँ और किसी जगह जाकर मैं इटक गया, तो आप यकीन कीजिए कि मैं सुबह को फजर की नमाज पढ़ी
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने एक कैसेट लगाया परवीन सुल्ताना का, वो सादरा गाती हैं।
1: अच्छा।
0: भवानी ज्ञानी महाबागवानी, आप यकीन कीजिए आंखें बंद करके उस सादरा को सुन लीजिए, तो मालूम होगा कि इस दुनिया से हमारा संबंधी टूट और एक रोशनी मेरे अंदर पैदा होती है और मैं बड़े आराम फील करना शुरू करती। ये रूह की गजा है भाई।
1: नफीस साहब, जब कोई नाटक लिख रहे होते हैं या किसी फीचर की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो किस तरह का माहौल आपको चाहिए होता है? कब वो जज्बात दिल के अंदर से आने शुरू हो जाते हैं?
0: देखिए, जहाँ तक टीवी मीडिया का ताल्लुक है, उसमें तो ये होता है कि हमें वहाँ बैठ के लिखना पड़ता है।
1: अच्छा।
0: आप यकीन कीजिए, मालूम हुआ कि ये सीन जो है आपका 15 मिनट का है, हमें 3 मिनट का चाहिए, तो हमें उस सीन को 3 मिनट में ही करना पड़ता है। फिर मालूम हुआ कि इस शब्द का उच्चारण ये आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बदल कर हमें देना पड़ता है। यहाँ तक मेक महान जैसा इतना पुराना आर्टिस्ट एक डायलॉग नहीं बोल पा रहा था, हालांकि वो डायलॉग कोई ऐसी चीज नहीं थी। मैंने कहा भाई, मेक महान इस डायलॉग को इस तरह बोल। एक मशहूर आर्टिस्ट, वो भी बॉम्बे की है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, सिर्फ इतना डायलॉग था उनको, मेरे माथे पर हवा की उंगलियों ने बेसरो समानी लिखती, दिल इलाही कनीर अपनी रेशमी कफनी में खुश है। इस तरह के डायलॉग नहीं अदा हो पा रहे। बात यह है असल में कि ये डायरेक्टर हो या आर्टिस्ट हो, कल्चर को पालना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर अगर आप मौर्य पीरियड का कुछ ड्रामा ले लीजिए, तो एक भाषा तो वो होगी कि जो हमें शहनशाह के मुंह में देना होगी, जिल्ले लाई उसे बोलेंगे
1: जी।
0: दूसरी होगी उनकी बेगम की, तो अब बेगम किस तरह से एड्रेस करेंगी, आलीजा कहेंगी या जिल्ले लाई कहेंगी
1: जी। जी।
0: दूसरी भाषा मनसबदारों की, कोर्टियर की होगी, खादिमों की होगी, तो 6-7 भाषाओं का हमें अलग अलग प्रयोग करना पड़ता है एक ही नाटक में। इट इज वेरी डिफिकल्ट वन।
1: नफीस साहब, आपने रेडियो के लिए बहुत सारा काम किया है
0: जी,
1: क्या आपने महसूस किया है रेडियो के लिए लिखते हुए?
0: भाई, रेडियो मेरी जननी है और मैं समझता हूँ कि जितने भी फॉर्मेट हैं उन सबसे डिफिकल्ट फॉर्मेट जो है वो रेडियो है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हम टीवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपने भाव व्यक्त करते हैं
1: जी।
0: पूरी बॉडी है, हाथ हैं, आँखें हैं, मुँह हैं, कभी नॉडिंग कर दी, कभी यस कर दी, लेकिन रेडियो में क्या है? रेडियो हमें ये बताना चाह रहा है कि एक हमारा आर्टिस्ट है जो कमर पर एक बोझ लादे हुए एक लाश का, और उस जगह जाके वो उसे डाल देता है। हम शब्द भी यूज नहीं कर सकते, तो जाहिर है कि उसकी सांसों के एक्शन से हमें ये मालूम होगा कि इतना भारी इस पे बोझ है और ये बोझा इसने वहाँ पर फेंक दिया। 3 मिनट का गाना सुनना मुश्किल होता है लोगों को, बदल देता है। आधे घंटे का नाटक कौन सुनेगा? जाहिर है कि शब्दों में कोई बात तो है जो हमसे जुड़ा रहता है इंसान। तो मैं समझता हूँ कि जिसने रेडियो कर लिया उसके लिए कोई फॉर्मेट मुश्किल नहीं, चाहे फीचर फिल्म हो या टीवी मीडिया हो।
1: रेडियो के लिए बहुत सारा लिखा नफीस साहब
0: जी,
1: जिगर मुरादाबादी पर भी सीरियल लिखा, अमीर खुसरो साहब पर भी लिखा, सरजमीन रुहेलखंड भी लिखा, और भी बहुत सारे नाम है। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा है?
0: अगर सच पूछिए तो अभी जो आपने किया है अमीर खुसरो, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद। उसमें जिन बातों का आपने लिहाज रखा हिस्टोरिकली, मिसाल के तौर पर वही कंपोजिशन होंगी, उसी राग में गाई जाएंगी, वही साज होंगे जो हजरत अमीर खुसरो के जमाने में मौजूद थे। एक और नाटक मुझे बहुत पसंद है जो मैंने खलील जिब्रान का जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी और उनकी लाइफ, वो दिल्ली रेडियो स्टेशन से हुआ था, वादी कादिशा।
1: अच्छा।
0: मुझे बहुत ही पसंद है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा। बाकी तो ये शोध का काम आप लोग मेरे सुपुर्द करते रहते हैं, अब आपने दे दिया।
1: नफीस साहब, कुछ खास कंधों पर ही ये जिम्मेदारी दी जाती है जिनसे
0: अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, आप इस लायक समझते हैं।
1: अच्छा, ये बताइए कि शेर आप बहुत सारे सुनाते हैं अक्सर
0: जी जी जी,
1: कभी शेर व शायरी की तरफ रुझान नहीं हुआ?
0: भाई हुआ है, लेकिन मैं कभी एज ए पोएट किसी के सामने ना गया और ना जाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी मैं ये करता हूँ कि कुछ लिख लेता हूँ
1: जी,
0: और वही शेर या वही नज़्म मेरा प्लाट बन जाता।

0: जी नाटक
1: जी जी
0: अगर आप
1: आज भी मौका है और हमारी
0: बेशक
1: इच्छा भी है कि नफीस साहब के लिखे हुए कुछ गीत कह लें, कुछ शेर कह लें, कुछ नज़में कह लें, अगर वो सुनने को मिल जाए तो आनंद आ जाए।
0: बड़ी खुशी की बात है। एक तो मैं आपको एक ऐसी नज़्म सुनाता हूँ, दो सखियों के डायलॉग के रूप में ये नज़्म है।
1: क्या बात है।
0: और इस तरह की नज़्म आपने यूं नहीं सुनी होगी कि कोई टॉपिक ये लेता नहीं।
1: जी जी इरशाद।
0: अब दो सखियों के डायलॉग को आप खुद समझ लेंगे कौन क्या कह रही है। रात के पिछले पहर नीम के पिछवाड़े से कौन आता है तेरे द्वार, जरा बोल सकी, मन के दरवाजे जरा खोल सकी। कितनी अनजान है तू, कितनी नादान है तू, देखा मैंने भी है आते जाते, एक साया सा दबे पांव गुजरता है कभी, देखती मैं भी हूँ पर किससे कहूँ, सोचती मैं भी हूँ पर कैसे कहूँ। कितना अच्छा है ये इल्ज़ाम कुंवारी के लिए, बिरहा की आग में जलती हुई नारी के लिए, नगमा वो गुल के लिए, बादे बहारी के लिए। कितने सपने हैं जो साकार नहीं होते हैं, राह चलते हुए सब यार नहीं होते हैं। मान लेती हूँ तेरी बात, मगर कुछ तो बता, यूं समझ ले कि जो एक साया गुजरता है कभी, दिल धड़कता है मेरा नींद भी उड़ जाती है, करवटे लेते मेरी रात गुजर जाती है, मेरा अंगंग फड़कता है शहर जाता है, वो मेरे द्वार से खामोश गुजर जाता है। फिर बता कौन है वो और कहाँ जाता है। तूने देखा है मेरे घर के करीब एक बूढ़ा जो व्यापारी है, कुछ दिनों पहले वो एक दुल्हन को अपने डोले में बिठा लाया था, एक दिन बातों ही बातों में मुझे उस दुल्हन ने ये बताया था, बाद मुद्दत के भी वो कुंवारी है, उसी दुल्हन ने खरीदा है किसी साये को।
1: क्या बात।
0: एक और मैं आपको अमृता प्रीतम की नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है
1: जी।
0: उसका मंजूम तर्जुमा सुना रहा हूँ, जो उर्दू में मंजूम तर्जुमे आपको मिलेंगे नहीं
1: जी जी।
0: ये उन्होंने लिखी थी इस उमान से कि वारिस शाहान हूँ।
1: अच्छा।
0: आप जानते हैं वारिस अली शाह शायर को, जिन्होंने हीर रांझा लिखी
1: जी जी।
0: और आज के माहौल को उन्होंने नजरों के सामने रख के इसका यूटिलाइजेशन किया। आज आवाज देती हूँ तुझे कब्र में लेटे हुए वारिस शाह, लम्हा दो लम्हा तू कभी कब्र से बाहर भी आ, दास्तान इश्क का कोई सबक आके फिर हमको सुना। है यकीन उसको कि तुझको याद होगी वो घड़ी, रोई थी पंजाब की बेटी कभी, तूने लिखी थी एक ऐसी दास्तां, सुन के रोता है जिसे सारा जहां, आज फिर पंजाब की रोती हैं लाखों बेटियां, कह रही है तुझसे दिल की दास्तां, दोस्त है तू दर्दमंदों के लिए, कब्र से बाहर निकल हालत पंजाब देख, है लहू से सुर्ख दरियाए चनाब, जा बजा लाशें हैं चौपालों में, सर हैं बेहिसाब, किसने घोला पांचों दरियाओं में जहर, उठ रही है नफरतें अब हर लहर से, सींचते हैं खेर सब इस जहर से, जहर में डूबी फजा है जहर में डूबा धुआं, बांस जहर आलूद होकर बन गए हैं काले नाग, बांसुरी का नगमा फैलाने लगा नफरत की आग, जहर से नीले हुए हैं तन बदन, प्यार के नगमे बने हैं शोला जन, आज चरखे पर कोई गाता नहीं, अब किसी इंसान का इंसान से कोई नाता नहीं, खो गई हैं सारी सखियां नफरतों की धुंध में, हम नफस दमसाज हमदम अब नजर आती नहीं, प्यार के नगमे कोई भूले से भी गाती नहीं, तोड़ दी मल्लाहों ने सब कश्तियां, कितने वीरा हैं किनारे कैसी वीरा बस्तियां, तोड़ डाली हैं किसी ने पीपलों की टहनियां, बांसुरी पर अब कोई गाता नहीं, अब कोई रांझा नजर आता नहीं, आसमां से खून बरसता है वहाँ, रहमतों की होती थी बारिश जहाँ।
1: क्या बात है।
0: हीर क्यों खामोश है अब, गीत क्यों गाती नहीं, क्यों उदासी चार सू है कोई शह भाती नहीं, हीर क्यों खामोश है अब गीत क्यों गाती नहीं, है अंधेरे हर तरफ वीरान है आबादियाँ, अब मदारों पर हैं रोती इश्क की शहजादियाँ, आज सब कैदू बने हैं घूमते, कोई वारिस शाह अब इनमें नहीं, मैं कहाँ से ढूंढ कर अब लाऊं वारिस शाह को, आज आवाज देती हूँ तुझे कब्र में लेटे हुए वारिस शाह, लम्हे दो लम्हे के लिए कब्र से बाहर भी आ, दास्तान इश्क का कोई सबक आज हमको फिर सुना।
1: क्या बात है। यकीनन दिल में गहरे तक उतर जाने वाली ये आपकी नज़्म है और नफीस साहब बहुत खूबसूरत लफ्जों में आपने इसका तर्जुमा किया है। बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं
0: जी जी।
1: नाटक भी लिखते हैं, रूपक भी लिखते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो आपके इस लिखावट से घर पर किस तरह की रिएक्शन होती है?
0: माहौल अच्छा है। आपको मैं आज बता रहा हूँ कि मेरी बीवी भी लेखिका है।
1: अच्छा।
0: उन्होंने एक बार जल की भी लिखी जो रेडियो से हुई।
1: अच्छा,
0: बच्चों के लिए लिखती हैं, एक किताब भी उनकी छपी थी उर्दू एकेडमी लखनऊ की तरफ से, और उनको उस जमाने में 13,000 रुपए का अवार्ड भी मिला था। पोस्ट ग्रेजुएट है, माहौल
1: पूरी सपोर्ट मिलती है।
0: तो उन्होंने बस इतना ही मुझसे कहा था कि मैं सर्विस तो नहीं करूंगी, सिर्फ बच्चों की तरबियत करूंगी।
1: क्या बात।
0: और उसने अपनी सारी जिंदगी बच्चों की तरबियत में लगाई।
1: आप उस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र, रिटन वर्क आपका चलता है,
0: फीडबैक मुझे मिलता है।
1: अच्छा।
0: और जब तक आप यकीन कीजिए कि अगर बीवी दमसाज और हमनवा नहीं है, कोई लेखक कुछ नहीं लिख सकता।
1: अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: मेरे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं, एक तो इसी मीडिया में है, पब्लिसिटी में MBA करके वो चला गया था और बड़ी फॉर्म है, दिल्ली में वो रहता है। दूसरा बच्चा मेरा इंजीनियर है, जद्दे के अंदर है।
1: अच्छा,
0: एक लड़की उसके है, एक लड़का उसके।
1: अब बच्चों को भी इसी तरह के कल्चर का शौक है,
0: वो पढ़ते हैं, मेरे लिए किताबें लेके आते हैं।
1: क्या बात।
0: आप उनसे किसी के बारे में पूछ लीजिए, चाहे वो शेक्सपियर हो, अमृता हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो। इवन मैंने उन्हें कहा कि बेटी ये किताब रखी है, लेते जाओ, श्रीमद भागवत गीता मैंने पढ़वाई। मैंने उन्हें एक दिन सुनाया, मैंने कहा इसके अंदर तुम्हें जिंदगी की बहुत सी चीजें मिलेंगी। आज मैंने कहा आप देखिए कि दुनिया के अंदर मुसलमान जिस परेशानी में डूबा हुआ है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए रास्ता कौन सा अच्छा है। तो इसी गीता ने आपको 3 रास्ते दिखाए हैं। आपको नजात की तलाश है, उन्हें मुक्ति की तलाश है, किसी को सल्वेशन की तलाश है, किसी को निर्वाण की तलाश है। आपको ये बताती है गीता कि आप कर्म के जरिए रास्ता पा सकते हैं,
1: बेशक
0: आप ज्ञान के जरिए रास्ता पा सकते हैं, और आप एक तीसरा रास्ते के जरिए भी आपको मुक्ति मिल सकती है, चाहे एकांत में बैठ के पालो। ये 3 रास्ते, आप जो रास्ता चूज करेंगे आपको नजात की तरफ ले जाएंगे।
1: आपका रूटीन क्या रहता है, कितने बजे सुबह होती है और कितने बजे रात ढलती है?
0: भाई इसमें ऐसा होता है कि अगर मूड बनाए आदमी का, सुबह 5 बजे तक उठे, फिर जरा आसमान को देखा, छत पे टहले, कुछ फूलों से को देखा, मुझे तो आप यकीन कीजिए कि ऐसा लगता है कि फूल ये कलियों के चटकने की भी आवाज मेरे कानों में आ रही है। नमाज पढ़ ली और उसके बाद सो गए, दिन के 12 बजे गए इसी तरह से।
1: जी जी।
0: कभी ये होता है कि जल्दी सो गए, तो कोई खास रूटीन मेरे ख्याल से होता नहीं है लेखकों का, एक सब कहने की बातें,
1: मूड पे डिपेंड करता है,
0: मूड क्या जरूरत पर होता है।
1: अच्छा, सारी बातें हो गई और आपके शख्सियत के लगभग लगभग हर पहलू पर हमने बात की, लेकिन एक चीज रह गई है।
0: जी फरमाइए।
1: आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं।
0: पेंटिंग मैं आज भी करता हूँ।
1: जी।
0: और मैंने आउटडोर पेंटिंग बहुत की है।
1: आपकी पेंटिंग का खास कोई विषय रहता है या
0: नेचर?
1: अच्छा, नेचर,
0: ओनली नेचर।
1: जी।
0: आप यकीन कीजिए नेचर मुझे इस तरह से पसंद है कि मैं जब एक शूटिंग में था अल्मोड़े में, तो वहाँ बालकनी थी और जिस जगह होटल ना है उसकी लिफ्ट नीचे को चलती है, ऊपर को नहीं।
1: अच्छा।
0: तो उस बालकनी में से आप बैठ के पूरी वैली को देख सकते, बैठा रहता था, जैसे मैं कहता हूँ ये हवा सरगोशियां कर रही है,
1: जी जी,
0: छेड़ रही है कलियों को, गुदगुदा रही है कि तुम खिलो, मुझे आवाजें आ रही हैं उनकी। तो मैंने बच्चे को खत लिखा था कि बेटे पता नहीं अल्लाह मियाँ से हम लोग क्यों डरते हैं, अल्लाह तो सरापा जमाल है, उसका नूर हर तरफ बिखरा पड़ा, ये मध्यम स्वर कौन सुनेगा, मैं सुन रहा हूँ, मत डरा करो। तो इसलिए मुझे नेचर से हमेशा प्यार। और आप जब सफर करेंगे तो आपको इससे बड़ा कोई दोस्त भी नहीं मिलेगा।
1: क्या बात,
0: यकीन कीजिए।
1: नफीस साहब, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हम चाहते तो हैं पूरा करना, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, हालातों की वजह से पूरा नहीं कर पाते। तो आपका ऐसा कौन सा काम है जिसे आप अंजाम देना चाहते हैं? लगभग
0: जिस काम को हाथ में लिया बस कोशिश ये करते हैं कि अल्लाह इसे पूरा करे, क्योंकि वो खत्म होगा तो वही काम दूसरे को जन्म देगा।
1: जी जी जी।
0: तो ना काम का सिलसिला बंद होगा, उम्र तो उतनी है जितना आप कर पाएगा, तो ख्वाहिशें करने से भी क्या फायदा, जो ख्वाहिशों में बन गया वो मंजिल नहीं पा सकता।
1: क्या बात है रफी साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया भाई।
2: श्रोताओं, ये थी जिंदगी के आईने में कार्यक्रम की आज की कड़ी। अगले अंक में फिर हमारे साथ होगी एक और शख्सियत, तब तक के लिए असीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक। जिंदगी के आईने में आज आपने सुनी कड़ी संख्या 11। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। आज सुनिए एक ही गायक कलाकार की गाए कुछ गीत। आज की कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति।

कार्यक्रम वन भवन में पहला गीत कुमार साहिल और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या।

साथियों, आपको बता दें कि कविता कृष्णामूर्ति एक भारतीय पार्श्व गायक हैं। दुनिया में उनका एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सुरीली, दमदार और शास्त्रीय आधार वाली आवाज़ से 80 और 90 के दशक में भारतीय सिनेमा पर राज किया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर भावुक और तेज तर्रार हर तरह के गीतों को बखूबी गाया। इनका जन्म 25 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम शारदा कृष्णामूर्ति है। उन्होंने मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक बंगाली फिल्म के लिए गीत में महान गायिका लता मंगेशकर के साथ गाने का पहला मौका दिया था। दोस्तों, कविता कृष्णामूर्ति को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से इलो इलो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, डोला रे डोला और मार डाला, ये गीत उनके सुपरहिट गीतों में हैं। भारतीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 2005 में दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए लगातार 3 बार 1995, 96 और 1997 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो सुनते रहिए कविता कृष्णामूर्ति के गाए खूबसूरत गीत।

खलनायक फिल्म में अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति को। कविता कृष्णमूर्ति का गाया गीत अब सुनिए फिल्म याराना में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन में एक ही गायक कलाकार के गीत। आज की कलाकार हैं कृष्णा मूर्ति, कविता कृष्णा मूर्ति, और आपके साथ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वीं स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपए और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग इनकी चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु 31 जुलाई 2026 तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम का पहला ईमेल संदेश हमें मिला है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू का। कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनाज शाहनवाज अब्बासी, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन ने ईमेल संदेश भेजा है और ये ईमेल मिला है आसिफ की ओर से। ज़िला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से महरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा शकील सिद्दीकी, फहीम मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान की तरफ से। आप सभी के नाम ये गीत फिल्म हीरो का ये गीत।

कार्यक्रम गीत आपके नाम के अगले संदेश हैं आप सभी के। पद्मा टॉकीज से नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह,

ये गीत हमने किया है आप सभी के नाम। फिल्म धड़कन से आवाज़ें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की। दोस्तों, गीत सुनवाने से पहले आपसे एक अनुरोध है, हमारे उन सभी श्रोताओं से जो बार बार ईमेल भेज रहे हैं, 9-9, 10-10 ईमेल हमारे पास आ रहे हैं जिसको पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है, और बाकी श्रोताओं से सबसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी हमें ईमेल करें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें। गीत आपके नाम airrampur@gmail.com पर आपके ईमेल संदेशों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

कार्यक्रम की अगली ईमेल संदेश हमें मिले हैं आपके कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी का और सोहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र झीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिवार परिहार, आप सभी के नाम किया है हमने ये गीत फिल्म इश्क से। इस गीत को कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति ने खूबसूरत आवाज़ों से संवारा है। सुनिए ये खूबसूरत गीत और फिर एक इसी अनुरोध के साथ के ईमेल संदेश हमारे पास नहीं है, ईमेल भेजते रहिए ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे और आपके नाम हम गीत करते रहें। ईमेल भेजने के लिए एक बार फिर सुन लीजिए, गीत आपके नाम AIR रामपुर @gmail.com।

कार्यक्रम गीत आपके नाम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से। कार्यक्रम का अगला ईमेल संदेश वाड़ी खाम गांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और वाणी परिवार के सभी सदस्यों का संदेश हमें मिला है। एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे का, आराध्या खर्चे, वैष्णवी खर्चे, आप सभी का ये संदेश हमें प्राप्त हुआ है और ये गीत हम आपके नाम कर रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला संदेश। इस गीत को हमने किया था आप सभी के नाम।

जेल रोड या जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशर जहां। टैगोर गार्डन है नई दिल्ली से रविंद्र सिंह झापड़ा, इंद्रजीत कौर झापड़ा, स्वीटी झापड़ा के नाम। और अब अगला ईमेल संदेश हमें लिख भेजा है दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी ने। सोनम एकेडमी से चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीपा ने। बिहार स्टेट डुमराव से अस्मा अंसारी, आमना परवीन, टुक टुक अंसारी, लड्डू अंसारी। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू जाटव और उमरखेड़ से सिराज खान, शबाना खान।

जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातमा नास, वलीउल्लाह अंसारी पुराना तालाब डुमराव से आसमा नास अंसारी ने संदेश भेजा है।

मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला, आप सभी के नाम हमने किया है ये गीत लता मंगेशकर।

अगला ईमेल संदेश जेल रोड जालंधर से रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां का। जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से वलीउल्ला अंसारी, जालंधर से संदीप कुमार जटौलिया। गंज डुडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। आप सभी के नाम किया है हमने फिल्म फकीरा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म फ़रीदा के इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम गीत आपके नाम अब यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। इस समय दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 1:15 पर कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत सुनवाए जाएंगे क्षमा जौहरी के गाए कुछ लोकगीत। आजल कार्यक्रम हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी 1:30 पर, जिसमें चर्चा होगी गर्मी और गर्म हवाओं से अपने और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। मनोरंजन के लिए सुनेगा लोकगीत। इसके अलावा ससुराल में संबंध कैसे मधुर बनाए रखें, इस विषय पर सुनिएगा वार्ता। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में ग्रामीण महिला से बातचीत होगी। आपसे ग्रामीण महिला होंगी ममता, आपसे बात करेंगी मीना। सुनहरा दौर के अंतर्गत दोपहर 2:30 पर सुनिएगा 60 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। दूसरी सभा में शाम 5:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का प्रसारण। समय याद रखिएगा शाम 5:00। फिल्मी गीतों का कंप्यूटर कार्यक्रम आज शाम आप तक पहुंचेगा शाम 5:45 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 6:10 पर। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:20 पर आप सुनेंगे चर्चा गंगा दशहरा और गन्ने में कीट प्रबंधन पर। खरीफ में बीज शोधन और भूमि शोधन का महत्व विषय पर भेंट वार्ता होगी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनुज बंसल, आपसे भेंट कर जानकारी लेंगे प्रवीण कुमार। साथ ही सुनिएगा लोकगीत। विविधता के अंतर्गत शाम 7:00 वार्ता का विषय होगा रिश्तों की परवरिश। वार्ताकार रहेंगी समीना बानू। शाम 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आज सुनवाई जाएंगी संजीव पारशरी की गजलें। गीत गाता चल कार्यक्रम 8:00 तक पहुंचेगा, जो कार्यक्रम है व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का। 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सबरस। आज के कलाकार होंगी बीना। श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर आप तक पहुंचेगा रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर की जाएंगी इलाकाई खबरें।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन व अमान और इंतजामी कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मुनक्किद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायात का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के जरिए मौसूल होने वाली शिकायात के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर जोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायात में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मजीद चौकस रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायजा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मजीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने आयुष सेहत और फलाह व बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहराह पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC फ्लड PSC फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपए और डीजल 95.36 रुपए फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वजा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मीना में क़याम करेंगे। मीना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है। जैसा कि

दोपहर की 1:15 पे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। लोकगीतों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं छमा जौहरी।

कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे क्षमा जौहरी की गाए कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारी ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम आंचल।

0: विक्रम आंचल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना। मैं आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गर्मी और गर्म हवाओं से अपनों अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। साथ ही साथ वार्ता सुनवाई जाएगी और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी सुनवाओ जाएगा और मनोरंजन लोकगीत से कराओ जाएगा। बहनों इन दिनों गर्मी खूब पड़ रही है और गर्म हवाएं भी चल रही हैं, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी गर्मी में हमें अपनों अपने बच्चों को ध्यान रखना जरूरी है। तो बहनों सबसे ज़रूरी है अधिक से अधिक पानी पिए और पिलावा। और जो बहनें घर के कामकाज के अलावा खेतबाड़ी को काम करती हैं वे बहनें सुबह को जल्दी उठें और काम धाम निपटाए कर जल्दी ही खेतों पर जाएं, बाकी काम आए का कर लें, क्योंकि घर को काम तो अबेर सवेर कर लो जाता है। इसलिए बहनों 9-10 बजे तक काम करके घर पर लौटे आए खेत पैसा। बहनें करत कहाँ, धीरे धीरे 8-9 बजे तक घर को काम करती हैं, फिर 9 बजे खेतों पर जाती हैं, फिर 11-12 बजे खेतों से लौटती हैं। बहनों जब मौसम में यानी ऐसी गर्मी में ऐसो बिल्कुल ना करें, समय से उठें और घर को काम धाम करें और समय से खेतों पर जाएं, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है तो ऐसी गर्मी में हम बीमार भी पड़ सकते हैं। और हाँ, दोपहर के बाद 3 बजे के बाद ही खेतों पर जाएं। जब खेतों पर जाएं तो सिर पर कपड़ा बांध कर रखें या टोपी लगा कर जाएं। और हाँ बहनों, एक बात तो सबसे ज़रूरी है, बाहर जब लंबे सफ़र में जाएं तो पानी साथ में लेकर जाएं, पानी को समय समय पर पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। ग्लूकोज या ORS के पाउडर का घोल का पानी पिए, हो सके तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक तेज़ धूप में बाहर कम निकलें, बाहर जाते समय टोपी छाता का उपयोग करें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, ताज़े फल खाएं, लस्सी शिकंजी बनाकर पिए। जो हमारी बहनें घर के कामकाज के अलावा कोई और स्वरोजगार करती हैं वे भी समय से काम करें और खूब पानी पिए। कुछ हमारी बहनें करत कहाँ हैं, काम के लालच में पानी ना पीती हैं, कहती हैं जो काम कर ले तई पानी पियेंगे, अरे एक काम और रहेगा बाकी बाद पानी पियेंगे, ऐसो कहत कहत तब तक हमारी बहनें भूल जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बहनों काम को लालच बिल्कुल ना करें, समय निकाल कर पानी पिए और खान पान को ध्यान रखें। अगर लंबे सफ़र में जाएं तो पानी की बोतल साथ में लेकर जाएं। बहनों ध्यान रखें, सलाद का रोज़ प्रयोग करें, जैसे टमाटर, खीरा, चुकंदर, नींबू शामिल करें, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और आड़ू यानी पानी वाले फल जरूर खाएं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना होता और हाँ बीमार भी कम होता। दही मट्ठा की लस्सी बनाकर पिए। बहनों एक चीज़ को और ध्यान रखें, जो भुने हुए चने होता बाको सत्तू बनाकर अपनी डाइट में शामिल करेंगी तो आप गर्मी से बच सकती हो। बहनों भुने हुए जौ का सत्तू बनाकर भी पी सकती हो, जो हमारी बॉडी को ठंडक रखता है। गर्मी के मौसम में आम का पना बनाकर पिए, जो हमें लू से बचाता है। नारियल पानी पिए, जिससे हमारे शरीर में ठंडक रहती है। ध्यान रखें अधिक गर्मी में बंद कमरे में ना रहें, दरवाज़ा खोल कर रहें। बच्चों का विशेष ध्यान रखें, यदि चक्कर आए, कमजोरी लगे या तेज़ गर्मी महसूस हो तो तुरंत छाया में आराम करें और पानी पिएं, रोज़ व्यायाम करें। बहनों चाय, कॉफ़ी और फास्ट फूड से बचें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चन को गर्मी और गर्म हवाओं से बचा सकती हूँ। बहनों अब कार्यक्रम में सुनते हैं वार्ता, जिसको विषय है ससुराल में संबंध कैसे मधुर बनाए रखा है। वार्ताकार हैं श्रीमती भावना आर्य। तो सुनते हैं जो वार्ता।
1: बहनों हर लड़की को मायके से ससुराल जाना होता है। एक बेटी के दो परिवार होते हैं, एक वह जहाँ उसका जन्म होता है जो कि उसका मायका होता है, दूसरा परिवार उसका ससुराल होता है जहाँ वह विवाह के बाद रहती है। मायके में उसके सगे संबंधी होते हैं जैसे उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और उसकी सहेलियाँ। इन रिश्तों के साथ बेटियाँ अपने बचपन से युवा अवस्था तक पहुँचती हैं। इसी समय में वे पढ़ती लिखती हैं और खेलते खेलते सबके साथ मिलजुल कर कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बहनों, यहीं से शुरू होता है उसका दूसरा परिवार। जब एक बेटी शादी करके ससुराल जाती है जहाँ उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, उसे इस घर को भी अपना घर मानना होता है, इस घर को भी स्वर्ग बनाना होता है। बहनों, अब उस बेटी को समझना होगा कि कैसे ससुराल में संबंध मधुर हों, कैसे उन लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएं, कैसे परिवार वालों को खुश रखें कि वह सब उसकी तारीफ करें। बहनों, इसके लिए हर बेटी को अपने सास ससुर को अपने माता पिता के रूप में देखना चाहिए, अपनी ननद को अपनी बहन की तरह ही समझना चाहिए और अपने जेठ देवर को अपने भाइयों की तरह ही समझना चाहिए। एक बेटी को बहू के रूप में सभी का सम्मान करना चाहिए। एक बहू को अपनी ससुराल में बड़ों को सम्मान तथा छोटों को प्यार देना चाहिए। जब एक बहू ऐसा करती है तो उसको भी सम्मान और प्यार मिलता है। रिश्तों में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी है। रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान का भूखा होता है। जब हम किसी को सम्मान और प्यार देंगे तो वह भी बदले में प्यार और सम्मान अवश्य देगा। प्यार के साथ सबका दिल जीता जा सकता है। ऐसे ही एक रिश्ता बेटी को अपने पति के साथ होता है। बेटी को अपने पति का सम्मान भी करना होता है। बेटी का कर्तव्य है कि ससुराल में अपने पति के साथ संबंध बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपसी समझौते और प्यार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब एक बेटी के संबंध उसके पति के साथ अच्छे होते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। पति और पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी के पहिए एक साथ चलते हैं, उसी तरह पति और पत्नी को भी मिलजुल कर जीवन रूपी गाड़ी को चलाना पड़ता है। जब पति और पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं तो उनके आने वाली संतान भी समझदार और गुणवान होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। बच्चों की पहली पाठशाला परिवार ही होती है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए पति और पत्नी को समझदारी के साथ चलना होता है। जो संस्कार आप उन्हें दोगे वह वही सीखेंगे। बहनों, अब आज के युग में धीरे धीरे हमारी संस्कृति में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप होने लगा है, जो कि हमारे बिगड़ते रिश्तों की वजह है। हमारे रहने के तौर तरीके, पहनने के कपड़ों, शान शौकत में बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है। जो माता चमक धमक की चकाचौंध से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमें ससुराल में मधुर संबंध बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनों से बड़ों की बात माने, उनके सुझावों को समझें, ना कि उनकी बात का बुरा माने। आज की पीढ़ी के नाजायज खर्चे भी मनमुटाव की एक मुख्य वजह है। हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना की जरूरत हो। यह चमक धमक की दुनिया में दूर रहना चाहिए। देखने में आता है कि हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं कि उसके पास इतने कपड़े हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए, वो इतना खर्च करते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, उनसे आगे रहना है, उनसे ज़्यादा खर्चीला बनना है, या सब दिखावे के चक्कर में अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। बहनों, यही गलती हो जाती है। हमें हमेशा अपनी स्थिति को देखते हुए खर्चे करने चाहिए। हमें अपने पति और परिवार की आमदनी को ध्यान में रखकर खर्च करना चाहिए। अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो परिवार के बड़ों के साथ बात करनी चाहिए। समस्या कैसी भी हो, मिलजुल कर उसका समाधान अवश्य निकाला जा सकता है। बहनों, देखने में आता है कि ससुराल की छोटी से छोटी बातें आज कल की बहुएं अपने मायके में शेयर करने लगती हैं। इससे परिवार का माहौल खराब होने लगता है। एक अच्छी बहू का कर्तव्य है कोई भी बात को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका मायका हो या पास पड़ोसी हो। कोई भी सहेली जो भी समस्या हो उसको अपने सास ससुर या पति को बताएं। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशी और उसके ससुराल में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और मधुर संबंधों की बुनियाद पर टिकी है। अगर ससुराल में सब अच्छा रहेगा तो जाहिर है यह आपके जीवन साथी के साथ आपके समय और संचार की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। सास ससुर भी आपके माता पिता हैं, वह उस समस्या का समाधान अवश्य ही निकालेंगे। यदि कोई भी बात है तो अपने जीवन साथी को बताएं, इससे परिवार का माहौल सही रहता है। अब वह परिवार ही आपका परिवार है, उसकी समस्या ही आपकी समस्या है। एक बहू को इन सब बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ स्वयं ही मधुर हो जाते हैं। जो भी बहुएं अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, वह अपने ससुराल वालों की नज़र में सम्मान व इज्जत पाती हैं, तो उनके दिलों में अपना एक अलग स्थान पाती हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और घर की लक्ष्मी को अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। घर के छोटे या बड़े तक सबका ख्याल रखना चाहिए। ससुराल के हर रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। ससुराल में यदि कोई अपने मन की बात आपसे करता है तो कोई नई चीज आपको सिखाता है, घर के रीति रिवाजों को आपको बताता है, तो उन्हें बहुत ध्यान से सुने और समझें। क्योंकि अब एक बहू को अपने ससुराल के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना होगा। जब एक बहू इन सब बातों को समझ लेती है तो उसके लिए उतना ही जीवन आसान हो जाता है। घर में बच्चों की बातों को भी सुने। ऐसा करने से धीरे धीरे आप सभी के दोस्त बनने लगेंगे। जब कोई हमारे बिना बताए हमारे लिए हमारी पसंद के अनुसार कुछ कर देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह आप भी सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। विशेषकर आपके घर के सदस्यों के पसंद का खाना बनाकर उनका दिल जीत सकती हैं। साथ ही जब खरीदारी करने जाएं, तब भी उनकी पसंद की चीज़ें उनके लिए ले आएं। फिर देखिए वे आपको कितना प्यार करने लगेंगे। एक बहू को अपने ससुराल की तुलना मायके से कभी नहीं करनी चाहिए। अब ससुराल ही आपका घर है। जब एक बहू इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलती है तो उसके संबंध ससुराल वालों के साथ ही मधुर हो जाते हैं। आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत हालचाल लेते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग आपसे अपने स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं, इसलिए छोटे छोटे तरीके से भी जाहिर करते रहें कि आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए अपनापन महसूस करना चाहिए। छोटी मोटी खींचतान करते रहना चाहिए, इससे माहौल खुशनुमा और जीवंत बना रहता है। ऐसे में थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ें। कभी कभी किसी सफर में जाएं तो घर के बाहर के माहौल में लोग खुलापन और आज़ादी महसूस करते हैं। पारिवारिक रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पारिवारिक संबंध न केवल हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और व्यवस्था के कारण परिवार के सदस्यों के बीच की नज़दीकियाँ कम हो रही हैं। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानबूझकर प्रयास करें और रिश्तों को सहजने के लिए समय निकालें। यह कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनसे आप अपने पारिवारिक रिश्तों को गहरा और मजबूत बना सकते हैं।
0: बहनों, अभी आपने जो वार्ता सुनी, हमें उम्मीद है आप इस वार्ता को सुनकर अपनी ससुराल में मिलजुल कर रहेंगी और काम मिलजुल कर करेंगी और सास ससुर से प्यार से बोलेंगी। बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं मनोरंजन। तो सुनते हैं जो लोकगीत। कलाकार हैं रूबी रस्तोगी।

0: बहनों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है आपको लोकगीत पसंद आओ होगा। कलाकार थी रूबी रस्तोगी। बहनों, कार्यक्रम में अंत में सुन लेते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बातें। हमने काका बातें करी, हम आपको सुनवाते हैं। आप हैं ममता, ग्राम सुकटिया, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से।
1: दीदी राम राम।
2: राम राम।
1: अपनो पतो बताए थे बहन को?
2: ममता देवी, जिला बरेली, गांव सुकटिया।
1: अच्छा, तो आप क्या करती हैं?
2: हम उसने घर ही को काम करता है अपने घर में।
1: तो आपके परिवार में कौन कौन है?
2: हमारे परिवार में लड़की है हमारी, एक बहू है, लड़का है, नाती है, दो मियां बीवी हम।
1: तुम्हारी बहू तुम्हारे साझे है या अलग है?
2: हमारी बहू साझे है।
1: कितने दिन हो गए तुम्हारे लड़का को शादी में?
2: 3 साल हो गई हमारे लड़का को शादी को।
1: आजकल की बहू तो साझे रह नहीं रही है, आपकी बहू इतने दिन हो गए तो भी साझे है?
2: मामा ऐसे होते देखो, कुछ जो है सासू ऐसी होती है कुछ। हाँ। उन्हों के अंदर थोड़ी होता है, थोड़ी बहू उन्हों के होता है। दोनों जने गुंजाश से रहेंगे तो अच्छे से परिवार चले वो। अब लड़ाई झगड़ा जहाँ देखो, आजकल की बहुआ है लड़कियाँ तभी कुछ ज्यादा खर्चा करती हैं, और हम तुम जाए हम थोड़ा कम में कर लेते हैं, गुंजाश कर लेते हैं। अब अगर उनसे कहेंगे तुम गुंजाश करो ये ज्यादा खर्चा मत करो, तो भाई में वही थोड़ी बहुत
1: लड़ाई झगड़ा
2: भाई। न कहेंगे तो कोई बात ना, तो जब सोच लेते हैं कि एक जन हमारे घर में ज्यादा है
1: और
2: उसको खर्चा ही रहो।
1: तो आपकी तो कुल उम्र होगी?
2: हाँ, 50 साल से वही 1 साल।
1: तो देखो गर्मी को मौसम चल रहा हो तो जैसा आमिया भी खूब आ रही है, और
2: आमिया खूब आ रही है,
1: समय आएगा वो तो आप अचार डाल लेती हैं?
2: हाँ, अचार डाल लेता।
1: आपने डाल लो?
2: अभी तो ना डालो, डालेंगे।
1: काय काय को अचार डाल लेती है?
2: हम देखो आम को अचार डालते हैं, मिर्च है तो ये मिर्च को डाल लेते हैं, नींबू को डालो है, जिसको जो पसंद है वो खा लेते हैं।
1: तो आम को अचार कैसे डालते?
2: आम को अचार कच्चे आम मंगाते हैं। हाँ। तो कच्चे आम मंगा के धो लेता हूँ, अच्छे से धो ले, फिर उन्हें जैसे कटे हुए होते हैं तो उन धो लेता हूँ, उनको पन्नी हाई छिक्कल होता है वो तो सूख के निकलता है, तो उन्हें अच्छे से धोए के और फिर नमक और हल्दी मिला के रख देता हूँ शाम को। शाम को धर देता है तो सुबह ही धूप में डाल देता हूँ। वहाँ मसालो डालते हैं वो घर को डालते हैं, क्योंकि मॉल को मसालो आता तो वहाँ मिलावट ज्यादा आती। हाँ, पैसा पड़ता ज्यादा, वहाँ मिलावट।

0: ज्यादा आती है तो हम घर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा, घर के मसाले में काका मसाले डालती हैं?
0: जीरा भी डाल दें, अजवाइन डाल दें, सौंफ डाल दें, धनिया डाल दें और कलौंजी डाल दें,
1: अच्छा।
0: काली मिर्च वगैरह, जैसे खड़ो गरम मसालो है वो ले आए तो वो डाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: और हल्दी और मिर्च नमक तो पड़ता ही पड़ता है। सब अमियां सूख गई तो उनको हल्कू से छिक्कल होता है वो हटा देते हैं, पन्नी आई वो
1: अच्छा
0: हटा देते हैं, सब फ्रेश करके और मतलब डोंगा आया कोई पराठे बामे कर ली तो बामे सब चीज डाल दे और फिर उसमें तेल डाल दो, तेल डाल के अपने सब मिला के और डिब्बा में भर दो, अच्छे से अपने भर दो और जहाँ दाब के भर देंगे तो हमारा तेल बहुत बामे कम पड़ेगा।
1: तेल तुरंत डाल देती हो या एक दो दिन बाद?
0: ऐसो हम तुरंत कम डालते हैं, ऐसे डालते हैं कि अमिया में जैसे हमने ज्यादा डाल दो तो अब वो 4 दिन रखो तो अमिया तेल में फूलेगी हमारी, क्योंकि सुखाते हैं वो फूलेगी तो तेल ओवर जाए निकल जाए, इसलिए कम डालते हैं। आधा डिब्बा डालते हैं जब देख लेते हैं हमारी अमिया कितनी फूल गई तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं।
1: और ओवर न कहती है हमारे अचार पर फफूंदी आ जाती है जब तेल में नभिगाते पूरी तरह से, तो आपके अचार में फफूंदी आती है?
0: हमारे तो अचार में फफूंदी ना आता क्योंकि हम जो है समय समय पर धूप दिखाई लेते हैं तो फफूंदी नहीं आता, हमारे तो 3 दिन साल अचार चल जाता है।
1: फफूंदी के वजह से पाउडर भी तो आता, तो आप नहीं डालती हैं?
0: हम पाउडर नहीं डालते कभी, मोल की चीज डालते ना हम घर की इस्तेमाल करते हैं, गांव की तरह डालते हैं हम। अब कुछ अचार ऐसा है अब जैसे कच्ची अमियां चल रही है हमने जो रख दो अपने की सालों साल अपने खाएंगे, अब कच्ची अमियां चल रही है तो कच्ची अमियां में ऐसा है हम थोड़ा हल्को मसाला डाल लेते हैं तो रोज में चलता रहता है, ताजी ताजी अपने रोज में जाता है।
1: अच्छा, नींबू को अचार कैसे डालती है?
0: नींबू को अचार ऐसे डालते हैं हम, नींबू लाते हैं और नींबू हम जो है हल्को पानी गुनगुनो करके बाबा हम नींबू डाल के रख देते हैं।
1: अच्छा, गुनगुने पानी में?
0: हाँ, और नींबू डाल के हम रखे रहने देते हैं, 5 दिन रखो, 6 दिन रखो, 8 दिन रखो।
1: नींबू खराब ना होता तो 5-6 दिन?
0: ना ना खराब ना होता तभी हम नींबू लेते हैं लिखा।
1: 5-6 दिन काय के लिए डालती हो?
0: 5-6 दिन नींबू इसलिए डालते हैं बामा कि जो नींबू को पानी होता है
1: कड़वापन
0: कड़वापन लगता है वो पानी सब निकल जाता है, हल्को से नमक डाल के और रख देते हैं तो फिर बाद में हम जो है सही नींबू लेते हैं सब लिकार लिकार के हमने कतीरा काटे और धूप दिखा लेते हैं उन्हें, तो बवारे अचार में जो सौंफ धनिया ना डालते हैं।
1: इसमें क्या क्या डालते हैं?
0: बामा डालते हैं, अजवाइन है, जीरो है, काली मिर्चा है, हल्की लौंग डाल देते चार जय गरम मसालों पड़ता है, काला नमक और तेल को मुंह पर लगाओ रख दो, तेल चो ज्यादा डालो चो कम डालो।
1: आप बता रहे हैं कि हम मिर्च को भी अचार डाल लेता तो हम मिर्च को अचार कैसे डालती है?
0: मिर्च को अचार ऐसे मिर्च लाए हैं तो मिर्च सुई से फाड़ लियो, टुकड़न में काट लियो जैसी पसंद हो, तो हम सुई से फाड़ लेते हैं और मिर्च को जैसे ऐसे करके कर लेते हैं, जैसे मतलब दोनों पर्तन में मिर्च को थोड़ी गैप कर लेते हैं उसमें, तब हम हमने जैसे सौंफ धनिया और अजवाइन वगैरह और जो गर्म मसाले जो डालने हैं और मिर्च को थोड़ी ना 1.5 घंटा अब तो तेज धूप पर 1.5 घंटा मिर्च को आइले आ लेते तब आपको पानी कते मर जाता है हट जाता है मिर्च।
1: अच्छा,
0: पहले ही सुबह में भर दो अपने और भर के तब मिर्च में मोबा लगाओ और रख दे, तो मिर्च जो है हम ज्यादा दिन की ना रखते, तो ज्यादा दिन की मिर्च जो रखेंगे तो जो है थोड़ी बदलाव मारता है, इसलिए मिर्च ताजी ताजी खाते हैं 8-15 दिन की।
1: तो मसालो वैसे ही तैयार करती है जैसे आम को अचार को?
0: हाँ, हम ऐसे ही तैयार करते हैं।
1: आपने अभी बताई ये मिर्चा आयले आ लेता है, आयले आने को मतलब क्या होता है?
0: धूप दिखा लेता।
1: अच्छा, धूप दिखा लेता। अच्छा,
0: घाम में रख देता, घाम मान लियो हम तो गांव के हैं तो हम गांव की भाषा बोलते हैं।
1: और जैसे कुछ बहन आएंगी जैसे अमिया को अचार डालती है तो वामा तेल खौलाए के डालती है, तो आप किस तरह से डालती है?
0: हम तो देखो बिना खौलाए डालते हैं, खौला के तेल डालते हैं हम तो हमें क्या लगता है वो खौला के तेल जो जल जाता तो चीकट चीकट तो जाता, अपना अपना तरीका है, हमारा तो तरीका दे है, हमारा तो अचार सालों खराब नहीं होता।
1: वैसे भी कहते हैं कि तेल जैसे अपने पूरी बनाता है खौला का तेल खराब हो जाता है अगर दूसरे
0: तेल खराब हो जाता है अगर दोबारा वो तेल को इस्तेमाल करो तो,
1: हाँ, तो
0: वो
1: हाँ।
0: तेल में जो है सही ना रहता है,
1: सही ना रहता
0: कुछ लोग तो कहते जहर बन जाता है बाकू।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो हम नहीं डालते, हम तो ऐसे करके डालते कच्चे तेल,
1: कच्चे ही तेल डालना सही है
0: क्योंकि वो सही है हमारा।
1: आप अमचूर भी डाल लेती हैं का?
0: अमचूर भी डाल लेते हैं।
1: अच्छा, अमचूर कैसे बढ़ता?
0: अमचूर तो हम ऐसे डालते हैं देखो, कोई और काऊ की तो हमें पता ना कोई कैसे डालता है, हम तो भैया अपनी भाषा में डालते हैं, ऐसे इस समय आम खूब चल रहे हैं।
1: हाँ हाँ
0: छोट छोट, और जैसे आंधी आती है तो हम बाको ले ले और छील ले, तो बाकी बना ली खटाई हमने।
1: अच्छा
0: खूब सुखा लेते हैं। और बहुत अमिया जैसे है, मतलब जब खटाई बनाते हैं तो हम जो है नमक के पानी में जरूर डालते हैं, नमक के पानी में इसलिए डालते हैं कि सुड़ी ना होता।
1: अच्छा
0: जो कीड़ा होता है तो वो नमक के पानी से कीड़ा ना होता।
1: हाँ जब आप सही कह रही हैं, क्योंकि वहाँ में सुड़ी पड़ जाती है।
0: हाँ बहुत जल्दी कीड़ा पड़ता है, तो हम इसलिए नमक के पानी में अमिया छीली और काटी अमिया, बाकी कल बनाए तो नमक के पानी में जो है थोड़ी देर रख दी अमिया, फिर सूखन डालती।
1: अच्छा
0: फिर बस सूख जाता भरपूर मात्रा में हमारी, तो बामा जो है हम जैसे छिलका डालते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ छिलका डालते हैं, तो छिलका को हम जो है बामा गरम करते हैं थोड़े, पहले तो हम बाको तड़का लगा लेते हैं जीरे को, जैसे
1: हाँ
0: जीरे को तड़का लगा लेते हैं तेल उल में, फिर हाँ, बामा हम थोड़ा छिलका डालते हैं।
1: अच्छा
0: छिलका डालते हैं और मिठाई डालते हैं।
1: छिड़का जैसे लगभग कितना डालती है?
0: छिलका लगभग ऐसे डालते हैं, जैसे अगर हमारी खटाई 1 किलो है
1: हाँ हाँ
0: तो बामा हम मतलब 250 ग्राम छिड़का डाल लो, या
1: अच्छा
0: कम डाल लो थोड़ो, की बस छिड़का से जो है खटाई फूल जाता है।
1: अच्छा
0: जब हम कढ़ाई में पहले बाको छौंका लगाते हैं, अपने मतलब बाहू में गरम मसाला डाल देते हैं और सौंफ धनिया जो भी डालो वो भी डाल लो वहां में, पर वहां जैसे जो मसाले डालने हैं तुम वे डाल ले, वहां में छौंक दे और वहां में डाल दो छिड़का।
1: अच्छा
0: छिड़का के बाद में हमने जो है वहां में डाल दी मिठाई,
1: कढ़ाई
0: मिठाई
1: में?
0: डाल दी हाँ कढ़ाई में, तई हमने मिठाई डाल दी, छिड़का डाल दो, तई हमने खटाई अपनी डाल दी। हाँ गरम कर लेते हैं ज्यादा, मतलब ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, जैसे ज्यादा चढ़े ना, अगर चढ़ जाएगी चेपा बना लेकर तार के छिलक रहे वो ना बने वो।
1: अच्छा
0: तो बाको हम ऐसे रखते हैं कि गीलो गीलो रहा वो, तो वो जितना छिलका होता हमारी जो है खटाई पी लेते, वो छिड़का जो है फुला देते हैं
1: अमिया का। हाँ खटाई
0: हाँ फुला देते, तो अमिया जो है बस सही जाता है और मिठाई से मीठ हो जाता है।
1: मिठाई को जूस पी लेते
0: हाँ वो पी लेते तो खट्टो मीठो दोनों बन जाता है, तो हम बार बोलते हैं अमचूर।
1: अमचूर कितने दिन तक चल जाता है?
0: वो सालों साल चल जाता है।
1: अच्छा तो पूरे चौमासे में अचार और अमचूर बनाकर रख लेते हो, तो जैसे सब्जी की कोई चिंता ना आए। ममता जी आपने हमें अच्छी अच्छी जानकारी दी और नए नए अचार डालने की विधि बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों अभी आपने जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, हमें उम्मीद है आप इस कार्यक्रम को सुनकर कुछ सीख लेंगी। बहनों अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, उससे पहले लिख लें हमारे कार्यक्रम को पतो। पतो है आंचल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 2449-01। अब अपनी बहन मीना को दो अनुमति। राम राम।

हमारी ग्रामीण बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम आंचल। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश

0: ने वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है।

0: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:30 में हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत। आज सुनिए 60 के दशक के कुछ खूबसूरत नगमे। पहला ये नगमा फिल्म कश्मीर की कली से, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

फिल्म कश्मीर की कली में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी का गाया ये खूबसूरत गीत। और अब सुनिए फिल्म मुगले आजम में लता मंगेशकर, शमशाद बेगम।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के बाद सुनिए। लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म गाइड से।

मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना वक्त फिल्म का ये गीत, और अब सुनिए फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार को।

इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर विविध भारती के प्रसारण केवल FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें आज की ये सभा संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। दूसरी सभा के साथ इन्हीं मीटर्स पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ಸಹೇಲಿ
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सखी सहेली में। आप सभी को विधि जैन
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: आरती जी स्वागत है आप सभी का।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत आपका भी है और आज हम दोनों पहली बार शायद
1: साथ में सखी सहेली कर रहे हैं। जी बिल्कुल।
2: और हम सभी अपने श्रोताओं को सभी सखियों को सभी सखाओं को नमस्कार कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आरती जी एक मैंने जो अभी एक धुन लगाई थी आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, हाँ। ये धुन कहती है कि बस दौड़ते रहना है खेलते रहना है उड़ते रहना है और फुटबॉल को उड़ाते रहना है।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल रुकना नहीं है बस खेलते जाना है
1: जी।
2: खेलना जो है वो फिटनेस के लिए भी जरूरी होता है और हमारी मानसिक जो विकास है जो हमारे जो शांति है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और विधि इसी के साथ हम बता देते हैं आज हम क्या क्या लेके आए हैं सेगमेंट्स।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले
1: बात करेंगे कथा सुधा की जो कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी जिसके बारे में आप थोड़ी देर बाद बताने वाली हैं।
2: हाँ।
1: तो उसके बारे में हम सुनेंगे और उसके साथ ही आज हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में।
2: जी हाँ फुटबॉल दिवस के बारे में बताएंगे और साथ ही हम बात करेंगे जब परिवार के साथ हम सफर पर निकलते हैं तो हमें क्या क्या तैयारी करके निकलना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे।
1: हाँ सफर पर तैयारी करके निकले वरना सफर करना पड़ सकता है।
2: हाँ बिल्कुल वो आपको अंग्रेजी वाला सफर करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले सफर से बचना है तो सफर की तैयारी करके अवश्य निकले। और उसके साथ ही हम आज वो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने वाले हैं।
2: बिल्कुल आज हम बिहार के व्यंजन की बात करेंगे जो है खाजा और रसिया।
1: जी तो खाजा तो हमने खाया है रसिया हाँ। हमने नहीं खाया है तो
2: रसिया हम सुनते भी हैं
1: जी,
2: जो एक बिल्कुल गीत भी होते हैं लेकिन ये खाने वाला रसिया है।
1: सुनने वाला रसिया कान में बड़ा मीठा होता है तो शायद खाने वाला भी बड़ा
2: मीठा होता है।
1: तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यार से आई हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप ही मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे जो श्रोता हैं उसको हम उनको बता देते हैं कि हम आज उनके लिए जो लेके आए हैं वो है प्रायश्चित। कथा सुधा के अंतर्गत कहानी जो लाए हैं वो है प्रायश्चित जो कि भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। तो क्यों ना पहले सुन लेते हैं।
1: चलिए चलते हैं उस कथा की तरफ जो है प्रायश्चित।
3: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज कथा सुधा में सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित।

0: अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी नवविवाहिता। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी बालिका, कभी भंडार घर खुला हुआ है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को आटा देने गई और उधर दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वो घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई, अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही थी, पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने के लिए चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची, सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, रात भर उसे नींद ना आई, किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चले गई, हाथ में पाटा लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधी की भांति बातें सुन रही है।
1: हैं? ये क्या हुआ? हाय राम दैया रे दैया बहू जी, हमका तो लागत है बिल्ली मर गई। लागत का है सच्चो मर गई। आए हत्या का पाप बहू पे चढ़ गया माँ जी।
2: माँ जी ये तो गजब हुई गवा, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या तो बराबर है ना। हम तो रसोई ना बनावेंगे अब, बल्कि हम तो रसोई में पैरों न धरेंगे जब तक बहू के सिर हत्या का पाप रहेगा। हाँ
3: कहती तो ठीक हो तुम सब, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। अरे बहू बहू ये क्या कर डाला है?

0: हुई अम्मा जी।
1: हाँ
0: कहो तो पंडित जी को बुला लें हम।
1: हाँ ठीक कहती हो। अरे हाँ जाओ जल्दी से जाओ जाओ पंडित जी को बुला लो।
2: बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े।
3: सुनती हो भगवान? भाई भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।
2: पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब बंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिश्रानी, किस्नु की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी।
4: अरे पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है बताइए जरा।
3: हाँ हाँ पत्रा देखकर अभी बताता हूँ। ये हाँ, अब ऐसा है, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तभी नरक का पता लग सकता है। क्यों मिश्रानी, ये हुआ कब?
5: अरे यही कोई 7 बज रहा होगा सवेरे का।
3: 7 बजे सुबह।
2: पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सुकड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
3: हरे कृष्ण, बहुत बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ है रामू की मां। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हरे कृष्ण।
4: तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बताइए। हमारा दिल तो बैठा जा रहा है अब शगुन की आशंका से।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
3: रामू की मां, चिंता की कौन सी बात है। अब हम पुरोहित कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण।
4: पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था ना। अब आगे बताइए कि क्या किया जाए।
3: किया जाए हरे कृष्ण। अब देखिए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए बस। हरे कृष्ण।
0: हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए।
4: हाँ तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए।
2: पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा।
3: बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है। हरे कृष्ण। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही किसी में। हरे कृष्ण। रामू की मां, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। हरे कृष्ण।

0: हरे कृष्ण।
1: अरे बाप रे बाप, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा।
0: रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली! अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, बड़ा पाप, समझ रही हैं? इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
2: मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा,
0: हरे कृष्ण, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ? मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। हरे कृष्ण।
1: और पंडित जी, पूजा का सामान कितना लगेगा?
0: अरे कम से कम में हम पूजा करा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा।
1: अरे बाप रे बाप, इतना सामान! अरे पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। हैं?
0: फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और फिर जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।
3: और नहीं तो का, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं।
2: पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। रामू की मां ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा,
0: रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह ना मोड़ो। हरे कृष्ण।
1: सही कहा पंडित जी, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा।
0: रामू की मां, ये तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला।
1: अरे पंडित जी, अरे आपके पैर पकड़ती हूं भाई, अब जमकर आसन जमाइए। बताइए और क्या हो, क्या करना है?
0: 21 दिन के पाठ के 21 रुपए।
1: अच्छा।
0: और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।
1: ऐसा?
0: हरे कृष्ण।
4: हाँ, ये तो पंडित जी ठीक है कहते हैं। पंडित जी के तोन तो देखो।
0: अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो पूजा के लिए।
2: पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे।
5: अरे अम्मा जी।
1: हाँ।
5: ये तो
1: क्या हुआ, बोलो तो।
4: अरे हुआ का,
5: अरे
4: बताओ
5: का बताए अम्मा जी, वो बिल्ली जिंदा थी, उठ के भाग गई।
0: क्या? बिल्ली भाग गई? हरे कृष्ण।

0: अभी आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, पंडित जी जयंत पात्रिकर, रामू की माँ रेणु चतुर्वेदी, मेहरी आकांक्षा सिंह, मिश्रानी ममता सिंह, छन्नू की दादी पूनम त्रिपाठी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: आरती जी, 11 तोला सोने की मिली
2: और वो भी भाग गई।
1: पंडित जी का बड़ा नुकसान हो गया। और जब पंडित जी का नुकसान हो गया है तो पंडित जी को हम ये गाना सुना देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और

0: तो आरती स्वागत है फिर से सखी सहेली में। और पंडित जी रूठ गए थे तो हमने उनको गाना सुना दिया, देखो रूठा ना करो, अब तक मान गए होंगे। अब बिल्ली तो नहीं मिली 11 तोला की, क्या कर सकते हैं। पर हाँ जी,
1: अब है फुटबॉल दिवस के बारे में कुछ बात करनी तो बनती है, क्योंकि आज है फुटबॉल दिवस। और फुटबॉल जो है विधि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, और इस खेल की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। और इसमें हम बता देते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं।
0: जी।
1: तो इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं, जो एक गेंद को हाथ के उपयोग के बिना शरीर के अन्य हिस्सों से, जैसे कि आप सिर से मार सकते हैं, पैर से मार सकते हैं, छाती से मार सकते हैं, बस आप हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इसके रोचक मुकाबले होते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत रोचक मुकाबले होते हैं। और खेलों के लिए किसी ने कहा भी है कि खेलों की दुनिया बड़ी निराली होती है, हार में भी यहाँ जीत की लाली होती है, जो
1: जी
0: मैदान में डटकर मुकाबला करता है असल में वही खिलाड़ी सबसे भारी होता है।
1: बहुत बढ़िया,
0: और
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा।
0: जो भारी खिलाड़ी होता है वो हाथों का उपयोग नहीं करता,
1: बिल्कुल
0: शरीर के बाकी अंगों का प्रयोग कर रहा है। और फुटबॉल खेलने से शारीरिक फिटनेस भी बढ़ती है, संपूर्ण शारीरिक गतिविधि है जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करता है। तो अगर हम विश्व फुटबॉल दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 25 मई 1924 को पेरिस में, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था।
1: बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट ने विश्व जो वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की लोकप्रियता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसके उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थिति को चुना गया है। और फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था है फीफा, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से विश्व फुटबॉल सप्ताह 21 से 25 मई तक मनाते हैं, जिसका विषय रहता है सक्रिय रहिए। इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करना होता है।
0: बिल्कुल, ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहते हैं और बढ़िया बढ़िया खिलाते रहते हैं। आरती देखिए, खेलना जीवन में बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और फुटबॉल जो खेल है वो जब हम स्वयं भी खेलते हैं या हमारे सामने बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम खुद देखते हैं कि उनका पूरा शरीर उसमें लगा हुआ होता है, वो पूरी मांसपेशियां उसमें काम कर रही होती हैं। और कई बार तो ये देखा गया है कि बच्चों की ऊंचाई भी यानी हाइट भी इससे बढ़ती है,
1: और पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ, पूरे बॉडी में मजबूती आती है क्योंकि वो, और दिमाग भी उसे सक्रिय होता है क्योंकि पूरा उनको ध्यान रखना होता है कैसे

0: गोल करना है, कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है बॉल को। तो बहुत ही मजेदार ये खेल भी, देखने वाला भी एकदम देखता रह जाता है ऐसे।
1: हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस विषय पे कह रहे हैं, और जिनमें से एक बात और मुझे, एक कविता और मुझे याद आती है, जब हम बचपन में थे और खेला करते थे
0: अच्छा।
1: तो बारिश की कीचड़ में पूरी तरह से सराबोर होकर चले आते थे
0: इस
1: अपने
0: खेल
1: घर में।
0: की कहिए तो सुंदरता ही यही है कि खूब कीचड़ में, मिट्टी में एकदम सराबोर होकर खेलें इसे।
1: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, फुटबॉल खेलने में बहुत अधिक एनर्जी और स्टैमिना की आवश्यकता होती है, इसे दुनिया के सबसे थका देने वाले और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण खेलों में से एक माना जाता है। एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी एक मैच के दौरान लगभग 1000 से 1500 कैलोरी तक खर्च कर सकता है, मतलब बहुत सारे रसगुल्ले खाए जा सकते हैं इसके
0: बहुत
1: साथ।
0: बहुत आराम से खा सकते हैं, क्योंकि आपको जब सोचें कि मोटापा चढ़ेगा तो वो हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इसमें खेलने
1: इतनी
0: में स्ट्रेंथ।
1: कैलोरीज यहाँ पे
0: बिल्कुल
1: खत्म कर दी जाएंगी। जी
0: जी।
1: बिल्कुल। तो आरती, ऐसे ही इसके साथ में एक कविता और मुझे याद आती है कि खेल सिखाते हैं हौसला और उड़ान, मुश्किल में भी रखना खुद का ध्यान, जीत मिले तो विनम्र रहना, हार मिले तो बन जाना तूफान।
0: वाह, बहुत बढ़िया बात है।
1: ये कविता जब मैं पढ़ रही थी ना, तो इसका अर्थ मुझे समझ में ये आ रहा था कि कभी कभी हम ना जीत पर घमंड करने लगते हैं और हार पर दुख। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा कहा है कि अगर जीत मिले तो विनम्र बनो, सर
0: बिल्कुल,
1: झुकाकर जीत स्वीकार
0: कहते हैं ना,
1: करो और
0: जिस
1: हार
0: पे
1: जाओ।
0: पे ज्यादा फल लगे होते हैं वो झुक जाता
1: हाँ
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: जिस
1: सही
0: पे
1: बात
0: कुछ नहीं
1: है
0: लगा होता वही अकड़ के खड़ा रहता
1: जी।
0: है।
1: बिल्कुल। तो ये जो विश्व फुटबॉल दिवस है, ये बहुत बढ़िया खेल है, और इस खेल को हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने और टिप्पणी लिखी है, वो जरा हम पढ़ते हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस का महत्व और उद्देश्य सांस्कृतिक एकता, फुटबॉल को किसी भाषा या सीमा में की आवश्यकता नहीं होती है, ये दुनिया भर के विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, शांति और कूटनीति को मान्यता देता है, लोगों को एक मंच पर लाता है जिससे कि लोगों में आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है, और साथ ही ये दिवस लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को और लड़कियों को भी जो सशक्त बनाने का काम करता है, एक महत्वपूर्ण साधन होता है ये।
1: बहुत बढ़िया चीज है ना, देखिए बेटियां भी खेलती हैं, बेटे भी खेलते हैं, सब खेलते हैं, और खेलते खेलते अपने आप को एकदम बढ़िया मजबूत बना लेते हैं, और इस मजबूती
0: बिल्कुल।
1: को सच में स्वीकार किया जाना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही फुटबॉल पकड़ा दो और वो खेलना शुरू कर दें।
0: बिल्कुल, वो मोबाइल से दूर रहेंगे, वो पकड़ेंगे भी नहीं मोबाइल अगर आपने एक बार इस खेल में उनको डाल दिया तो।
1: और छोटे छोटे बच्चे अगर फुटबॉल में पैर मारते रहेंगे तो शायद उनके पैरों की ताकत
0: बिल्कुल
1: बढ़ेगी,
0: बढ़ेगी।
1: और उस ताकत के कारण उनके शरीर का पूरा विकास भी होगा, और फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनको कूटनीति भी आने लगेगी कि कहाँ से बॉल निकाल देना है,
0: जी
1: अगले किस दोस्त को
0: हाँ
1: पास करना है, शायद इस सबसे उनकी मित्रता भी
0: बिल्कुल,
1: बढ़ती है।
0: सहयोग की भावना इसी को तो कहते हैं, एक जो जब हम बॉल को पास करते हैं दूसरे तक
1: जी,
0: पहुंचाते हैं उस पर विश्वास रखे कि वो गोल कर देगा।
1: तो शायद यहीं से एक संगठन का विकास भी होता है।
0: बिल्कुल
1: तो जब
0: होता है।
1: संगठन का विकास हो रहा है तो हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद और बात करेंगे और गीत सुनेंगे।
0: जी।

0: हाँ तो विधि, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, एक कमेंट है। तो हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल टीम वर्क का सबसे बेस्ट उदाहरण है, एक फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ देती है। जब मैच चल रहा होता है तो पूरी दुनिया की नजरें और धड़कनें सिर्फ एक ही फुटबॉल पर टिकी हुई होती हैं। ये तो सही बात है। टीवी के सामने सब जमे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबके अपनी अपनी टीम होती है पसंद की, और किसी न किसी टीम के लिए सब दुआ कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जब वो जो खेल रहे होते हैं और वो बादलों की तरह आसमान में कभी उड़ते हैं, कभी नीचे जमीन से निकल जाते हैं, कभी नीचे से निकलते हैं, कभी बीच से निकलते हैं, पता नहीं क्या करके उस खेल को खेलते हैं, लेकिन ये खेल बहुत रोचक है।
0: बहुत, बहुत।
1: और जब उन बादलों के बारे में बात कर रहे हैं जो खेल रहे होते हैं, तो उन सब के लिए ये प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।

0: तो अब बादल दीवाना हो चुका है और दीवाना बादल कह रहा है कि हमको घूमी घूमी जाना है, यानी कहीं
1: घूमने
0: घूमने
1: जाना
0: जाना है।
1: ठीक है। तो परिवार के साथ हम जब सफर पर निकलते हैं तो ये एक बेहद खूबसूरत और खुशनुमा अनुभव होता है, और परिवार के साथ किया गया सफर केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि यादों का खजाना बन जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है तो रिश्तों में एक नई मिठास खुल जाती है।
0: बिल्कुल। और रिश्ते मिठास के साथ में जब साथ में निकलते हैं ना, तो आती रास्ते में वो हंसी मजाक चलती रहती है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ साथ में बैठ के खा रहा है, उतनी सी जगह में बैठ के धीरे धीरे खाना निकाला जा रहा है, भोजन निकाला
1: बिल्कुल।
0: जा रहा है, दिया जा रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पल कितना आनंद होता है ना। और साथ में कुछ समय के लिए ऐसा लगता है सारी चिंताएं कहीं चली गई हैं और हम
1: बिल्कुल।
0: खुशियों के साथ अपना समय जी रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानियां जो बीच में आ रही है ना, अरे पैर मोड़ते नहीं बन रहा, अरे बैठते नहीं बन रहा, अरे थोड़ा सा सरक जाओ, ये परेशानियां कहीं एहसास नहीं होने देती,
1: बिल्कुल,
0: बड़ा अच्छा
1: लगता है कि ये
0: लगता
1: भी वो पल हैं जिन्हें हमें सहेज लेना चाहिए। और जब हम साथ में खा रहे होते हैं ना, तो वो जो स्वाद है ना, वो एक अलग होता है जब हम साथ में बैठ के ट्रेन में या इस तरह से किसी सफर में खा रहे
0: हाँ।
1: होते हैं, जबकि जब हम घर में वही चीज खा रहे होते हैं तो इतना पता नहीं चलता जब अकेले।
0: और आरती एक चीज और अच्छी लगती है कि अगर हम ट्रेन से चल रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ी दूर पे किसी की आलू पुड़ी का डब्बा खुलता है, किसी का अचार खुलता है, सारी
1: हाँ
0: खुशबू
1: बिल्कुल
0: हमारे तक आ जाती
1: जी
0: है।
1: हाँ। और जो लगातार निकलते रहते हैं लोग ना, ये ले लो वो ले लो, तो लगता है अच्छा हम भी ऐसे बोलने लग गए।
0: जी बिल्कुल। और उस सब के साथ बच्चों की जिद करना, उनको डांटना मनाना, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता
1: बहुत
0: है। और
1: अच्छा।
0: इसमें कई बार ऐसा होता है जब हम अकेले ट्रिप पे जा रहे होते हैं तो हमें अपना ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जा रहे
1: जी
0: होते
1: हाँ।
0: हैं, तो उसमें हम पहले से प्लानिंग करते हैं क्या क्या कपड़े जाएंगे, क्या क्या सामान जाएगा, तो वो प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ये बारे में तो चर्चा जरूर बनती है।
1: बिल्कुल, सबके हिसाब से हमें लेना चाहिए। और लेकिन ध्यान रख, जब अगर क्योंकि अगर कोई हमारे साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो हमें उसके हिसाब से सामान लेना होगा, कपड़े उनके हिसाब से, जो जो चीजें उनको जरूरत लगती है, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ उसी हिसाब से लेना होता है। जबकि बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से उनके सामान लेने होते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: जो भी जा रहा है, हर परिवार के हर सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं है, तो उस तरह से सामान लेने होते हैं। साथ ही दवाइयाँ ये जरूर आप पैक करके रखें, कम से कम जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके लिए जो दवाइयाँ रहती हैं वो आप जरूर अपने साथ में लेकर चलें, बहुत
0: लेके
1: जरूरी है।
0: चलने के पहले आरती हमको एक काम करना पड़ता है,
1: क्या
0: वो होता है टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग।
1: सबसे पहला काम।
0: सबसे पहला काम अगर वही सही नहीं किया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप
1: सच
0: जहां
1: में।
0: जा रहे हैं वो सब चीजें अच्छे से पता कर लें। और सामान्य दिया जब हम परिवार के साथ घूमने जाते हैं आरती, तो हम क्या करते हैं कि बहुत दिन पहले ही, जिस दिन 2 महीने पहले अगर टिकट बुक होती है ना, तो 2 महीने पहले ही एक डायरी उठ जाती है, और उस डायरी में जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो 4 पेज बन जाते हैं, और सबके पेज पे सबका लिखना शुरू हो जाता है कि कौन किस रंग की कौन सी शर्ट लेके जाएगा, ये भी लिख दिया जाता है,
1: अच्छा।
0: ताकि आखिरी समय में ऐसा ना हो कि 2 दिन पहले वही शर्ट पहन ली जाए और फिर हम परेशान हो जाएं। तो
1: बिल्कुल।
0: पहले से ही ये लिख लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है श्रेणी, क्योंकि और एक और फायदा इसका क्या होता है, जब हम
1: हाँ।
0: सामान्य लिख के ले जाते हैं और जब लौट के आते हैं तो उसमें चेक कर सकते हैं क्या कौन क्या छोड़ के आया है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी चीज बताई है, बहुत अच्छी चीज है ये, ऐसा करना भी चाहिए।
0: जी
1: और हम इसी के साथ में एक कमेंट ले लेते हैं अपने श्रोता का, जो
0: जी
1: कहते हैं कि सफर पे जाने से पहले सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि कौन सदस्य कौन सी बैग उठाएगा, जिसपे झगड़े
0: बिल्कुल
1: होते कि हमें नहीं पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और पैसे और टिकट्स किसके पास रहेंगे ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के कीमती गहने नहीं पहनने चाहिए, ये तो
0: हाँ। और
1: थोड़ा सा
0: अगर
1: ध्यान रखना
0: पहन भी
1: चाहिए।
0: रहे हैं तो आप उनको बहुत संभाल के रखिए,
1: जी।
0: यानी आप उनको बाद में संभाल के रख सकें, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जब परिवार के लिए निकल रहे हैं, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, परिवार
1: हाँ।
0: के साथ सफर पर निकलना ना केवल एक बेहतरीन ब्रेक है बल्कि यह तो आपसी रिश्तों को मजबूत करना और नई यादें संजोने का एक बड़ा शानदार सा तरीका है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपने कहा बड़े बुजुर्ग अगर साथ में ले जा रहे
1: हाँ।
0: हैं तो उनका जो विशेष भोजन होता है, और अगर बच्चे साथ में ले जा रहे हैं तो उनके विशेष भोजन की, हम तो कहते हैं अगर 8 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं तो 12 दिन की व्यवस्था करके चलिए,
1: बिल्कुल, ये सही कहा।
0: जाने कब कहाँ कौन सी घड़ी में क्या आवश्यक पड़ जाए, और आपके साथ भोजन और जल यानी पानी, ये 2 चीजें
1: जरूर।
0: होना चाहिए।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ सफर में निकलते हैं तो प्री प्लान करते हुए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी आराम का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में खान पान में भी ध्यान रखना जरूरी है। पूरे सदस्यों के अलावा मेरे जैसे, जो वो अपना बता रहे हैं कि मेरे जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना चाहिए।
0: बिल्कुल जी
1: सफर से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड और टिकट की हार्ड कॉपी के साथ डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखिए। बाकी की सारी जानकारी तो आपसे मिलेगी, बोल रहे हैं जैसे कि इन्होंने बाकी सारी की जानकारी दे ही दी है कि बहुत जरूरी है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रखिए, उन्हें चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो।
0: जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं परिवार के साथ

0: सफर पर निकलते समय सुरक्षा, आराम, मनोरंजन का विशेष ध्यान रखें। यात्रा से पहले कंफर्म टिकट और होटल बुकिंग, आपातकालीन दवाओं, फर्स्ट एड किट, पर्याप्त पानी, घर के बने स्नैक्स, इन्होंने बिल्कुल स्थायी रूप से लिखा है, घर का बना आहार जो है वो रखें, तथा सभी सदस्यों के आईडी कार्ड साथ रखना सुनिश्चित करें। परिवार के साथ सुरक्षित आनंददायक यात्रा के लिए प्रमुख बातों की सावधानी रखें। यात्रा के दौरान होने वाली आम समस्याएं जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, पेट खराब, बुखार की दवा, ओआरएस की दवा, मेडिकेटेड बैंडेज, दर्द निवारक पेन बाम जरूर रखनी चाहिए। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ आरती, कि जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने जा रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के कि पहाड़ी क्षेत्रों पर सामान्यतया गाड़ियां जब घूम घूम के जाती हैं तो मतली आती है, समस्या होती है, तो डॉक्टर से पूछ के उसके लिए भी कोई निदान आप अवश्य रख लें।
1: बिल्कुल,
0: और चॉकलेट टॉफी अवश्य रखें कि वो आप मुंह में डालें तो उससे आपको मतली या कई समस्याएं नहीं होंगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाहे हम तीर्थ स्थान पर दर्शन के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, परिवार संग सभी सदस्य साथ हों तो वो सफर सुरीला हो जाता है, और अगर सफर ट्रेन से हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इसी महीने मैं स्वयं सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी और बच्चे अजमेर से द्वारकाधीश जी और द्वारका, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ जी, डकौर, मतलब इन्होंने जहां जहां लिखा है तो ये सब दर्शनों के लिए गए, तो सब साथ में गए थे।
0: बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिख रहे थे कि हम अभी सब परिवार महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, बस ढेर सारा नाश्ता, खाने का सामान, बड़ी कैन, पानी की बड़ी कैन, आवश्यक वस्तुएं, आधार कार्ड, लाइसेंस, गाड़ी के कागजात, ये सब जरूरी सामान रखे थे उन्होंने। बच्चे बड़ों के कपड़े रखे थे आवश्यकता अनुसार। जहां जा रहे थे वहां की सारी जानकारी पहले निकाल ली थी ताकि परेशानी ना हो।
1: बहुत अच्छा। अगर सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो आप जहां अगर आप जा रहे हैं तो पहले से आप प्लान कर लें, और उसके बाद अगर आप ये चीज कर सके तो पहले से ही जहां पे आपको रहना है उस जगह को आप बुक कर लीजिए, और साथ ही एक वाहन को भी, अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे हैं तो साथ तो वहां पे आप किसी वाहन को भी चाहे रेंट पे ले सकते हैं किराए पे, उसको भी बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ये सहूलियां रहेंगी ना तो आप बस ट्रेन से उतरे या जहां से भी आप जिससे भी जा रहे हैं तो आप फटाफट उस जगह पे जा सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। बिल्कुल आराम कर सकते हैं जाके, और साथ ही फ्रेश होकर फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास वाहन उपलब्ध रहेगा पहले से ही। तो बच्चे अगर साथ में, परिवार जा रहा है साथ में, तो ये बहुत सहूलियत करनी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल सही आरती। और मैं इसमें दो चीजें और जोड़ना चाहूंगी। पहली चीज तो जहां आप जा रहे हैं वहां का मौसम और वहां के भोजन, इनका आनंद जरूर लीजिए। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए और उसके अनुरूप ही अपना सामान रखिए। अब हम देश की यात्रा के साथ अगर विदेश की यात्रा की भी बात करें तो विदेश की यात्रा में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, अति आवश्यक हो जाती है, आप सभी के पासपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: उन पासपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर इतना संभाल कर रखें कि कोई चाहकर भी उन्हें ना चुरा पाए, क्योंकि पासपोर्ट ही वहां पर रहना और वहां से वापस आने का सबसे बड़ा साधन आपका होता है। तो विदेश यात्रा पर जाएं तो बाकी चीजों का ध्यान वैसे ही रखें जैसा देश में घूमने के लिए जा रहे हैं, पर पासपोर्ट के लिए विशेष कोई व्यवस्था करके, अपने कपड़ों के अंदर कोई चैन लगाकर बनाकर या किसी ऐसी व्यवस्था के तहत रखें। सामान्यतया जब हम घूमने जाते हैं तो हम पासपोर्ट को अपने कपड़ों में किसी एक चैन का थैला बनवा के अंदर की तरफ ही रखते हैं ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और वो सुरक्षित रहे।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो विधि एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल। और जब घूमने फिरने की बात चल रही है तो हम आपको लेके चलते हैं।

0: तो आरती, कैसे गगन के तले अगर जा रहे हो तो सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे मेरे दादाजी की वो एक बनियान याद आती है जो मेरे पापा के पास भी एक दो थी, मेरे ससुर जी भी वो पहना करते थे। उसमें अंदर ही एक जेब होता था और अच्छा। जब हम कहीं जाते थे तो वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देते थे। यहाँ तक मैं ससुर जी के साथ जब जाती थी तो वो भी मुझे थोड़ा सा पैसा दे देते थे, ये अपने पर्स में रख लो, बाकी सारा पैसा वो उसमें अंदर रख लेते थे। और समय समय पे जब हम मांगते थे तो धीरे से कहीं किसी बाथरूम में जाते थे और निकाल के ले आते थे। तो मेरे सोने के गहने या कुछ हमने पहना है तो वो सब पापा के उसी जेब में, उसी खीसे में बोलते थे, रख जाता था। तो ये एक व्यवस्था की जा सकती है कि परिवार का एक व्यक्ति, पहले के लोग बहुत समझदार होते थे और वो समझदारी अगर हम अपना लें तो हमारी कोई चीज चोरी हो ही नहीं सकती।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि परिवार के साथ यात्रा में मौज मस्ती के अलावा निश्चिंतता भी बढ़ जाती है। पूरे परिवार के साथ घूमने फिरने में जो मजा और निश्चिंतता होती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। परिवार का साथ हो तो खर्चे में भी राहत मिल जाती है। वहीं मन में ये भी भाव होता है कि वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान अगर किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्च आता है तो एक साथ मिलकर संभाल लेंगे। और इसके अलावा परिवार के साथ जीवन भर की यादें भी बस जाती हैं मन में।
0: कुछ चीजें और मैं सतर्कता की बोल रही हूँ, ये तो सतर्क सकारात्मक बात हमारे श्रोता कह रहे हैं। अनजान लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहना, बच्चों को अकेले कहीं नहीं जाने देना और सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। और कहीं कई जगहों पर ऐसा होता है, पहाड़ी होती है या नदी होती है, तो उन जगहों पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आपको उस स्थान के बारे में नहीं पता है। तो विशेष ख्याल रखें। और अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो वहां के जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। रात्रि में यात्रा करने से बचें और रात्रि में सुनसान स्थानों से भी आप बहुत बचें। अगर ऐसी नई जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी से सफर करो, सही योजना से,
1: ताकि आपका सफर अच्छा बना रहे। आप एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब परिवार के साथ से सफर पर निकलें तो दिल में ढेर सारी खुशियां और बैग में सुरक्षा की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और रास्ते में अंताक्षरी, घर का बना स्वाद और अपनों का साथ हर सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता है।
0: आपने स्वाद की बात की ना, तो मुझे स्वाद से खाजा याद आ गया। मुझे तो मेरे श्रोताओं को खाजा के बारे में बताने का मन कर रहा है क्योंकि ये मेरा भी पसंदीदा रहा है। ये जो खाजा है ना, ये मुझे भी बड़ा पसंद है और इस खाजा को मैं दही के साथ खाती हूँ। अच्छा। बड़ा आनंद आता है,
1: सच में अच्छा लगता है क्योंकि मीठा है ना, और मीठा के साथ किसी जब दही मिल जाता है ना तो बहुत बहुत
0: बहुत आनंद आता है। और ये जो खाजा है ना, इसे बनाना बड़ा आसान है। मैदा, चीनी और घी, और जहाँ शुद्ध घी डल जाता है वही मजा अलग ही आ जाता है। तो जब अपन हम जब खाजा बना रहे होते हैं तो परतदार और कुरकुरी मिठाई जो खाजा है वो बनती है और इसे इसे तलना होता है। तो घी, जब जब मैदा होती है या आटा होता है जिसमें आप बना रहे हैं, उसमें घी डाल के उसे मोयन डालना बोलते हैं। तो आप मोयन डालते हैं और हम लोग कहते थे मम्मी मौन हो गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मोयन डालते समय मोयन डाला जाता है और फिर परतों में बेल कर मोड़ा जाता है और इसके बाद हल्की विशेष तरीके से उसे

0: तला जाता है, और जब वो तल जाता है तो चाशनी में डुबो दिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: और अगर आप इसे चाशनी में ना डुबोएं तो भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है, और चाशनी में डुबो लें तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये सिलाऊ नालंदा बिहार का ये पसंदीदा भोग है, और इसे भगवान को भोग या प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। और मीठा और नमकीन दोनों तरह का होता है, जो मैंने कहा मीठा वाला भी दही के साथ अच्छा लगता है, और नमकीन वाला तो यम यम दही के साथ बहुत आनंद आता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हम आपको बता दें, एक हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने भेजा है रसिया जो होता है ना, उसकी रेसिपी भेजी है। तो वो बताते हैं कि गुड़ का पानी तैयार करें, इसके लिए आपको एक बर्तन में 2 कप पानी और गुड़ डालकर उबालना है, और जब तक कि गुड़ पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए इसे छानकर अलग रख लीजिए। उसके बाद जब गुड़ घुल जाता है, उसके बाद एक पैन में प्रेशर कुकर में भीगे हुए चावल और गुड़ का पानी डालिए और इसे मध्यम आंच पर पकाइए, तब तक कि जब तक कि चावल एकदम नरम नहीं हो जाता है और पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। इलायची और मेवे इसमें मिला सकते हैं, और जब चावल पक जाए तब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हैं और इलायची जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स डालिए और इलायची का पाउडर डालिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिला लीजिए। और इसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद इसमें ठंडा या फिर सामान्य तापमान वाला दूध मिलाइए और अच्छी तरीके से इसको चला लीजिए। और अगर इसमें क्या कहते हैं स्वादिष्ट रसिया आपका तैयार है रसिया, और इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इसे ठंडा करके भी परोस सकते हैं।
0: हाँ, ये फ्रिज में रख के निकालने के बाद इस गर्मी में कितना सही लगेगा,
1: बहुत अच्छा
0: के
1: लगेगा।
0: इतना आइसक्रीम जैसा गले में, सच में। सुदिंग
1: बाहर की आइसक्रीम जो आप खाते ना बिल्कुल भूल जाएंगे इसको खाने के बाद।
0: बिल्कुल। और वैसे ये जो स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान है ये हमारे स्वास्थ्य को देखकर बनाए जाते हैं राजस्थान के हिसाब से, तो हमने स्वाद वाले पकवानों की तो बात कर ली है, और अब हम क्या एक गीत सुनवा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं गीत
0: जी।

0: तो आरती,
1: अब हमारे श्रोताओं ने और भी कुछ बोला है। हाँ। कहा है जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि बच्चों के गले में आपका पूरा पता और मोबाइल नंबर और आई कार्ड आप उसमें लेके किसी कार्ड में ऐसा बना के उनके गले में डाल दीजिए।
2: हाँ।
1: बिल्कुल, जिससे कि अगर उनको कोई परेशानी या कहीं इधर वो खो जाते हैं या कोई इधर उधर हो जाते हैं वो, तो आपको सहायता मिल जाएगी, जो भी उनको लेगा वो आप तक पहुंचा देगा।
2: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता लिखती है आरती और निधि, तो मैंने बताना चाहती हूँ मेरा नाम विधि है।
1: विधि
2: विक्ट्री विधि। सो वो कहती हैं कि क्या क्यों कहूँ, मुझे भी बाहर जाना है अकेले और मैं भी तुरंत पैन कार्ड इत्यादि पर्स में रख ली हूँ, हंस रही हूँ चूंकि तैयारी हो चुकी है, एक दिन हाथ में है फिर भी। ये तो बहुत अच्छी बात
1: बहुत,
2: है,
1: बहुत
2: ऐसे ही तैयारी करके चलना चाहिए और ऐसे ही आराम से घूमिए, बढ़िया बढ़िया खाइए और बढ़िया एंजॉय कीजिए, जिंदगी खुश रहने के लिए है। और सखी सहेली सुनते रहिए
1: सुनते रहिए।
2: तो आरती, आज की सखी सहेली में बस इतना ही, समय जितना मिला उतने में हमने अच्छी बातें की, लोगों से मिलना हुआ, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी से। और आज के कार्यक्रम में जो विषय है वो है थायराइड, होम्योपैथी में इसका उपचार। तो डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर लीजा बनर्जी। धन्यवाद विविध भारती को कि मुझे आमंत्रित किया गया।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे विविध भारती का जिक्र आपने शुरू में ही किया, तो कितना पुराना नाता है डॉक्टर साहब विविध भारती से आपका?
1: सुर पहचानती हूँ तब से विविध भारती पहचानती हूँ, ये बोलना भी गलत नहीं होगा। मेरे घर पे आज भी इसका चलन है, हम बजाते हैं, सुनते हैं और ये रहेगा।
0: जी, मनोरंजन का एक बहुत ही बेहतरीन और नंबर वन माध्यम है आज के दौर में। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का जो विषय प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम जिक्र कर रहे थे थायराइड और होम्योपैथी में इसका उपचार, तो ये विषय रहेगा। दरअसल ये थायराइड जो बीमारी है इसके बारे में कई भ्रामक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हर कोई दूसरा इंसान जब कुछ विपरीत अपने शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देता है, कहीं थायराइड तो नहीं हो गया, इस वजह से कमजोर तो नहीं हो गए, इस वजह से मोटे तो नहीं हो रहे हो। तो ये थायराइड है क्या, इसको बड़े आसान से शब्दों में आप बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: थायराइड एक्चुअली एक ग्रंथ ही है, मतलब ग्लैंड्स जो कि गले के सामने के भाग में पाई जाती है, स्थित है, और इसमें से सिक्रीट होती है थायरोक्सिन T3 एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T4।
0: जी,
1: T3 T4 ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण है विकास के लिए एंड मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया।
0: जी,
1: इसका मेन फंक्शन या इसका मेन थायराइड की क्रिया ही होती है बच्चों में एवं बड़ों में विकास की, दिमागी शारीरिक दोनों विकास। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन क्रिया, जो आप रोजाना खाते हैं ये सारी चीजें पाचन होनी चाहिए। जब तक पाचन नहीं होगी आपके शरीर को, उनके कोशिकाओं को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेंगी नहीं। इसमें थायराइड का एक बड़ा रोल होता है। और ये होता कैसे है, दिमाग में एंटीरियर पिट्यूटरी करके एक
0: ग्रंथी
1: होती है, वहां से TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया जाता है। वो ब्रेन को बोलता है कि T3 T4 कम हो गए हैं भाई, इनको शुरू करो,
0: आदेश देता है।
1: हाँ, तो जैसे ही T3 T4 शुरू होते हैं ये ब्लड में जाते हैं, ब्लड से अपना जो क्रियाएं होती है वो करते हैं। एक लेवल पे आने के बाद वापस हाइपोथैलेमस कहता है कि बस हो गया, आप TSH तुम बंद हो जाओ ताकि T3 T4 अपने लेवल पे काम कर सके।
0: जी जी।
1: जब ये बैलेंस खराब हो जाता है तब होता है थायराइड। पढ़ना सुनना या गूगल सर्च, सोशल मीडिया काफी आ गए हैं, बेटर है कि हम इनसे जितना हो सके दूर रहे, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है फियर्स कम फ्रॉम ईयर्स, मतलब डर सुनने के माध्यम से आता है।
0: जी,
1: तो आप जितना गलत सुनोगे सही सुनोगे आपको स्वयं को नहीं पता है। तो जो एक्चुअली ये सारी चीजों में विशेषज्ञ है उनके पास जाइए।
0: अच्छा, ये कितना सच है डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि थायराइड वाकई में हो जाता है? ऐसे चिकित्सक तो आप बताएंगी ही, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा होता है और उसका मोटापा दूर ही नहीं होता, या कोई बहुत दुबला है और दुबला होता रहता है, तो वाकई में थायराइड ग्रंथि का कोई कमाल होता है इसमें?
1: नहीं नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपका डाइट कैसा है, मतलब आप कितना खान पीने में ध्यान दे रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं सोचिए पूरे दिन भर एक जगह पे बैठी हूँ और मैं खा ही रही हूँ, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान मोटा ही होगा, इसमें थायराइड कुछ नहीं कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा नहीं है, डायबिटीज में भी इंसान पतला होता रहता है, होता रहता है। तो वही मैंने बोला ना कि सुनने पे ये मत जाइए, क्योंकि अभी डॉक्टर्स को पता है कि ये डायबिटीज वाला है इसलिए पतला हो रहा है, या ये थायराइड वाला है इसलिए पतला।
0: तो देखिए,

0: कुल मिला के इस प्रश्न के उत्तर में आपने ये कहा है कि चिकित्सक से मिलिए और कंफर्म कीजिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि खुद ही तय ना कर लें किसी के कहने सुनने पर। और यहाँ पर ये तय करना होगा कि प्रोग्राम में बातचीत तो हमारी जारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ वक्त है कि एक गाना सुन लिया जाए।
1: एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, छू कर मेरे मन को किया तूने, इससे अगर शुरुआत की जाए।
0: याराना फिल्म का गाना है,
1: याराना
0: किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं।

0: गीत तो वाकई मन को छू गया है, लेकिन अगला प्रश्न हमारे दिमाग में उभरता है कि थायराइड जो है क्या कार्य करता है?
1: आज के वातावरण में इतने दौड़ भाग जिंदगी में हम क्या करते हैं? खाने पीने को साइड में रखते हैं, नेचुरल कोई भी चीजों को साइड में रखते हैं। हमको कैंड फूड चाहिए, हमको जंक फूड चाहिए, हमको फटाफट फास्ट फूड चाहिए, मगर हमें गरम घर का खाना ये हम जल्दी नहीं लेते, हम अवॉइड कर जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, शरीर को जो मिलना चाहिए, कोशिकाओं को जो मिलना चाहिए वो मिलते नहीं है। इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए अमुक विटामिन, तमुक कैल्शियम, तमुक आयरन, अमुक ये तमुक वो, ये करके करके हम जो खाते, हमको लगता है कि हाँ अरे हमने खा लिया ना, मैंने रोज कैल्शियम के ये खाया, मैंने रोज वो किया है
0: सप्लीमेंट।
1: सप्लीमेंट्स, मगर ये सप्लीमेंट्स एक्चुअली बॉडी को मिल रहा है? मुझे नहीं लगता, और ये होता भी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका शरीर एक ऐसे सिस्टम से बंधा हुआ है जहां पे आप जो नेचुरली चीजें खाते हो वो एब्जॉर्ब होती है। जो सप्लीमेंट्स, हाँ सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं जरूरी होते हैं, मगर हम आधे खाने को, आधे बैलेंस डाइट को सप्लीमेंट्स के साथ ऊपर नहीं डाल सकते, ये हम करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स जब हजम नहीं होती है तब शुरू होता है 10 प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे एक बार कोई चीज एक डिसऑर्डर में चली गई, ऑर्डर से बाहर चली गई, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जैसे ही सिस्टम बिगड़ता है, ब्रेन अपना सिस्टम उसको ठीक करने के में लग जाता है, तब या तो TSH बढ़ जाता है, या तो T3 बढ़ जाता है, या तो T4 बढ़ जाता है, तो उसमें आप हमारा जो विकास है दिमागी या शारीरिक विकास वो साइड में रह जाता है, क्योंकि बॉडी ज्यादा ध्यान दे रहा है कि इसमें गड़बड़ ना हो।
0: तो देखिए, आपने जो आहार की बात की कि कई बार हम जल्दबाजी में अपना रूटीन जो प्राकृतिक आहार है, जो नेचुरल हमारी डाइट है, उससे हट के सप्लीमेंट्स पर भी डिपेंड हो जाते हैं और मन से ही हो जाते हैं कई बार। तो ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है और इसको रोकना है, थामना है। आपके पास भी कई मरीज ऐसे आते होंगे कि अचानक बहुत जब बढ़ जाती बीमारी तभी आते होंगे।
1: हाँ, मेरे पास ज्यादातर तभी आता है जब एकदम बढ़ी हुई रहती है, मतलब 10 जगहों से बोला जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी आते हैं। मैंने आज तक कोई भी एक अच्छा केस देखा नहीं है जहाँ पे मैं खुश हो जाऊँ कि ये अभी रिसेंट है,
0: जी
1: कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये एक और रहेगा लोगों को कि जब भी आपको लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है आपके शरीर में, कुछ नॉर्मल से बाहर हो रहा है, तो अपना इलाज खुद मत कीजिए। हो सके तो अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, क्योंकि होम्योपैथ को एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, जो कि हम आगे जब डिस्कस करेंगे ये मैं और क्लियर करती जाऊंगी।
0: जी जी आपने कार्यों के बारे में बताया कि कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, लेकिन हम इसके प्रकारों पर भी एक प्रकाश डालना चाहेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई बार आप अपने हिसाब से बताएंगी, परीक्षण भी इसमें शामिल हैं, जैसे T3 T4 के परीक्षण आप करवाती
1: हाँ,
0: हैं, तो किस परिस्थिति में होता है? तो ये हम चर्चा करेंगे एक गाना सुनने के बाद।
1: नमो नमो जी शंकरा, केदारनाथ से।
0: जी, केदारनाथ फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना
1: हाँ
0: है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई अच्छा सुनवा दिया आपने और बहुत ही माकूल था प्रोग्राम में इस समय। लेकिन प्रकारों की जहां तक बात है तो उसके बारे में आप विस्तार से अपने हिसाब से बताइए कि कितने प्रकार के इसमें थायराइड की ग्रंथियों का काम भी होता है, और फिर निदान की बात आती है तो क्या क्या परीक्षण करने आवश्यक होते हैं मरीज के लिए।
1: थायराइड, ये नाम हमने काफी टाइम सुना हुआ है, बट एक्चुअल थायराइड होता क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है। और टाइप्स मतलब प्रकार, एक हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म है, काफी प्रकार, जैसे ग्रेव्स डिजीज हो गया, गॉइटर हो गए, टॉक्सिक एडिनोमा हो गया, ठीक है, थायरॉयड कैंसर हो गया। बट मूलतः जो भारत में या बाकी देशों में भी जो ज्यादातर पाई जाती है वो ज्यादातर हाइपर थायरॉयडिज्म ही होते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में होता ये है कि T3 T4 लेवल ज्यादा हो जाता है। अभी हमें पता कैसे चले?
0: हाँ, उसके लक्षण भी दिखाई देते होंगे बॉडी पे।
1: लक्षण तो दिखाई देते हैं, मगर उसको कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिगेशंस का अलग एक महत्वपूर्ण बताया गया है
0: निदान।
1: इसमें आता है ब्लड। पहला जो थायराइड टेस्ट रहता है, फर्स्ट ही होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सीरम, T3 T4 TSH का
0: जी।
1: अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक है टोटल T3 T4, एक होता है फ्री T3 T4। TSH वैसा ही रहता है। टोटल T3 T4 होता है जो टोटल बॉडी में आपके संचालित होती। इसमें क्या हो जाता है, TBG थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन अगर बॉडी में ज्यादा कम होती है तो T3 T4 भी ऊपर नीचे रहेगा।
0: अच्छा,
1: तो ये पहले के डॉक्टर्स किया करते थे, मगर इससे भी ज्यादा एक्यूरेट फ्री T3 T4 है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करती किसी भी अन्य रासायनिक पे।
0: अच्छा,
1: फ्री T3 फ्री T4 ये आपको एग्जैक्टली बता सकती है कि जो पेशेंट है इसका T3 या T4 फ्री कितना है, मतलब बॉडीज में जो अत्यधिक है वो कितना है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करता है हमको पेशेंट को ठीक करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कहती हूँ, होम्योपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्लड के बाद आ गया अल्ट्रासोनोग्राफी।
0: अच्छा,
1: फिर आता है रेडियो एक्टिव स्कैनिंग, मगर ये सारे बाद में, मतलब जैसे थायराइड कैंसर हो गया, मल्टी नोड्यूलर ये हो गए, नोड्यूल्स हो गए, इसमें सारे ये अल्ट्रासाउंड या स्कैन्स ये सारे वहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें जब पता करना है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, ब्लड टेस्ट इज द फर्स्ट थिंग। प्राथमिक निदान जो रहेगा वो ब्लड टेस्ट है।
0: अच्छा,
1: और ये अनिवार्य है।
0: लेकिन मान लीजिए

0: इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: अच्छा
0: हाँ ठीक है. और जब T3 T4 लो है और TSH हाई है तो इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं.
1: जी जी
0: तो उस हिसाब से हमारे चिकित्सा जो है वो शुरू होने चाहिए.
1: हाँ, क्योंकि निदान में पता हो जाता है कि ये लेवल क्या है,
0: लेवल क्या है और पेशेंट कौन सा पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट, और शुरू होता है हमारा चिकित्सा.
1: जी जी तो हम चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपके प्रकारों में और भी जो बातचीत है उसको लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वातावरण को संगीतमय बनाना होगा.
0: शुरू करते हैं, एक बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है, खोया खोया चांद,
1: काला बाजार.
0: काला बाजार
1: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत सुनते हैं.

0: साहब, गाना वाकई में बहुत ही पुराने दौर में हमें लिए गया और एक पुराने मंजर को हमारे सामने ला दिया गाने ने, तो हम यही कहेंगे कि होम्योपैथी भी एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आज की नहीं है। तो इसमें
1: बिल्कुल
0: तो कई प्रकार के निदान के साथ साथ जब चिकित्सा में हम आगे बढ़ते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, मरीज ठीक होगा ही। तो जब आपके पास जो प्रकार आप बता रही थी, इस तरह के मरीज ज्यादा आपको मिले या कम वाले मिले?
1: पेशेंट हमको कभी बोल के नहीं आता कि हम हाइपरथायराइड के हैं या हाइपोथायराइड। अपने हिसाब से पेशेंट्स को सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनका जो बोलना होता है वो आधे से ज्यादा आपको बता देगा कि क्या एग्जैक्टली चिकित्सा का तरीका जाना चाहिए। जैसे ज्यादातर जब पेशेंट्स ये जो हाइपरथायराइड

0: बर्डिज्म में होते हैं, ये 6 महीने पहले से ही इनके लक्षण शुरू हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मगर लक्षण कैसे होते हैं, कहीं खाज हो गई, कहीं खुजली हो गई, कहीं बाल गिरने का जो समस्या है एलोपेशिया,
1: जी जी,
0: विटिलिगो मतलब सफेद पैचेस, किसी को एंजाइना पेन हो रहा है, किसी का वेट एकदम कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, कहीं डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब लूज मोशंस।
1: जी,
0: अब जब ये सारे पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, अब वो पेन अंजाइना का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सांस में तकलीफ हो रही है, पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये गलत है।
1: जी,
0: कहीं पे किसी को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम
1: होगा,
0: त्वचा रोग, तो वो त्वचा विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो वो देखेंगे कि हाँ चलो बाल गिर रहे हैं, सिर्फ उतने तक दवाई देके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पे ही होम्योपैथ अपना खुद का एक अलग छाप छोड़ता है। जब एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है और मुझे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं, मुझे ये ऑलरेडी सोचना चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे दिमाग में शुरू हो जाता है कि ये इसका जड़
1: इसका
0: क्या
1: रूट
0: है।
1: किधर है?
0: एग्जैक्टली, रूट जो कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालता है, क्या होता है, यही होता है। मुझे दिख रहा है मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, वो बोल रहा है कि मेरे बदन में खुजली है, मेरा वेट लॉस हो रहा है, मतलब वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है। लोगों को लगेगा कि अच्छा भाई इसको थोड़ा पेट का समस्या होगा, थोड़ा बाल का कुछ शिकायत होगा। नहीं, इसको अगर आप बैक ट्रैक करो, मतलब आप सोचते जाओ इसका जड़, तो कहीं ना कहीं आपको 10 चीजें रहेंगे, उसमें से आपका एक्सपीरियंस, आपका खुद का नॉलेज आपको बताएगा कि कहाँ जाना है, वो आपको दिशा देगा। तो ये होता है जड़। तब मुझे सोचना चाहिए कि थायराइड एक कॉज हो सकता है
1: जी,
0: क्योंकि डायबिटीज में भी ये होते हैं, मगर थायराइड एक कॉज हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम निदान करें उस पेशेंट का उस वक्त, काफी टाइम, ऑलमोस्ट मेरे केसेस में 80% तक ऐसे हो चुका है कि थायराइड इनिशियल स्टेजेस पे डिटेक्ट हो गया है, तो या तो हम उसको स्लो डाउन कर ले या तो एक्चुअली वो क्योर हो जाता है। हाँ, अगर लेटर स्टेज में जब पेशेंट्स आते हैं कि बकायदा हाइपर थायरॉयडिज्म के सिम्टम्स लेके, जो लक्षण है वो मैं बता दूंगी, तो ये लक्षण लेके तब तो उसको क्योर करना ही करना है
1: जी।
0: मैं बोल रही हूँ कि 6 महीने पहले से जब लक्षणें दिखाई देती है तब अगर ध्यान दिया तो ट्रीटमेंट या चिकित्सा है या उसका
1: आसान
0: जो
1: हो जाती।
0: हाँ क्योर है वो जल्द हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत ही गंभीर बात बताई है, लेकिन बहुत ही आसान से शब्दों में सुनने वालों को भी समझना होगा और जो इसके मरीज हैं वे भी ये जान सकते हैं कि कितना आसान है, लेकिन प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सक से सलाह लें। और अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे अगले गाने के साथ, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
0: एक बहुत ही पुराना गाना है, मन रे तू काहे न धीरे धरे,
1: चित्ररेखा फिल्म का गाना है ये।
0: हाँ।
1: और वाकई में धैर्य रखने की जरूरत है,
0: जरूरत
1: लेकिन
0: है।
1: प्रोग्राम में तो इस गीत को अभी बजाना पड़ेगा।

0: वाकई एक बहुत ही संदेशात्मक नगमा जो आपने सुनवाया अपनी पसंद पर, मोहम्मद रफ़ी ने गाया, और चित्रलेखा फिल्म के इस गाने को आत्मसात करते करते कई प्रश्न होम्योपैथी क्या क्या होता है वो सब मंजर सामने आने लगा। लेकिन थायराइड और होम्योपैथी में उपचार विषय पर हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। डॉक्टर साहब, इस गीत के बाद जो एक प्रश्न उभरता है वो ये है कि निदान के बारे में अभी और कुछ कहना चाहेंगी आप?
1: शुरुआत में ही आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, तुरंत वो ठीक हो जाए। अब हमारे होम्योपैथी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: क्या क्या है?
1: एक होता है जो चीफ सिम्टम्स है या प्रेजेंटिंग सिम्टम, मतलब तात्पुरता आप जब डॉक्टर के पास आए हो किस लक्षण के साथ आए हो। सेकेंड होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप क्या क्या बीमारी आपको हो चुकी है,
0: हिस्ट्री क्या है,
1: हिस्ट्री क्या है। इसमें आपको और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के दिनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर कैसे होता है कि कोई भी चीज होम्योपैथ में कहा जाता है कि सप्रेस अगर हो गई तो वो जब बाहर निकलना ही निकलना है, जब बाहर निकलती है और बड़ा होके, मतलब और ज्यादा होके वो आपके शरीर पे घातक होता है। एग्जाम्पल, कभी अगर हमको भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, हम बहुत टाइम तक वो भूख को मतलब नहीं अभी खाने का टाइम नहीं आया जो भी है, या कभी किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कहीं जा रहे डर लगा, ये थोड़ा भी हमारा जब माइंड चेंज होता है या सोचने का प्रक्रिया हमारी चेंज हो जाती है तब रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है बॉडी में। कभी हमें ध्यान में आता है, कभी नहीं आता है। तो यही सारी चीजें जब हम सप्रेस करते हैं, मतलब दबा देते हैं
0: जी,
1: तो वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे खुद के शरीर को या हमको। इसमें से आता है दो तरह के सप्रेशंस,
0: वो कैसे?
1: एक है मेंटल, मानसिक, और एक है फिजिकल।
0: जी,
1: मेंटल में कैसे कैसे होता है कि अगर मुझे अमुक व्यक्ति पे गुस्सा आया, समझिए आप पे गुस्सा आ गया, मैं वो अंदर ही अंदर रख लूंगी कि नहीं जी, मैं तो तिवारी जी को नहीं बोल सकती, बड़े हैं, चलो वो गुस्सा मैंने सप्रेस कर लिया। इससे होता क्या है कि कभी देखा होगा कि हिंदी में एक कहावत है, आग बबूला होना।
0: जी जी,
1: तो वो आग बबूला होना या हाथ वो जो लाल हो जाता है, कान लाल होती है गुस्से से थोड़ा, तो वो होता ये है ऑलरेडी केमिकल चेंजेस या रासायनिक क्रिया आपके बॉडी में शुरू हो गई है।
0: जी जी,
1: आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, सावधान
0: जी।
1: अब आपको कहीं किसी से डर लग रहा है या कहीं नए जगह पे जाने पे एक अलग सा एक
0: फोबिया,
1: हाँ, धड़धड़ाहट होती है, सबको होती है। तब क्या होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, धड़धड़ सुनाई देती है दिल की। एक्चुअली होती है क्योंकि तब हमारा बॉडी उस हिसाब से काम करना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसे मारूं या चिल्लाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिक चीजों में सप्रेस करना मतलब है अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग रही है या जो भी है उसको एक अलग ढंग से प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा माध्यम मेरे हिसाब से ये है गाने, म्यूजिक इज अ बेस्ट थेरेपी फॉर एनीथिंग।
0: और ये भी हो सकता है कि उस माहौल से थोड़ा हट जाएं।
1: तब क्या, नहीं, तब क्या होता है, तब थ्री इडियट्स में जैसे हमने एक डायलॉग सुना होगा, हम बेवकूफ बनाते, ऑल इज वेल, वो हो जाता है, हम ब्रेन को बेवकूफ बना रहे कि भाई कुछ नहीं हुआ है,
0: सब ठीक है,
1: सब ठीक है। तो तात्पुरता ब्रेन जब नॉर्मल हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन सारे गड़बड़ जो हो रहे हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब देखना आपका गुस्सा भी ठंडा हो रहा है, आपके बॉडी पे असर नहीं पड़ रहा है। ये हो गया मेंटल
0: जी।
1: अब अगर हम शारीरिक बातों पे आए,
0: फिजिकल,
1: उसमें क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जंक फूड ये वो अलाना फलाना,
0: सारी विषैली चीजें,
1: हाँ,
0: तत्व जो है अंदर रहते हैं,
1: हाँ, तो ये सारी टॉक्सिक चीजें जब अंदर से बाहर आने की कोशिश करती है, याद रखिए नेचर, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाना चाहती है। कोई चीज अगर क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नेचर कभी नहीं करता, प्रकृति कभी नहीं करती, शरीर भी वही है। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक बॉडी के अंदर है, विषैली चीजें, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है तो ऑर्गन्स को फर्स्ट हाथ नहीं देती नेचर। बाल हो गए, फेस हो गया, मतलब स्किन हो गया, ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया तो आपके शरीर में या ऑर्गन्स में जो महत्वपूर्ण है आपके जीवन शैली में, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जब हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या टॉक्सिन्स बाहर निकालने होते हैं, फर्स्ट होता है स्किन, रिंग वर्म हो गया, एक्नी हो गया, सिंपल पिंपल हो गया,
0: रोम छिद्रों से निकल जाते हैं।
1: हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 क्रीम लगाओ, 50 लोशंस लगाओ, पहले उसको ठीक करो भले कुछ हो जाए। अब वापस नेचर ट्राई करता कि फिर उसको निकाले, फिर हम उसको अंदर डाल देते, क्योंकि हमको बाहर से अच्छा दिखना है, अंदर कुछ भी हो जाए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि लिवर या कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, गुर्दा, मसल्स, ब्रेन, हार्ट, ये सारे एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करने ही वाले हैं
0: जी,
1: और वहां से शुरू होता है प्रॉब्लम्स की सारी प्रक्रिया है, जड़, जैसे मैंने बोला था होम्योपैथी का जड़। तो इसलिए पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए इतना डिटेल्स में बोला कि ये होता है पास्ट हिस्ट्री, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैमिली हिस्ट्री,
0: इतिहास क्या है परिवार का,
1: परिवार का। अभी जैसे आम के बीच से आम ही होगा, केला होगा नहीं, केले के झाड़ में केले ही आएंगे,
0: हेरिडिटी कैरेक्टर,
1: हेरिडिटरी। अभी जैसे अगर फैमिली में थायराइड का हिस्ट्री है, थायराइड का हिस्ट्री अगर है, जो यंग गर्ल्स होती है, जो लड़कियां जो प्यूबर्टी में जाती है, उनके चांसेस भी ज्यादा रहते हैं कि आगे में, आगे के दिनों में उनको भी थायराइड होने के चांसेस है। तब होम्योपैथ का काम ये होता है कि ये भी ध्यान में रखे, अगर है तो उसको ठीक करे, अगर नहीं है तो उसको होने ना दे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ऐसे में काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मगर अमुक चीज तो ठीक है, मगर अरे इसको फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। मैं बोलती हूँ आने दो, क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहा है, जितने टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाए ऑर्गन्स उतना ही ठीक रहेगा। ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो एक्चुअल लेवल में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए, वो लेवल में रहेगा। और जैसे ही बैलेंस में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम बैलेंस में आता है।
0: तो फिलहाल तो हमें अपने प्रोग्राम को भी बैलेंस करना होगा, संतुलित रखना होगा। चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और आपकी पसंद का एक अच्छा सा गाना यहाँ सुनेंगे।
1: अभी तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, वो है तू गंगा की मौज में,
0: बैजू बावरा।
1: बैजू बावरा
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बैजू बावरा फिल्म का ये नगमा वाकई आनंदित कर गया। और देखिए जिस तरह से गंगा की मौज में जो एक पवित्रता झलकती है, तो शरीर भी पूरी तरह से कुदरत का दिया हुआ एक पवित्र रचनात्मक पूरा व्यक्तित्व होता है। हम इसे बिगाड़ देते हैं विषैले तत्वों को आत्मसात करके, तो होम्योपैथी उससे भी बचाती है। और आहार के बारे में भी अब जानेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सा का और आप विस्तार दे रही थी वो क्या है?
1: अच्छा, अब आते हैं हम दवाइयों पे। हाँ, मेरा एक सुझाव रहेगा सभी से, कृपया कर खुद का इलाज खुद मत कीजिए, या दूसरों का भी सिर्फ पढ़ के गूगल पे सर्च करके सोशल मीडिया पे जाके मत कीजिए, इतना आसान नहीं है। मगर ये नाम सुनने को इजी, या लक्षण जब पढ़ेंगे, अरे हाँ ये है ना, ये अमुक में है, अरे ये तो अमुक में है, दे देते हैं, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सब जानना जरूरी है, प्लस इन्वेस्टिगेशन का जो ये भी जानना जरूरी है। हर एक दवाई हर एक जगह पे काम नहीं करती, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं दवाई?
0: सही बात है,
1: दवाई तो वही है, लक्षण भी वही है, वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म में स्वेटिंग मतलब
0: पसीना
1: बहुत ज्यादा आएगा, डायरिया होगा, हाइपो में उल्टा होगा, तो कैसे सिलेक्ट करते कि कहाँ पे किसको देना है?
0: लक्षण देख के
1: लक्षण में भी एक स्पेशल इंगित होती है, हर एक पेशेंट एक स्पेशल इंगित स्वयं देता है, सुनने की देरी है,
0: एक इंडिकेशन होता है,
1: एक इंडिकेशन। जैसे थायरॉक्सिन का पेशेंट है, एक आयोडीन का, हम मान के चलते हैं, ये अपने ऊपर ट्राई मत कीजिएगा, मैं बता रही हूँ एज एन एग्जाम्पल। थायरॉक्सिन का पेशेंट दिखने में कैसे होता है? गोल मटोल सा, बहुत स्वेट करता हो, थोड़ा भी कुछ काम किया तुरंत उसको पसीना आता है, तुरंत वो वीक हो जाता है, ठीक है।
0: थोड़ी मेहनत करने पे ही वो थक जाता है,
1: बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। मैंने जैसे पहले कहा था, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन आ गया, अब होता है पेशेंट डायग्नोसिस, मुझे ये पेशेंट डायग्नोस करना पड़ेगा।
0: क्या बात है,
1: पेशेंट डायग्नोसिस होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अमुक पेशेंट अमुक मेडिसिन का है, तमुक पेशेंट तमुक मेडिसिन का है। तो ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट के हिस्ट्रीज लेके और पेशेंट के प्रेजेंट सिम्टम्स लेके, और वो जिस तरीके का मानसिक विचारधारा रखता हो। थायरॉक्सिन का पेशेंट बहुत उग्र होगा, गुस्सेल, आयोडीन का पेशेंट

0: उसी अगर उससे देखा जाए, वो बेचारा सा
1: मायूस।
0: मायूस सा बेचारा, हर एक चीज पे थोड़ी थोड़ी चीजों पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी चीजें उसमें होती। अब यहाँ पे आता है जब मुझे पेशेंट डायग्नोसिस करना पड़ता है, मैंने थायरोक्सिन को आयोडीन और आयोडीन को थायरोक्सिन अगर दे दिया तो मेरे काम बिगड़े बिगड़े, मगर पेशेंट सफरर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं को दवाई देना प्लीज बंद कर
1: डॉक्टर
0: दीजिए।
1: साहब, यहाँ पर एक प्रश्न और उभरता है। हम कई बार देखते हैं बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, बहुत उसको पंचकर्म की क्रिया दे दी गई है, नेचुरोपैथ ये वो, लेकिन वो मोटा ही रहता है। और वो जब भी पूछते हैं तो बोला थायराइड का प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बात, तो ये थायराइड में मोटा होना या एकदम अत्यंत दुबला या कृश हो जाना, ये क्यूरेबल है?
0: है, क्योंकि जैसे ही आप थायराइड क्यों है, कारण क्या है, ये जैसे ही आप ठीक कर रहे हो ऑटोमेटिक वो अपने नॉर्मल में आ रहा है, नॉर्मलसी जिसको कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: मतलब
1: सामान्य अवस्था में आ रहा है।
0: सामान्य अवस्था। डिजीज होता क्या है, डिस ईज, जब आपका ईज या आपका कंफर्टेबल लेवल जब खराब होता है,
1: जी
0: ईजनेस खराब होता है, उसको डिस ईज कहा जाता है। तो जैसे ही वो जड़ से ठीक होने लगता है, जब उसके ऑलरेडी जो गड़बड़ चल रही है वो ब्रेन में चले, माइंड में चले, कहीं पे भी चले,
1: जी
0: ये जैसे ही ठीक किया जाता है, वैसे ही ऑब्वियसली उसका जो सामान्य रूप से पूरी तरह से वो ठीक होके अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है।
1: जी जी और अब देखें कि इसमें कई बार आहार भी काम करता है, जो इस तरह की थायराइड की आने वाली आगामी जो बीमारियां हैं उससे बचाव भी होता है उसका। तो आप क्या कहेंगे कि डाइट और प्रिवेंशन के बारे में क्या कहना?
0: कोई भी पैथी अगर कहे कि मैंने ही सब कर लिया, एकदम गलत, क्योंकि सिर्फ पैथी, सिर्फ दवाइयां कुछ नहीं करती, कर ही नहीं सकती। इसमें डाइट का मतलब आहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है। सिर्फ डाइट अगर बोलूं तो गलत होगा, साथ में होते हैं एक्सरसाइज, मतलब व्यायाम। व्यायाम मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, अमुक वेट्स लो तो अमुक करो, कोई जरूरत नहीं है। आप रोजाना 5 से 7 किलोमीटर चलो, सीजनल फ्रूट,
1: कोई भी मौसमी एक जो फल
0: मौसमी
1: है वो खाना
0: खाना
1: चाहिए।
0: खाना हो या फल हो ये खाइए, और पानी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, लोग पानी जब बोलते हैं तो बोलते हैं ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, शरीर ठीक रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2.5 से 3 लीटर काफी है आपके बॉडी के लिए, इससे जब ज्यादा आप पानी पियोगे। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपकी खुद की कैपेसिटी अगर होगी, मेरी खुद की कैपेसिटी है 2 किलो चीज उठाने की, मुझे 3 किलो दे दिया जाए मैं उठा लूंगी, मुझे 10 किलो दे दिया जाए क्या मैं उठा पाऊंगी?
1: बहुत प्रेशर
0: नहीं।
1: पड़ेगा।
0: यही प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स, किडनीज पे स्पेशली पड़ता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करते हैं। किडनीज सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता, T3 किडनीज लिवर से भी प्रोड्यूस होती है।
1: ओहो
0: यस,
1: क्या बात।
0: इसलिए मैंने ये यहाँ पे जिक्र किया। और जब किडनीज अगर काम नहीं कर रही है तो 10 चीजें होंगी ही होंगी, T3 पे भी असर पड़ेगा
1: तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है
0: जरूर।
1: रखना। और आपका जो टोटल इन ऑल कहना ये है कि वो कॉमनली कहा जाता है कि ज़्यादा पानी पिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार।
0: उतना ही
1: लेकिन आहार में ये बात तो मानती है, आज की जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसमें जंक फूड वगैरह भी इसमें।
0: सबसे पहला चीज जो लोगों को बंद करना चाहिए वो है अजीनोमोटो,
1: जो
0: बड़ी
1: चाइनीज फूड में
0: खतरनाक
1: ज़्यादा
0: है।
1: इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही बोला है आपने।
0: अजीनोमोटो बंद कर दीजिए, फास्ट फूड्स कम कर दीजिए।
1: और कुछ नहीं तो सामान्य खाना खाइए,
0: हाँ, कम
1: इतना तो
0: कर
1: कर
0: दीजिए, मैं ये
1: जी।
0: भी नहीं बोलूंगी कि बंद कर दीजिए, एक्चुअली बंद करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कम करेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर पॉजिटिव दिशा में जाएगा। और मेरा सुझाव एक रहेगा लोगों से, जितना हो सके अपने माइंड को थोड़ा नियंत्रण पे रखिए, मतलब थोड़ा सैक्रिफाइस अगर हम करना शुरू हो जाए,
1: कंट्रोल।
0: कंट्रोल करना शुरू हो जाए, सैक्रिफाइस मतलब अपना स्वार्थ थोड़ा सा हटके देख लेना, जैसे ही आपका मन शांत रहेगा, आपकी सोच अच्छी होगी, शरीर ऑटोमेटिकली उसी दिशा में उस हिसाब से अच्छा ही चलेगा।
1: क्योंकि उसी हिसाब से उसको आदेश प्राप्त होंगे।
0: हाँ, हम जैसे बोलते हैं कि ब्रेन ने वो आदेश दिया, मैंने जैसे पहले कहा कि ब्रेन को आदेश मिलता है कि TSH चालू करो बंद करो, एक्चुअली ब्रेन देता है क्या, मन देता है,
1: जी
0: मन
1: जी
0: को आप ब्रेन के

0: अंदर रिलेट मत करना, वो अलग चीज होती है।
1: हमारे जो कार्यक्रम का मन इस समय कह रहा है कि आदेश दे रहा है दरअसल कि एक गाना अच्छा सा हो जाए यहाँ पर
0: एक
1: चलते
0: अच्छा सा
1: चलते।
0: गाना चलते चलते मैं हूं जो

हो झुम झुम झुम झुम झुमरो पकड़ घूम बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल

0: डॉक्टर साहब, बहुत ही झूमता मचलता बहलाता कदमों को थिरकाता नगमा आपने सुनवाया झुमरू फिल्म से और किशोर कुमार की आवाज में। देखिए, समापन की ओर बिल्कुल नजदीक है हमारा प्रोग्राम। चलते चलते आज के हमारे विषय पर हमारे सुनने वालों को आप क्या मैसेज, संदेश या सलाह देना चाहेंगी?
1: एक है कि पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए। आप जितना अच्छा सोचोगे, आपके शरीर की जो रासायनिक क्रिया है उतनी ही पॉजिटिव आएगी। और इससे होगा क्या, हमारे आने वाले जेनरेशंस को हम एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट या एक अच्छा जगह दे पाए जहाँ पे वो पनप सके। मेरे जो गुरु है, जिन्होंने आज मुझे सिखाया है कि होम्योपैथी का मतलब क्या, कैसे सेवा की जा सकती है, कैसे ठीक करके हम, ये एक अलग ही खुशी मिलती है पेशेंट को ठीक करने की। ये जो खुशी मिलने का जो राह है वो मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है। मेरे गुरु और कोई नहीं, मेरे डैड है, डॉक्टर एस बैनर्जी। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक बार फिर विविध भारती को तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई की सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर लीजा बनर्जी के साथ। आज के प्रोग्राम में चर्चा का विषय था थायराइड होम्योपैथी में।

0: At Rashtrapati Bhavan, in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry.
1: Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order.
0: And Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हमें बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ. और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वॉयलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वॉयलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatabdani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू
1: हिज क्रेडिट। भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते हैं।
2: पायनियर इन स्पोर्ट्स प्रोफेसर मल्होत्रा सर्व्ड ओवर 40 इयर्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन।
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
1: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती है।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
1: पद्मश्री श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: Shri Vishwabandhu was the founder of Surangan, one of Bihar's most respected cultural institutions, and remained so over 6 decades.
1: Shri Bharat Singh Bharti, Kala Lok Gayan.
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरब्यातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust, Jaisalmer, and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Nilkant.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
0: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio with the Geet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award along with immense respect for the artistic
1: community. Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेला साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev

0: 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue jis tan Padma Shri se sammanit hota hai.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
0: वन उत्पादक है आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है. 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलगुआ से आती हैं.
1: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
2: श्री पेची गोबिंद, समाज सेवा.
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसने सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए पेची गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
1: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report.
2: Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी की ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: D.P. Roy Award.
2: Shri Gafuddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए.

0: आखिर रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: Shikasam has been instrumental in carrying Gujarati folk music to global audiences, performing across countries such as the USA, UK, South Africa, Canada, UAE, Oman, and several others. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and lived with solace and solidarity for poor artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण कितना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर।
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शन इन द स्टेट आर्ट कलेक्शन टेक्टोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड अ 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट।
2: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: बारी 23 वर्षीय खिलाड़ी की T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर, सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी।
2: देवबा लाड, दादा लाड, कृषि।
0: देवालाल किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्री रंग देवालाल इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
2: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया।

0: Shriyanki Gauraji has personally collected more than 20 lakh books over the last 50 years using his entire personal earnings for this purpose. And his collection includes books in Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages. And diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 63 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddha Rashmi Mani, पुरातत्व विज्ञान
2: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod
0: India.
1: Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: Organ Man ke roop mein jane jate hain. और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है
0: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजाति आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने
0: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस हानयांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया थाईलैंड महिडोल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज एकेडमी ऑफ साइंसेस
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी कला कंथा एम्ब्रॉयडरी
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शी हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल By conferring on her the Bangladeshi Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया उनकी बिहाफ पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय
0: श्री मुखोपाध्याय
1: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल व्यापार एवं उद्योग
2: 74 वर्षीय नुवाल फुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which was
1: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
2: Silambam. 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youth who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Sunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप. धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए

0: राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्रीपंड का कर
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshara.
0: राष्ट्रपति जी स्वयं एक सीढ़ी उतर के नीचे आती हुई और पंत जी जो कि 90 साल के हैं उनका सम्मान करती हुई और ये करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है
1: His work earned him the विश्व हिंदी
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
0: अनिल कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार गली मेला बालकृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
2: Shrimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं
1: Shrimati Reddy was the first woman chairperson of Telangana Sangeet Natak Academy, governing council member of Sangeet Natak Academy Delhi, and has received prestigious awards like Sangeet Natak Academy Award and many more.
2: Dr. Palconda Vijay Anand Reddy, Chikitsa Oncology.
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CNE lectures, offered 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: Shri Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddha kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सक्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं
1: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आल्सो ही परफॉर्म द बरगीत विद मणिराम गायन मोस्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948
2: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री

0: 86 साल के शास्त्री जी
1: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
2: प्रोफेसर वेम्पति कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शॉक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाज मारकंडा हॉकी नर्सरी, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी।
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणो प्रांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस contribution के लिए आज राष्ट्र ने सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स, मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है, और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिव शंकरी कम्प्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक एक्सेलेंस। She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: Sridhar ji, Akashwani ke Up Mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशन। He has also played a central role in launching Gyan Darshan Group of Channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों, खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस काला आजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Professor Sundar is ranked at the top in the world in the field of leishmaniasis and kala azar from the year 2013 to date.

0: published extensively in academic journals, including NEJM.
1: Dr. S. G. Sushilamma, Samaj Seva.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। पांच दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, पांच दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
0: Dr. Sushilamma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: Shri N. स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
2: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
0: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shali Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल Local initiated a program to increase the productivity of maize.
1: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
0: श्री वैद्य
2: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Jujal Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Jujal Vasi, आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशन्स। He has published about 200 papers in leading journals.
1: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
2: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
0: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in

0: गंभीर सिंह योंजन, साहित्य एवं शिक्षा।
1: गंभीर सिंह जी, दार्जिलिंग पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं, और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर योंजन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
0: Shri Halley Warr, Samaj Seva.
1: अब बारी Halley Warr जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
2: Shri Warr has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Route Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: I can see everybody is standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Award. It is indeed a moment of pride.
2: So please, pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओब इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है अब आपको सुनवाते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश
5: बंदूक से निकली गोली का कोई नाम कोई जाति कोई धर्म नहीं होता जब ये गोली लगती है किसी इंसान को तो घायल होती है मानवता छूट जाता है एक बचपन वीरान हो जाता है किसी का जीवन टूट जाती है किसी के बुढ़ापे की लाठी बुझता है एक दीपक उम्मीद का अपने इस देश में बारूद का ढेर नहीं फूलों का चमन महकाएं जीवन के हर रंग से इंद्रधनुष बनाएं

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाए, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
1: जिस देश पे हमने जन्म लिया,
0: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
1: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
0: उस धरती का ऋण है हम पर।
1: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

0: हमारे भारत में सदा एकता का वास रहे,
1: समाज में सदा आपसी प्रेम का आश्वास रहे,
0: देश में सदा भाईचारे और नैतिकता का निवास रहे
1: और हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता में सदा उजास रहे।
0: आइए मिलकर हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें भारतीयता का, मनुष्यता का सदा वास रहे।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस

0: को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं।

अपने सुनने वालों को बता दें, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे यानी 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज शाम 7 का समय रहेगा विविधा का। आज विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा रिश्तों की परवरिश। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगी समीना बानो। सुगम संगीत इस कार्यक्रम का समय याद रखिएगा आज शाम 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे गजलें और कलाकार होंगे संजीव पाराश्री। गीत का तचल फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा आज रात्रि 8:00। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सबरस। लोक गीत का ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे वीणा के स्वर में। हेलो फरमाइश आज रात्रि 10:00 हम आपको सुनवाएंगे हेलो रामपुर। समय याद रखिएगा आज रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे हेलो रामपुर।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
1: जिस देश में हमने जन्म लिया,
0: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
1: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
0: उस धरती का ऋण है हम पर।
1: हमारा कर्तव्य है

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर के स्वर में। फिल्म है कटी पतंग।

क़यामत से क़यामत तक इस फिल्म में अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण को। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन बारे सब भैया बहनन को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया हरदेव की
0: राम राम। और सुनाओ हरदेव भैया, कैसे हाल चाल है और कैसी है आपकी खेती बाड़ी?
1: मीना बहन, हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है और उम्मीद करता है हमारे किसान भाई बहन जो खेती बाड़ी कर रहे हैं,
0: हाँ भैया,
1: तो ब्यू बढ़िया तरीका से अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए होंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और भैया आज गंगा दशहरा हो तो भैया आज का गंगा दशहरा नहान गए भैया?
1: बिल्कुल बिल्कुल मीना बहन, हम तो ना जा पाए लेकिन हमारे परिवार के बाकी लोग जो हैं वो गंगा दशहरा के मेला गए।
0: अच्छा भैया।
1: और उन लोगों ने वहाँ जाकर जो है पूजा वूजा करी।
0: हाँ भैया।
1: और आपको पता ही कि जेठ को महीना है तो इस समय सभी लोग जो हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं। गंगा देखो आज जो है दशहरा पूरी अच्छे तरीके से सब लोगों ने मना लो और जाके साथ साथ खेती बाड़ी भी जो है वो जरूरी है।
0: हाँ भैया।
1: कहीं हमारे भाई बहन जो गन्ना की निराई गुड़ाई चल रही है और इसी बीच जो है बहुत सारे हमारे भाई बहन गंगा के मेले गए भी हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल हरदेव भैया आपने सही कही। और गंगा दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि हमारी आस्था संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा बड़ा संदेश भी है। गांव में आज भी लोग इस दिन सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं भैया, पूजा पाठ करते हैं और घर आंगन में खुशी का माहौल रहता है भैया।
1: बिल्कुल सही बात है मीना बहन। हमारे देश की जो धरती है आपने देखी है कि प्राचीन समय से ही ऋषियों और मुनियों की पवित्र भूमि रही है
0: हाँ भैया।
1: और यहाँ गंगा जो है बहुत पुराने काल से बहती आ रही है और हमारे यहाँ यमुना नदी भी बहती है और यहाँ देखी जाए तो पुरवाई भी चलती है,
0: हाँ
1: है ना
0: भैया।
1: है?
0: हाँ हाँ हाँ
1: और हमारे यहाँ देखिए आप तो पछयाव भी चलता है और इस पुरवाई के बीच कभी कभी हम देखो और आप जो है कभी कभी खेत पे बैठे खटिया पे बैठे पेड़ की छाव में
0: हाँ भैया। हाँ
1: हमारे देश में चला पवन चला पुरवाई।
0: हाँ भैया। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच भैया जेठ की तपती दोपहरी में जब हम गंगा में गंगा दशहरा पर डुबकी लगाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है भैया। आज दशहरा है, वाकई में गंगा में नहाते बड़ा आनंद आता है। आज सभी को, आप सभी को रेडियो स्टेशन रामपुर की ओर से गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई हो।
1: बिल्कुल सभी किसान भाइयों और बहनों को गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई। और भैया गंगा में स्नान के साथ साथ हम देखते हैं कि जगह जगह जो है आज के दिन बहुत सारे भाइयों

0: के दिन दंगा दशहरा के दिन सभी लोगों ने पूरी श्रद्धा से समाज सेवा करी। और गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ रही है
1: हाँ भैया
0: और गांव
1: बिल्कुल,
0: में देखी जाए तो ठंडो ठंडो शरबत भी पाओ सबको।
1: हाँ भैया बरेली मंडल की अगर हम बात करें तो भैया बरेली में राम गंगा चौहारी, बदायूं में ककोड़ा और कचला, शाहजहाँपुर में नगरिया, ढाईघाट में खूब धूमधाम रहती है भैया। और भैया जैसे किसान साथियों, गंगा पावन धरोहर है, देश के कई करोड़ लोगों की जीविका गंगा पर निर्भर है भैया। खेत खलिहानों में पानी से लेकर कई कारखाने गंगा के पानी के सहारे चल रहे हैं भैया। हमें गंगा पर बहुत गर्व है, गंगा हमारी माता है, जन्म से लेकर अंत तक गंगा जल का महत्व भैया।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही, गंगा हमारी मैया हैं और हमारी धरती पे गंगा मैया को लान में और हमारे जो ऋषि मुनि भागीरथ जी हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: है ना। उनने कठोर तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लेकर आए हुए, और भागीरथ जी जो हैं उनने अपनी तपस्या को पूरे विश्वास हो उनको कि यदि भागीरथ जी जो हैं ये आत्मविश्वास ना हो तो उनकी तपस्या खाली जो है चली जाती, लेकिन उन्हें आत्मविश्वास हो तो भी गंगा मैया को धरती पर लेकर आए।
1: हाँ भैया बिल्कुल। और
0: और हमारे किसान भाई बहन हैं वे अपनी जो मेहनत पर पूरे विश्वास उन्हें करना चाहिए, जैसे हमारे भागीरथ जी हैं ऋषि मुनि हैं पुराने समय के, उन्हें पूरा विश्वास हो
1: हाँ भैया
0: कि वे जो काम कर लेंगे उन्हें वो काम करके दिखाओ। इसी तरह हमारे किसान भाइयों बहनों को आत्मविश्वास करके जो है खेती करना चाहिए और अपनी यानी कि अच्छी मेहनत करके अधिक उत्पादन लेना चाहिए।
1: हाँ हरदीप भैया, आजकल कई जगह नदियों में कूड़ा कचरा डालने की आदत बढ़ गई है भैया। पूजा सामग्री भी लोग सीधे पानी में फेंक देते हैं, ऐसे में पानी दूषित होता है और गांव का पर्यावरण भी भैया खराब होता है। हम सब मिलकर ये ठानना होगा कि नदी तालाब को गंदा नहीं करें भैया।
0: बिल्कुल सही बात की आपने मीना बहन। हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन हैं और हमारे जो बच्चे हैं गंगा दशहरा के मेला जातेंगे
1: हाँ हाँ भैया
0: तो हम देखते हैं कि जो थैलियाँ वगैरह होती हैं और वहाँ जो हमारे जो जो फल विक्रेता हैं और जो अपने देखते हैं कि जैसे बोलते हैं प्रसाद विक्रेता हैं
1: हाँ
0: है
1: भैया,
0: ना,
1: हाँ
0: तो वे थैलिया में दे देते हैं तो उन्हें ऐसा ना करना चाहिए, कागज़ में देना चाहिए क्योंकि कागज़ जो है गल जाता है वो।
1: हाँ भैया
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: इस बात को हमें ध्यान रखनी है, वो कागज़ हमें गंगा में ना डालना चाहिए
1: हाँ बिल्कुल
0: है ना,
1: भैया, हाँ
0: क्योंकि गंगा में डालोगे तो गंगा हमारी जो मैया है अपवित्र हो गई, जगह जगह जो है प्रदूषण हो गई, जैसे बोलते हैं जल प्रदूषण
1: हाँ
0: है ना।
1: भैया,
0: सरकार
1: हाँ
0: हमारी बहुत चेता रही है, सभी लोगों को कह रही है कि भैया जल प्रदूषण ना करें,
1: हाँ
0: नदियों
1: बिल्कुल,
0: को गंदो ना करें।
1: हाँ
0: हमारे
1: भैया,
0: प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वे जो है नदियों को गंदो ना करें,
1: ना करें
0: उन्हें
1: भैया
0: हमेशा अच्छो ही संदेश दोगे। हमारे जो भारतीय हमारे भाई लोग हैं
1: बिल्कुल
0: हिंदुस्तान
1: भैया,
0: में रह रहे हैं उन सभी को बहुत ही बढ़िया संदेश देते हैं वे, और लोगों से कहते हैं कि आप जो है किसी भी माध्यम से आप कोई भी तरीका अपनावें लेकिन जो है
1: गंगा के पानी,
0: नदियों को अपवित्र ना करें
1: हाँ बिल्कुल
0: है ना।
1: भैया, हाँ। तो किसान साथियों और भैया बहनों, इस गंगा दशहरा पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, नदी तालाब साफ रखेंगे, पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे
0: और
1: और
0: गांव
1: गांव
0: को
1: को स्वच्छ
0: स्वच्छ
1: बनाएंगे
0: बनाएंगे।
1: भैया।
0: बिल्कुल सही बात की आपने मीना बहन, गंगा दशहरा पर आपने बहुत ही अच्छा संदेश दो हमारे किसान भाइयों को कि प्रकृति का जो है हमें सम्मान करना चाहिए और जल का संरक्षण और समाज में जो है प्रेम की भावना का विस्तार करना चाहिए।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: तो बात रही मीना बहन गंगा दशहरा मेला की
1: हाँ
0: जो कि
1: भैया,
0: आज हमने और हमारे किसान भाइयों ने खूब मजे लेके मनाओ
1: हाँ
0: है
1: भैया
0: ना,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: हाँ
0: जाके साथ साथ थोड़ी खेती बाड़ी पर चर्चा कर लीजिए गन्ना में जो है कीट प्रबंधन की।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: तो मीना बहन इस समय हम देख रहे हैं कि हमारे फसलन में जो हमारे खेत हैं उनमें जो हमारी गन्ना की फसल है वो अच्छी बढ़वार पर
1: हाँ
0: है
1: भैया
0: ना,
1: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल,
0: तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि गन्ना जो है घुटन तक पहुंच गया है, कहीं हमारी लंबाई के बराबर हो गए
1: हाँ भैया,
0: है ना, 5-6 फीट
1: हाँ
0: के करीब ही गए जो है वहाँ के पौधा, और तेजी से जो है बढ़वार ही रही है। लेकिन ऐसे
1: हाँ
0: मौसम में हमें गर्मी और नमी जो है बढ़ने के साथ साथ कई तरह के कीट जो हमारी फसल पर हमला करते हैं उनसे हमें सावधान रहनी है।
1: हाँ भैया बिल्कुल, और सही कही हरदे भैया, अगर समय रहते किसान भाई कीटों की पहचान कर ले और सही प्रबंधन करें तो फसल गांव फसल को कोई बड़ो नुकसान से बचाया जा सकता है। गांव में कई किसान भैया कहते हैं कि फसल तो बढ़िया भी है लेकिन कीट लगने से पैदावार घट गई भैया, इसलिए आज हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट और उनके
0: बचाव
1: बचाव की
0: की
1: भैया।
0: मीना बहन बिल्कुल आपने सही बात कही, गन्ना में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हम नुकसान जो है तना छेदक कीट करते हैं वो
1: हाँ
0: है
1: भैया
0: ना, जो
1: बिल्कुल,
0: कीट
1: हाँ
0: होता है गन्ना के अंदर घुस के बाकी तना का नुकसान पहुंचाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पत्तियों पर छोटे छोटे छेद आप देखती हैं
1: हाँ भैया,
0: क्योंकि खेत कर आप घूमनता ही अपने खेतन पर तो गन्ना

0: ये फसल है, अगर वो कीट लगा हुआ है गन्ना में तो छोटे छोटे कीट बाकी पत्तियों पे ना वो जो छोटे छोटे छेद हैं वे दिखाई देंगे, और बाद में जो बीच की पत्ती होती है वो सूखने लगती है।
1: हाँ भैया,
0: और गांव में इस तरह जो है हमारे जो लोग हैं बाको मरी पोंग भी कहते होंगे।
1: हाँ भैया, और कई किसान भैया शुरुआत में इसको सामान्य सूखापन समझ लेते हैं, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो पूरा खेत प्रभावित होता है, हो सकता है भैया, जहाँ सूखी पोंग दिखाई दे वहाँ प्रभावित पौधों को निकाल
0: निकाल
1: कर,
0: दें खेतों से।
1: हाँ,
0: हाँ
1: खेत से बाहर निकाल कर फेंक दें ताकि कीट आगे ना फैलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। खेत को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखने ताई बाकी निराई गुड़ाई जो है जरूरी है।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: घास फूस जो हो जाती है बाको निकाल दें, बहुत सारे खरपतवार ही आतंगे तो भी जल्दी बढ़ जाते हैं, उनको निकालना बहुत जरूरी है। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और गन्ना में जब बड़बार अच्छी है तो मिट्टी चढ़ान को काम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बारिश को जब मौसम आता है, बारिश को
1: हाँ भैया,
0: आप
1: हाँ
0: देखती हैं ना बारिश के मौसम में तेज हवा चलती है, तो
1: हाँ
0: हमारी गन्ना की फसल में अगर खरपतवार होंगे तो भी एकदम जो है गन्ना की फसल हमारी गिर जाएगी।
1: गिर
0: तो
1: जाएगी।
0: हवा निकलने को एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, कुछ हमारे किसान भाई होते हैं कि पत्ती छांट देतेंगे तो हवा आराम से निकलती है, हवा गन्ना को जब लगती है तो गन्ना की जो है मोटाई बढ़ती
1: हाँ भैया,
0: है
1: कुछ
0: ना।
1: किसान भैया भी बांध ही देते हैं अपने।
0: हाँ कुछ किसान, और बांधना जरूरी है, तो जो है आगे चल के जब बड़बार अच्छी है तो बाको बांध देना चाहिए।
1: हाँ, और हरदे भैया एक और कीट जैसे पायरिल्ला, एक कीट पत्तियों का रस चूसता है, इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उन पर काली फफूंदी जैसी परत दिखाई देने लगती है भैया। अगर देख खेत में पत्तियां चिपचिपी दिखें तो भैया समझ जाइए कि पायरिल्ला का प्रकोप हो सकता है भैया।
0: हाँ बिल्कुल सही बात कही मीना बहन। पारेला जो जो जो कीट है तो बाकी बचाता ही आप किसी अच्छे कृषि विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं, और जाके साथ साथ खेत में जो है अपनी गन्ना की फसल में संतुलित खाद को प्रयोग करना जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा यूरिया डालने पर जो कीट बढ़ते हैं वो
1: हाँ भैया,
0: है ना मीना बहन। तो कई किसान जो भाई हैं हमारे सोचते हैं कि ज़्यादा खाद डालेंगे तो फसल खूब बढ़ेगी, लेकिन वो उनकी गलतफहमी है।
1: हाँ
0: आप
1: बिल्कुल,
0: कोई फसल करें पास से पहले मिट्टी की जांच कराएं,
1: हाँ बिल्कुल,
0: मिट्टी की
1: जरूरी भी
0: जांच
1: है।
0: करने से आपको पता चलेगा कौन कौन से पोषक तत्व कम है, आगे चल के हम उसी फसल में सही मात्रा में पोषक तत्व को प्रयोग करेंगे।
1: हाँ बिल्कुल भैया, और एक जरूरी बात और है भैया, खेत में पानी का संतुलन बनाए रखें, ज्यादा पानी भरा रहने पर भी फसल कमजोर होती है और कीटों का असर बढ़ जाता है भैया, इसलिए जहाँ जरूरत हो वहीं सिंचाई करें और पानी निकासी का भी इंतजाम करें भैया।
0: आप बिल्कुल सही बात की आपने मीना बहन, कि जो है समय पे जो गर्मी को मौसम है समय समय पे कि जो है फसल की सिंचाई जरूरी है,
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: अगर फसल में नमी कम है तो भैया सिंचाई करें। और रही बात जो है पानी निकासी की, तो हमें कोई फसल करने से पहले अपने खेत को समतल कर लेना चाहिए, और वहाँ उसके बाद फिर से जो है फसल हमें करना चाहिए, जिससे हमारी पानी जब कम मात्रा में लगे तो लागत तो कम आवई है
1: हाँ
0: ना मीना
1: भैया,
0: बहन।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और मीना बहन गाँव के हमारे जो बुजुर्ग किसान भाई हमेशा कहते हैं कि खेत पर रोज नजर रहेगी हमारी, तभी हमारी फसलें बचेंगी। और आज जो बात बिल्कुल सही आएगी, हम सुबह शाम जो है खेत पर एक चक्कर हमें मारना चाहिए, चाहे हम कोई बहाने से जाएं। अरे
1: हाँ
0: हम
1: भैया,
0: जो शहर में लोग जो हैं जो शहर के लोग होते हैं वे वॉकिंग के बहाने चले आते हैं कि भैया हमारा शरीर सही रहे, अरे हम तो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हम तो वैसे ही चले जाएंगे घूमने ताई सुबह शाम, तो हमें जाना चाहिए है
1: हाँ
0: ना
1: भैया
0: मीना
1: बिल्कुल,
0: बहन।
1: जाई बाहर
0: हमारा
1: पहली
0: शरीर
1: बार
0: तो
1: आवांगे,
0: स्वस्थ
1: अपनी
0: रहे
1: खेती
0: वो,
1: देखे आवा
0: और
1: भैया।
0: हमारी खेती देखो चंगी रही एकदम बढ़िया
1: हाँ
0: फर्स्ट
1: बिल्कुल
0: क्लास।
1: भैया, और जहाँ कीट ज्यादा दिखाई दे वहाँ कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें भैया, और बिना जानकारी के बार बार दवा छिड़कने से खर्च भी बढ़ता है भैया और फायदा भी कम होता है भैया।
0: बिल्कुल सही बात कही मीना बहन आपने। तो हमारे किसान भाई जो हैं इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे और अपनी गन्ना की जो फसल की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, और रोज सुबह सुबह घूमन तई जाएंगे और शाम को भी घूमन तई जाएंगे,
1: हाँ भैया
0: ताकि
1: बिल्कुल,
0: गन्ना
1: हाँ
0: में अगर फसल में कोई भी बदलाव कोई भी कीट कोई भी रोग नजर आवे तो तुरंत बाको उपचार करो जाए, और जिससे हमारी आगे चल के फसल को उत्पादन बढ़ सके। तो
1: हाँ भैया,
0: हमारे किसान भाई इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और अब मीना बहन आप जो है हमारे किसान भाइयों को क्या चीज जो है सुनवा रही हैं।
1: हाँ भैया, हम अपने किसान भैया बहन के लिए भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। भेंट वार्ता का विषय है खरीफ में बीज शोधन व भूमि शोधन का महत्व। जानकारी दे रहे हैं भैया डॉक्टर अनुज बंसल, और इनसे जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया प्रवीण कुमार।
0: तो सुनो साथियों जो भेंट वार्ता,
2: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं डॉक्टर अनुज बंसल, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमोरा रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, इस समय हमारे किसान भाई खरीफ सीजन में धान की खेत की तैयारी में लगे हुए हैं, और बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जो जल्द ही बीज की पौध भी डालने की तैयारी में है।

0: तो आपने देखा होगा कि खरीफ की फसल में कीड़े और बीमारियां बहुत ज़्यादा लगते हैं। उन सब बचाव के लिए हमारे किसान भाई बीज शोधन और भूमि शोधन करते हैं। तो ये किस तरीके से करें जिससे कि फसल में ज़्यादा समस्या ना आए? तो हम आपसे जानना चाहेंगे, किसान भाई अगर इस समय भूमि शोधन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं?
1: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये अब खरीफ की फसल की बिजाई का समय हो रहा है, इसमें हम नर्सरी न धान की नर्सरी डालेंगे एवं धान की खरीफ की मुख्य तीन फसलें हैं यहाँ पर,
0: जी
1: धान, मक्का, बाजरा और दाल में आपका मूंग, उड़द, अरहर। तो इन सभी फसलों में बीज एवं भूमि जनित रोग होते हैं, लेकिन हम किसान भाई ज्यादातर बीज एवं भूमि शोधन शोधन तो करते ही नहीं है, लेकिन भूमि शोधन बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर हम भूमि शोधन नहीं करेंगे तो बीज जमीन से होने वाले रोगों
0: जी
1: की परसेंटेज बढ़ जाएगी।
0: हम्म
1: अब हम भूमि शोधन कैसे करें? सामान्य रूप से किसान तीन प्रकार से खेती कर रहे हैं, परंपरागत तरीके से,
0: जी
1: जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से।
0: जी
1: अब तीनों में ही तीनों चीज के अलग अलग रूप है। जैसे कि हम परंपरागत तरीके की अगर बात करें तो इसमें भूमि शोधन के लिए हम समर प्लोइंग भी करेंगे, ग्रीन मैन्योरिंग भी करेंगे, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी करेंगे, फंजीसाइड का प्रयोग भी करेंगे, कई बार जैव उर्वरक और जैव का भी प्रयोग हम करेंगे।
0: जी
1: इसी प्रकार से हम जब जैविक की बात करेंगे तो उसमें हम बायो एजेंट का प्रयोग करेंगे,
0: जी
1: प्राकृतिक की बात करेंगे हम तो प्राकृतिक में बीजामृत, जीवामृत और अपनी मल्चिंग, इन
0: जी
1: सब चीजों का हम प्रयोग करेंगे। अब मैं सबसे पहले प्राकृतिक खेती की बात करता हूं कि जो हम ये जीवामृत का प्रयोग करेंगे वो किसान भाइयों को कहां से उपलब्ध होगा और कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको तैयार करना, क्योंकि ये किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। अब हमको शोधित करने के लिए जो जीवामृत तैयार करेंगे हम, 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम बेसन, 200 लीटर पानी और एक मुट्ठी मिट्टी, ये किसी बरगद के नीचे से या जहां हमारा फर्टिलाइजर यूज ना होता हो, अधिक जीवाश्म वाली हमें ये चाहिए। इसको हम सबको एक ड्रम में मिलाकर तैयार करेंगे।
0: जी
1: 200 लीटर पानी में सबसे पहले हम आपका गोमूत्र डालेंगे, गोमूत्र के बाद हम गाय का गोबर डालेंगे, गुड़ एवं बेसन डालेंगे, गुड़ एवं बेसन और इसके उपरांत हम मिट्टी डालेंगे।
0: जी
1: तो इसको हम 2 से 3 दिन तैयार करने के बाद 1 सप्ताह के अंदर अपनी भूमि में प्रयोग करेंगे
0: जी
1: और 15 दिन के अंतराल पे हम इसको प्रयोग करते रहेंगे, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और जो भी हमारे बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव है, लाभकारी सूक्ष्म जीव है, उनकी भूमि में संख्या बढ़ेगी,
0: जी
1: जिससे हमारी फसल को अधिक लाभ होगा। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आपके जैविक में।
0: जी
1: जो जैविक में हमको भूमि शोधन करना है, उस भूमि शोधन के लिए हम ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बेसियाना, स्यूडोमोनास का प्रयोग करते हैं।
0: जी
1: ये किस प्रकार से प्रयोग करने हैं? ट्राइकोडर्मा भी एक फफूंद है, ब्यूवेरिया बेसियाना भी एक फफूंद है,
0: जी
1: स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है। अब एक बैक्टीरिया और एक फफूंद से हम किस प्रकार से अपनी भूमि को शोधित करेंगे, ये हमारे लिए लाभकारी फफूंद और बैक्टीरिया है। इसको हम गोबर की सड़ी हुई खाद में, हम इसको गोबर की सड़ी हुई खाद में जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज हो जाएगी और इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 2 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 2 से 5 किलोग्राम स्यूडोमोनास, 2 से 5 किलोग्राम आपका ब्यूवेरिया बेसियाना, इनको हम उसमें मिला लेंगे और 1 सप्ताह तक खाद में मिला के रखने के पश्चात अंतिम जुताई के समय हम इसे खेत में मिक्स करेंगे। जो ये आपका ट्राइकोडर्मा है ये फंगस को कंट्रोल करेगा, जो आपका ब्यूवेरिया बेसियाना है ये आपके इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा, जो आपका स्यूडोमोनास है ये आपके बैक्टीरिया का प्रबंधन करेगा।
0: जी
1: तो ये लाभकारी जो है फफूंद, ये हमारे लिए जो हानिकारक है उनको किल करता है, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और सूक्ष्म जीवों का अधिकता बनी रहती है।
0: जी
1: अब आते हैं हम परंपरागत तरीके से। परंपरागत तरीके में हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें हम जैविक तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें हम प्राकृतिक का भी कर सकते हैं, हम दोनों का समायोजन भी ले सकते हैं और रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्लोरोपाइरिफोस का कर सकते हैं, इमीडा का कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भूमि शोधन करेंगे
0: जी।
1: अब इसी के बाद हम आते हैं बीज शोधन पे।
0: नहीं डॉक्टर साहब, इस तरीके से हमारे किसान भाई भूमि शोधन तो कर लेते हैं
1: जी,
0: लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम गर्मियों की जुताई करें तो उससे भी काफी कीड़े और बीमारियां कम हो जाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है?
1: मैं जब भी हम गर्मी की जुताई करते हैं तो जितने भी हमारे कीड़े हैं उसमें काफी कमी होती है, वो गहरी जुताई होनी चाहिए जिसको हम बोल देते हैं ग्रीष्मकालीन की जुताई। इसको हम ऑर्गेनिक में ले जाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से हम रोग एवं कीटों की रोकथाम करेंगे। इसमें हम ये भी कर देते हैं, मल्चिंग भी कर देते हैं, सोयल सोलराइजेशन, जिसमें हमने पिन्नी ली है, उन पिन्नी की अगर उस पे लेयर लगा देते हैं तो जो उसमें कीट है उन सबको भी हम किल कर सकते हैं। इस प्रकार से काफी लाभ मिलता है और इसको भूमि की जब हम इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो इसकी उर्वरा शक्ति बनाई होगी। ग्रीन मैन्योर, हरी खाद पे हम ढैंचा भी ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, सनई ले सकते हैं। हरी खाद सामान्य रूप से 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करेगी भूमि में, जो हमारी आने वाली फसल के लिए बहुत लाभदायक होगा
0: जी। डॉक्टर साहब, इस तरीके से हमारे किसान भाई भूमि शोधन कर सकते हैं, तो क्या भूमि शोधन करने के बाद में जो बीमारियां हैं और जो कीड़े हैं उनकी संभावना कुछ कम हो जाएगी?
1: जो कीड़े और बीमारी है उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है जो भूमि जनित बीमारियां हैं
0: जी,
1: और जो बीज जनित बीमारी है उनमें भी हमें काफी हद तक फायदा होता है, क्योंकि जो हमने बीज बोया वो जमीन में बोया और जमीन में बोया गया बीज वो जमीन से फफूंद उस पे अटैक करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो इससे हमें काफी लाभ मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, ये बात तो रही कि भूमि शोधन हमारे किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं
1: जी,
0: लेकिन बीज शोधन का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है
1: जी,
0: तो बीज शोधन हमारे किसान भाई किस तरीके से करें?
1: बीज शोधन जो है हमारे किसान भाई, वो बीज पर डिपेंड करेगा कि हम किस फसल की बात कर रहे हैं, कौन सा बीज हम बोने जा रहे हैं, सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे कि सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम धान की बात करते हैं क्योंकि धान मुख्य फसल है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब हम धान की बात करते हैं तो धान का बीज शोधित कैसे करें, मैं एक सरल प्रक्रिया बताता हूं। बिल्कुल किसान भाई सब लाते हैं और दवाई डाली और बीज बो दिया, ये कोई बीज शोधन की कोई भी एक क्रिया नहीं है। सबसे पहले किसान भाई को एक 10 लीटर का पानी ले एक ड्रम में, उसमें 150 से 160 ग्राम सादा नमक डाले, उसको उसमें घोले, उसमें धीरे धीरे धीरे 10 किलोग्राम बीज डालना है
0: जी।
1: जो भी उसमें हल्का बीज हो, जो भी उसमें हल्का बीज हो, उस हल्के बीज को हमको उससे बाहर निकाल देना है
0: जी।
1: हल्के बीज को हमने बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हम उस बीज को 2 से 3 बार साफ पानी में धुल लेते हैं। 2 से 3 बार हमने साफ पानी में धुल लिया। अब इसके बाद आती है बात कि हमको परंपरागत तरीके से शोधित करना है या ऑर्गेनिक तरीके से करना है या प्राकृतिक तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक तरीके की, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से जब हम बीज शोधित करेंगे तो हम बीजा अमृत लेंगे। अब इस बीजा अमृत को हम किस प्रकार से तैयार करें, बीजा अमृत के लिए हमको 20 लीटर पानी लेना है, गोमूत्र लेना है, देसी गाय का गोमूत्र लेना है, 5 किलोग्राम गोबर लेना है, आपका 250 ग्राम मिट्टी लेनी है, 50 ग्राम चूना लेना है, 1 लीटर दूध लेना है। इस सब को मिश्रण को हम तैयार एक ड्रम में डाल लेंगे, अच्छे से घुमा लेंगे, 24 घंटे रखने के पश्चात हम इसको बीज पर संचारित कर सकते हैं। ये हुआ हमारा प्राकृतिक तरीके से बीज शोधन। इसके बाद आते हैं हम ऑर्गेनिक पे
0: जी।
1: अगर ऑर्गेनिक पे हमको करना है तो उसको हम ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना और आपके स्यूडोमोनास, इन सब से ही हम शोधित कर सकते हैं। लेकिन ये बात किसान भाइयों को अवश्य ध्यान रखनी है कि तीनों को एक साथ मिक्स नहीं करना
0: जी,
1: अलग अलग समय पे ये हमको उनको देने हैं और ये बीज शोधित करना है। अब आता है नंबर हमारा कन्वेंशनल, जो सामान्य रूप से रसायन डालते हैं, तो जो हमने वो बीज धुला था उस बीज को ही हम जब कार्बेंडाजिम, 10 किलोग्राम बीज, 10 ग्राम कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये हमने उस पानी में डाला। और इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि पानी भी 10 ही लीटर हो। उससे क्या बेनिफिट होता है, जो हमने दवाई डाली वो 10 लीटर पानी में डाली। कई बार किसान भाई बहुत ज्यादा पानी ले लेते हैं तो सारा पानी हमारा बीज सोख नहीं पाता तो आधी दवाई तो वहीं पर रह गई, इसलिए वो सारे पानी को लगभग सोख लेती है। तो 10 लीटर हम पानी डाले, उसके बाद 24 घंटे उसे भिगोए, उसके बाद उसे किसी छाया में 12 से 24 घंटे के लिए हम रखे या जूट के बोरे में रखे, उसके बाद उसे हम नर्सरी में बोएंगे। इसके साथ ही हम इसमें एजोस्पिरिलम बायो फर्टिलाइजर भी हम इसमें धान पर दे, जिससे कि वो उस पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगा। उसको हम अगर उस पर ब्लास्ट में निकालने के बाद उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम अपने नर्सरी में बीज डाले, जिससे कि बीज हमारा शोधित होगा। और इस प्रकार से हमारा जो है जितनी भी बीज जनित, जैसे कि आपके फालसी स्मट हुआ, इसको हल्दी गांठ बोल देते हैं, ब्लास्ट है, बकाने हैं, इन सब रोगों की रोकथाम इसमें होगी। जो किसान भाई हमारे दाल की खेती करना चाहते हैं, मूंग या उर्द, वो भी उसको बीज शोधित फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम, जो भी ये बायो फर्टिलाइजर है, ये फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बाद हम प्रयोग करेंगे। जो हमने एजोस्पिरिलम किया था वो धान में, आपके मक्का में, बाजरे में कर सकते हैं, इसमें हम राइजोबियम करेंगे। और राइजोबियम की मात्रा हम 20 से 30 ग्राम पर किलोग्राम सीड रखेंगे, जो उस पर वो कोटिंग करेगा, जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी करेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, इस तरीके से हमारे किसान भाई बीज शोधन और भूमि शोधन कर सकते हैं। अंत में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जब पौध डालते हैं तो वो एक अनुमान से जगह में पौध डालते हैं। धान की पौध डालना एक विशेष बात होती है, विशेष जगह होनी चाहिए, लेकिन इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान नहीं रख पाते हैं। इससे होता क्या है कि पौध पतली रह जाती है, और पतली पौध रहने से हमारा जो पौधा है बाद में अच्छी बर्बाद नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमारे किसान भाई को क्या करना चाहिए?
1: देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो आपने सवाल किया ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बीज तो उनको जानकारी है कि मुझे कितना लेना है, लेकिन उस बीज के लिए कितने एरिया में नर्सरी तैयार करनी है उनकी जानकारी वो अंदाजे से रखते हैं, और किसान भाइयों को नहीं है। मैं धान की जब हमें नर्सरी डालनी है, बासमती धान की जब नर्सरी हम डालेंगे, तो हमें एक एकड़ धान के लिए 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त है
0: जी,
1: और 1 किलोग्राम बीज के लिए 25 वर्ग मीटर स्थान पर्याप्त है
0: जी।
1: तो इसलिए 6 किलोग्राम बीज के लिए 150 वर्ग मीटर स्थान पर्याप्त है, जो हमको एक एकड़ धान की रोपाई के लिए पर्याप्त है। इससे यह होगा कि जब हम धान बीज बहुत छोटे एरिया में डालते हैं तो हमारी पतली रह जाती है धान, और उसमें यह होता है कि जो 18 से 22 दिन में नर्सरी तैयार होनी है वो कहीं ना कहीं दिन ज्यादा लेती है, 20 से 25 दिन में जाती है, जिससे पौधे में गांठें बनने लगती है और उसका उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, समय सीमा में वो तैयार नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें उसका एरिया का भी विशेष ध्यान रखना होगा
0: जी।
1: और उसमें एरिया में विशेष ध्यान के साथ उस एरिया में किसान भाई कई बार फर्टिलाइजर का, उर्वरक का प्रबंधन नहीं करते
0: जी।
1: तो उस उर्वरक के प्रबंधन के लिए भी सामान्य रूप से नर्सरी में 3 कुंटल गोबर की खाद या 1 कुंटल केंचवे की खाद, 2.5 किलोग्राम एनपीके, 1 किलोग्राम यूरिया, 400 ग्राम जिंक सल्फेट एक एकड़ के लिए, ये हमारे लिए पर्याप्त है, जिससे आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी होगी
0: जी। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता। खरीफ में बीज शोधन व भूमि शोधन का महत्व जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनुज कुमार बंसल, और उनसे बातचीत कर रहे थे प्रवीण कुमार जी। और अब साथियों, हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सूचना। साथियों, हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी सूचना लगातार हम जो है आपको दे रहे हैं। प्रत्येक बुधवार में जो है, महीने के पहला बुधवार को हम आपको सुनवाएंगे सफल कृषक, और दूसरे बुधवार को सुनवाएंगे सफल महिला कृषक से बातचीत, और महीना के तीसरे बुधवार को हम सुनवाएंगे आपको मासिक कृषि गोष्ठी, और चौथे बुधवार को सुनवाएंगे सफल कृषि स्टार्टअप से जो भैया हैं उनसे बातचीत, और अगर साथियों महीने में पांचवा बुधवार रहा तो हम आपको सुनवाएंगे सफल कृषक से की गई बातचीत।
3: इसी तरीके से गुरुवार को जाएगा आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और दूसरे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान, और तीसरे गुरुवार को आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और इसी प्रकार से चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान, यदि पांचवा गुरुवार पड़ता है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
2: और साथियों, हर महीने जो है शुक्रवार को, जो पहला शुक्रवार है, उसको हम सुनवाएंगे आपको लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। और साथियों, दूसरे शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे कृषि शंका समाधान, कृषि से जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान। साथियों, तीसरे शुक्रवार को हम आपको सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। और चौथे शुक्रवार को हम सुनवाएंगे आपको कृषि शंका समाधान, कृषि जुड़ी समस्याएं व उनसे जुड़े समाधान। अगर साथियों महीने में पांचवां शुक्रवार आता है तो हम आपको सुनवाएंगे लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम। और साथियों, अब हमारा मोबाइल नंबर जो है वो आप नोट कर लिए, 0595-2324-326, जहाँ आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर और SMS नंबर भी आप जो है नोट कर लें, 9410087876। और साथियों, हमारा मेल एड्रेस भी है, जैसा बोलते हैं हम ईमेल एड्रेस, patramela@rampur.gmail.com। हमारे साथी जो हैं आजकल, जो है हमारे युवा साथी हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वे हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते होंगे। और अब हमारी मीना बहन,
3: हमारे पत्राचार हेतु हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश पिन 244901।
2: और अब मीना बहन समय को देखो, मनोरंजन कन को, तो
3: हाँ भैया बिल्कुल,
2: किसान भाइयों और बहनों को सुन रहे हैं जो प्यार सुन लोकगीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना लचके कमरिया हमारी। इस गीत को आवाज़ दे रही सोनका जी और बा अमित जी ने। और अब साथियों, हम आपको सुनवा दें कृषि संकेत कार्यक्रम। लेकिन साथियों, बात से पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सीधे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम प्रगतिशील कृषक से भेंट। श्री पूरन सिंह वर्मा और उनसे बातचीत करी हमारी मीना बहन ने। तो साथियों सुने जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
1: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं ग्राम तालगौटिया, जो कि जिला बरेली को गांव है और तहसील बरेली और ब्लॉक क्यारा। भैया राम राम।
2: राम राम जी।
1: भैया आप इसी गांव में रहते हो?
2: जी जी।
1: अच्छा, आपका नाम भैया?
2: मेरा नाम पूरन सिंह वर्मा है और मेरा गांव का नाम ग्राम तालगौटिया, पोस्ट सिमरा बोरीपुर, ब्लॉक क्यारा, तहसील जिला बरेली।
1: अच्छा अच्छा, तो भैया आपकी उम्र कितनी है?
2: 42 वर्ष।
1: तो आपने पढ़ाई की है भैया?
2: जी, हाई स्कूल तक की है।
1: आगे क्यों नहीं की पढ़ाई भैया?
2: कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जो आगे पढ़ाई ना कर सके।
1: तो इस समय आप क्या करते हो भैया?
2: जी, खेती बाड़ी करता हूँ।
1: तो खेती बाड़ी में इस समय कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं?
2: इस समय गन्ना भी है।
1: हाँ हाँ।
2: और जो खाली खेत है गेहूं कटने के बाद, उसमें हरी खाद मतलब ढेंचा बो रखा है। मेरा खेत तो दोमट है और दोमट में बहुत अच्छा ढेंचा उसमें उसका जमा हुआ है।
1: बीज आपने घर पे अपने तैयार करा हुआ था या फिर कहीं मार्केट से लेके आए थे?
2: जी, मार्केट से लेके आए थे।
1: तो जैसे आपने जब ढेचा बोया तो आपने किस तरीके से बोया था भैया?
2: गेहूं कटने के बाद खेत खाली हुआ, फिर उसकी परेवा किया। उसका परेवा करने के बाद उठाने पर उसको उसकी जुताई कर दी।
1: अच्छा,
2: जुताई करने के बाद उसमें ढेचा की बुवाई कर दी।
1: कई एकड़ में ढेचा बोया है भैया?
2: 1 एकड़ है मैम।
1: तो 1 एकड़ ढेचा बोने के लिए आपको मतलब कितना बीज चाहिए?
2: मैंने 10 केजी बीज डाला था।
1: तो ये कितना बड़ा हो गया इस टाइम आपके खेतों में ढेचा?
2: ये करीब 6-7 इंची।
1: कितने समय बाद तैयार हो जाएगा भैया ढेचा?
2: ये कम से कम 45 दिन में हो जाता है लगभग।
1: अच्छा,
2: 45 दिन में या 60 दिन तक हो जाता है।
1: जैसे ढेचा को खेत में पलटने का सही समय क्या होता है भैया?
2: लगभग 2 महीने के बाद जब तैयार हो जाए, इसमें ठीक तरीके से इसका विकास हो जाए, तो उसके बाद इसको मिट्टी पलटा हर से नहीं तो हैरों से इसको जोत कर मिट्टी में दबा देते हैं। जैसे उस खेत में हमें धान गड़ाई करनी है तो धान गड़ाई करने से पहले उसको जोत कर और मिट्टी में दबा कर उसके ऊपर से पानी भर देते हैं। या फिर वैसे तो सही समय होता है जब बारिश होती है तो ज्यादा बेहतर होता है।
1: अच्छा,
2: और बारिश नहीं हो पा रही है तो ट्यूबवेल या ये जो पानी के साधन है उनसे पानी चलाकर उसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद ये मिट्टी में जब दब जाता है तो स्वतः ही गलने लगता है। गलने के बाद इसकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाने में ये बहुत सहायक होता है।
1: अच्छा
2: हाँ, और बेहद असरदार जैविक तरीका है ये।
1: अच्छा अच्छा, जैसे ढेचा के उपयोग से रासायनिक खादों की आवश्यकता किस हद तक कम हो सकती है भैया?
2: काफी हद तक कम हो जाती है, इससे काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और उसकी उर्वरा शक्ति को शक्ति प्रदान होती है।
1: अच्छा, जैसे हमारे कुछ किसान भैया अगर धान गन्ना या अन्य फसलों में ढेचा का प्रयोग किसानों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाता है?
2: फायदा इसमें काफी है। देखिए, नाइट्रोजन की स्थिति जो होती है ना, ढेचा और सनई जैसी जो दलहनी फसलें होती हैं, नाइट्रोजन को खींच कर मतलब सोख कर मिट्टी में जमा करती है ये।
1: अच्छा
2: हाँ, और हरी खाद के गलने से सड़ने से ना ये मिट्टी में कार्बन पदार्थों की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगती है।
1: क्या ढेचा की फसल से मिट्टी की संरचना और पानी धारण क्षमता में भी सुधार होता भी है क्या?
2: जी।
1: किस तरीके से?
2: ये पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटास और सूक्ष्म तत्व जो होते हैं पोषक तत्व, वो प्रदान करता है।
1: अच्छा, तो ये कहो ये हमारे खेतों के लिए या खेतों की मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद है भैया?
2: बहुत ही उपयोगी है।
1: अच्छा, तो इससे ये है कि रासायनिक दवाइयों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है, अगर ढेचा की अगर खाद आपने खेत में तैयार कर ली तो।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: इसके अलावा आपने बताया कि हमारे खेतों में गन्ना भी है भैया?
2: जी जी।
1: हाँ, तो गन्ना आपका लगभग कितने दिन का तैयार हो गया भैया?
2: गन्ने को तो काफी समय हो गया, मतलब 2-3 महीने हो गए, 3 महीने।
1: अच्छा, तो इस समय गन्ना की खेती में कौन कौन से काम चल रहे हैं भैया?
2: उसकी निराई गुड़ाई खुदाई चल रही है इस टाइम।
1: पशु तो पालते हो भैया?
2: हाँ हाँ, पशु पालते हैं।
1: अच्छा, तो आप पशु पालते हो तो इस समय आपके पास कितने पशु हैं भैया?
2: 3 पशु हैं, तीनों भैंसी हैं।
1: अच्छा, तो दूध दे रही है भैंसे आपकी?
2: एक भैंस दे रही है।
1: दूध भैंस दे रही है, तो उसे अपने खाने में ले लेते हो या फिर उसे बेच देते हो भैया?
2: नहीं, खाने में इस्तेमाल करते।
1: बेचते नहीं हो?
2: बेचते नहीं है वो, इसलिए क्योंकि बच्चे अब थोड़े छोटे हैं ना, तो उनको अभी से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो वो शारीरिक रूप से मजबूत कैसे होंगे।
1: हाँ जी, बात सही है भैया। और जैसे जो उनका गोबर होता है भैंसों का, तो उसका क्या करते हो?
2: उसका ये खेत खाली हो जाते हैं तब खेतों में डाल देते हैं, उससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति और मजबूत हो जाती है।
1: बढ़िया है। और भैया जो घर का कूड़ा करकट होता है उस पर क्या करते?
2: उसको भी उसी जहाँ खाद डालते हैं वहीं पे डाल देते हैं गड्ढा बना के, ताकि वो गल जाती है, गल के खाद के रूप में जब हो जाती है तो हम उसको खेत में डाल देते हैं।
1: अच्छा, और जैसे इस समय गर्मी का समय चल रहा है और बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है इस समय, तो आप ऐसे गर्मी के मौसम में अपने पशुओं का ध्यान किस प्रकार से रखते हो?
2: उनको मतलब सुबह जल्दी नहला धुलाकर बांध देते हैं और शाम को भी उन्हें नहलाते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ, उसको नहलाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ऊपर से मतलब जो छप्पर है उसमें बांधते हैं ताकि गर्मी ना लगे।
1: अच्छा, उसमें तरी रहती होगी।
2: हाँ।
1: अच्छा, और जैसे खाने पिलाने में उनके किस तरीके से ध्यान रखते हो?
2: खाने पिलाने में अभी चरी बो रखी है खेत में, तो काट के लाकर उसमें चारा मशीन से काट कर और चोकर वगैरह मिलाकर उनको डाल देते हैं।
1: उनके नीचे जैसे साफ सफाई का किस प्रकार से ध्यान रखते हो?
2: साफ सफाई मतलब नीचे ईंट बिछा रखी है तो उस पर धुलाई उलाई भी कर देते हैं और बाकी गोबर हटा के साफ सफाई बनी रहती है उनके नीचे। प्रतिदिन शाम सुबह करते हैं ये काम।
1: अच्छा, जो उनकी नांद होती है उसको आप डेली साफ करते हो?
2: डेली डेली साफ करते हैं, डेली साफ करके स्वच्छ पानी से धोकर तब दोबारा सानी लगाते।
1: और जैसे उनके लिए जो पानी पिलाने का समय सुबह या शाम, कई बार पानी पिलाते हो दिन में भैया?
2: दो बार, सुबह और शाम,
1: क्योंकि इस समय गर्मी का समय चल रहा है भैया ना, तो जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही हमें अपने पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए पानी का ना।
2: जी, सुबह करीब 8 बजे पानी उन्हें पिला देते हैं, उसके बाद नहला धुला कर अंदर बांध देते हैं।
1: अच्छा,
2: फिर दोबारा शाम को 4 बजे के समय पे फिर निकाल कर उनको नहलाकर चारा डालने के बाद में उनको दोबारा बाहर निकाल कर बांध देते।
1: अब भैया जैसे हमारे बहुत सारे किसान भैया बहन आपके लिए सुन रहे हैं और बहुत लोगों तक आपकी आवाज जा रही है, तो आप उन किसान भैया बहनों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने खाली खेतों में अगर जैसे भैंसा बोना चाहें तो किस तरीके से बोए?

0: और उस हरी खाद किस तरीके से तैयार करें।
1: मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा, जो केमिकल उर्वरक लगाते हैं उसमें कम से कम लगाएं और हरी खाद का इस्तेमाल ज्यादा करें, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति और अधिक हो सके और हमें अच्छी पैदावार मिल सके।
0: जी तो ऐसे किस तरीके से मतलब ढेंचा बोएं और किस तरीके से तैयार करें।
1: जब खाली गेहूं कटने के बाद खाली खेत हो जाते हैं, उनका परेवा कर दें। परेवा करने के बाद जब खेत जुताई योग्य हो जाए तो उसकी जुताई करवा दें। उसके बाद में ढेंचा की बुवाई कर दें। बुवाई करने के बाद जब पानी योग्य हो जाए पानी लगा दें। फिर अगर ग्रोथ कम कर रहे हैं पौधे उसमें तो यूरिया का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा अधिक मात्रा में न डालें, और ताकि हमारी फसल अच्छे से तैयार हो जाए।
2: अभी साथियों सुना आपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, और अब मीना बहन का चीज जानकारी दे रही है हमारे किसान भाइयों
3: हरदीप
2: को।
3: भैया, आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, कभी गर्मी ज्यादा, कभी नमी, तो कभी अचानक बारिश। ऐसे मौसम में पशुओं में कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं। अगर समय पर टीकाकरण हो जाए तो पशु सुरक्षित रहता है भैया।
2: हाँ, सही बात करी उम्मीद मीना बहन। जो है हमारे कई किसान भाई बहन जो सोच लेते हैं कि हमारा पशु बिल्कुल ठीक है, तो इसे देखा टीका की क्या जरूरत है, ये है ना। तो लेकिन बीमारी आन को इंतजार करना जो है ठीक ना होता है, टीकाकरण शरीर में समय से पहले करना बहुत जरूरी है, जो कि सुरक्षा देते हैं।
3: हरदीप भैया, गांव में कई बार गला घोट और लंगड़ा बुखार और खुरपका मुंह पका जैसी बीमारियों में भैया फैल जाती हैं। एक पशु बीमार हुआ तो धीरे धीरे दूसरे पशु भी उसकी सब चपेट में आने लगते हैं। ऐसे समय में टीकाकरण बहुत जरूरी हो जाता है भैया।
2: बिल्कुल सही बात कही मीना बहन। खुरपका मुंहपका बीमारी जो होती है, हमारे पशु उनके मुंह और खुर में जो है छाले पड़ जाते हैं और पशु जो है चारा खाना छोड़ देते हैं, दूध भी जो है काफी कम मात्रा में देते हैं। इसलिए जाको समय पर टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी है।
3: और गलघोटू बीमारी तो बरसात के मौसम में ज्यादा दिखने लगती है भैया। इसमें तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी होती है, कई बार बीमारी जानलेवा भी बन जाती है भैया।
2: बिल्कुल सही बात कह रही हूँ मीना बहन। इसलिए हमारे किसान भाइयों और बहनों को पशु जो हमारे केंद्र होंगे जहाँ हमारे पशु उनको इलाज होता है, वहाँ जाके समय समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये तो रही जानकारी कृषि संकेत कार्यक्रम के अंतर्गत, और अब हम आपको बता दें कल के मौसम की जानकारी। साथियों, कल का उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हवा की गति साथियों 19 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। आर्द्रता साथियों 34% रहने की संभावना है। और अब समय चलो है मीना बहन कार्यक्रम समाप्त करें, तो इसी के साथ आपके भैया हरदीप की
3: और आपकी बहन मीना की
2: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विविधा। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा रिश्तों की परवरिश। इस विषय पर वार्ता आप तक पहुंचाएंगी समीना बानो।
1: मैं अपनी बात का आगाज इस शेर से कर रही हूँ। ए दुश्मन समाज तू ये बात जान ले, ए दुश्मन समाज तू ये बात जान ले, खुद को मिटा के होती है रिश्तों की परवरिश। इसी सिलसिले का एक और शेर पेश खिदमत है, जिसके लहू में होती है पाकीजगी जनाब, जिसके लहू में होती है पाकीजगी जनाब, रस्म वफा निभाना कोई भूलता नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में पैदा होता है और इसी समाज में मरता है। जब इंसान समाज में पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो रिश्ते की गोद में आँख खोलता है, चाहे वो माँ बाप की गोद हो, चाहे दादा दादी की, चाहे नाना नानी की गोद हो, या माँ बाप की, या किसी संबंधी की गोद, और इन्हीं गोदों में इसकी परवरिश होती है। इसीलिए इंसानियत का तक

आशा है कि हमें हर रिश्तों को अच्छी तरह समझकर निहायत ईमानदारी, वफादारी और त्याग की भावना से निभाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब रिश्ते अच्छी तरह निभाए जाएंगे तो इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे की परवरिश करते हैं, और हम जितनी अच्छी परवरिश करेंगे हमें उस बच्चे से उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से जब हम अपने रिश्तों की परवरिश अच्छी करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबको सम्मान देंगे, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। और जब इन रिश्तों का रिजल्ट अच्छा निकलेगा, हमारे समाज का रिजल्ट भी अच्छा निकल कर आएगा। जब अच्छा समाज स्थापित होगा तो हर तरफ आपसी रिश्तों में प्रेम, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत होगा, और फिर भाई भाई के खून का प्यासा नहीं होगा, और पति पत्नी के बीच भी मधुर संबंध बनेंगे। इसके लिए हमें त्याग की भावना को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो संबंध होते हैं ये त्याग की भावना से निभाए जाते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को त्याग करेगा, अपनी मोहब्बत देगा, अपनी कुर्बानियाँ पेश करेगा, तभी मोहब्बत आगे बनेगी और हमारे संबंध अच्छे बनेंगे। लेकिन ये सारी बातें तब संभव हैं जब रिश्तों में ना तो लालच हो, क्योंकि लालच एक बुराई की जननी है। जहाँ लालच होता है, माँ खून के रिश्ते पामाल हो जाते हैं और भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। ये रिश्ते परवान नहीं चढ़ते, क्योंकि इसमें लालच होता है। जब लालच होगा तो परवान कहाँ से चढ़ेंगे? परवान वही चीज़ चढ़ती है जिसमें मोहब्बत हो, प्यार हो, स्नेह हो, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे वो रिश्ता बहन भाई का हो, या किसी अच्छे संबंधी का हो। अच्छे संबंध न होने के कारण घर भी टूट जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, दीक्षा यानी तालीम और तरबियत, इन दोनों का हमारे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। हमें शिक्षा ऐसी लेनी चाहिए जो हमें अपने परिवार के लिए आगे बढ़ाने के लिए, समाज को तरक्की पर पहुंचाने के लिए उत्तम हो। इसके लिए हमें जितने उत्तम शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जितनी हमारी उत्तम शिक्षा होगी हमारा परिवार उतना ही ऊंचा होगा, उतनी ही परवरिश ऊंची होगी। क्योंकि उत्तम शिक्षा हासिल करने के बाद वो व्यक्ति आदत में और चरित्र में बहुत उत्तम हो जाते हैं। जब व्यक्ति उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे उत्तम दीक्षा, तरबियत यानी अच्छे माहौल में उसकी परवरिश होती है, तो वो समाज में सभ्य व्यक्ति बनता है, अच्छा व्यक्ति बनता है। और सभ्य व्यक्ति का मतलब है एक सभ्य समाज की स्थापना। ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बहुत अच्छा हो, बल्कि इसके विपरीत कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी अगर उसको परवरिश अच्छी मिली है, संस्कार अच्छे मिले हैं, तरबियत अच्छी मिली है, अगर अच्छा माहौल मिला है, तो वो व्यक्ति अच्छे समाज के लिए उपयोगी साबित होता है। कि अच्छी परवरिश, हमारी सभ्य परवरिश जब ही कहलाई जाएगी, हमारे जो ये रस्म रिवाज हैं, ये रिश्तों की जो परवरिश है, अगर हमें रिश्तों को अच्छा चलाना है, रिश्तों को आगे बढ़ाना है, तो हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र, इन सब का ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी कुछ बातें ऐसी त्याग करनी पड़ेंगी जो हमारे मित्रों को, जो हमारे दोस्तों को, जो हमारे रिश्तेदारों को पसंद आए, तभी तो ये परवरिश आगे बढ़ेगी। अब आप एक मिसाल ही ले लीजिए, हमारे घर में एक छोटा बच्चा हो और उसकी परवरिश हम अच्छी ना कर पाए, उसमें परवरिश में कुछ कमी आ जाए, तो जब वो परवरिश में कमी आएगी, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, वो संस्कार हम उसे नहीं दे पाए जो उसकी परवरिश में हमें देने चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है कि उस परवरिश में जब हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए तो वो अच्छा रिश्ता नहीं निभा पाएगा। अच्छी तरबियत नहीं दे पाई तो, अच्छी तरबियत जब नहीं मिली तो परवरिश

0: परवरिश अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए जब बच्चे को अच्छी परवरिश दोगे, बच्चा अच्छा बढ़कर हमारी इज्जत करेगा, वो हमारा नाम रोशन करेगा। इसी तरह से जब हम रिश्तों को अच्छी परवरिश में तब्दील करना चाहेंगे तो रिश्ते अच्छे जब ही बनेंगे जब हमें उनकी परवरिश करनी होगी। रिश्तों की परवरिश का मतलब उन लोगों के साथ अपना टाइम दें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। ये सारी बातें रिश्तों की परवरिश में सहायता करती हैं, रिश्तों की परवरिश में मदद करती हैं। अगर हम संस्कार अच्छे मिले होंगे तो हमारे रिश्ते परवरिश करेंगे, बुलंदियों पर पहुंचेंगे। और अगर हमारे रिश्तों की परवरिश में कमजोरी होगी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने हमें रिश्तों के बारे में अच्छा ना समझाया होगा, तो हमारी परवरिश रिश्तों से अलग होगी। परवरिश हमारी मिली, हमें संस्कार मिले, लेकिन रिश्तों को नहीं समझाया गया कि चाचा के साथ कैसे निभाना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, हमसाए पड़ोसियों के साथ कैसा रहना चाहिए। ये सब अगर अच्छा बताया जाएगा तो रिश्तों की परवरिश अच्छी हो जाएगी। और परवरिश जब अच्छी होती है तो सिर्फ घर ही नहीं पनपता बल्कि हमारा मोहल्ले में भी नाम होता है, हमारा समाज भी मजबूत होता है। जिनकी परवरिश अच्छी हुई है ये वो लोग हैं जो अपने समाज में रहकर अपना नाम भी रोशन करते हैं और अपने समाज का नाम भी रोशन करते हैं। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा नाम भी रोशन हो। ये जब ही होगा जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, रिश्ते परवरिश करे हुए होंगे, रिश्ते अच्छे बने हुए होंगे, तभी हम तरक्की कर सकते हैं। आखिर में ये एक संदेश समाज के लिए पेशे खिदमत है कि हम अपने परिवार की अच्छे व ईमानदार, वफादार और त्याग की भावना के माहौल में निस्वार्थ और सच्चे मन तथा लालच रहित, जिसके मन में कोई लालच ना हो, प्रेम की भावना हो, दूसरे की मदद करना चाहता हो, वो दूसरे की सहायता करे। ये सब जब ही होगा जब अच्छी परवरिश मिली होगी, क्योंकि जितने अच्छे माहौल में परवरिश की होगी उतने ही सभ्य समाज निर्मित होगा। तो अच्छी परवरिश के लिए अच्छा समाज, सभ्य समाज, हमारा माहौल, हमारी परवरिश, अच्छे लोग, ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। कि होगा दिलो दिमाग मुअत्तर खुदा गवाह, होगा दिलो दिमाग मुअत्तर खुदा गवाह, खुशबू मेरी वफाओं की जाएगी जिस तरफ, खुशबू मेरी वफाओं की जाएगी जिस तरफ।
1: रिश्तों की परवरिश, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम। वार्ता आप तक पहुंचा रही थी समीना बानो। विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कुछ जरूरी संदेश।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। आज रात्रि 8 बजे का समय रहेगा गीत गाता चल का। सबरस इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे आज रात्रि 9:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे बीना और सपना शर्मा। हेलो रामपुर, सुनना ना भूलिएगा इस कार्यक्रम को आज रात्रि 10 बजे। कल सवेरे 6:05 का समय रहेगा भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना का। आज का चिंतन इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल सवेरे 6:30 पर। कल सवेरे 6:35 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश।

जानकारी आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर आसिफ अली, जिसमें जानकारी का विषय होगा डेंगू और चिकनगुनिया। श्री रामचरितमानस गान का प्रसंग। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे कल सवेरे 6:45 पर। लोक रंग, लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सपना दीक्षित के स्वर में कल सुबह 7:00। 7:31 पर आप सुनेंगे सुबह सवेरे।

कल सुबह 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे 102.9 मॉर्निंग हिट्स गौरव भारत देश के। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल सुबह 9:25 पर। कल इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रमुख वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में उर्दू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को सुनाना भूलिएगा कल सुबह 9:30 पर।

उपशास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आएंगे कल सुबह 9:50 पर। कल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शहनाई वादन श्याम लाल को, राग होगा रामकली। आपके अनुरोध पर फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 10:05 पर। 10:30 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक जिंदगी के आईने में, एपिसोड संख्या होगी 12। मन भावन श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित यह कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा कल दिन में 11:30 पर। गीत आपके नाम इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे कल दिन में 12:10 पर। परिवार जगत कल दिन में प्रसारित होगा 1:15 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से शेष आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: हमारा प्रथम कर्तव्य इस राष्ट्र के प्रति है,
1: जिस देश पे हमने जन्म लिया,
0: जिस भूमि पर हमने चलना सीखा,
1: जिसका अन्न हमारे शरीर में लहू बनकर दौड़ रहा है,
0: उस धरती का ऋण है हम पर।
1: हमारा कर्तव्य है हम अपने देश की रक्षा करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब से
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
1: मेरी बुढ़िया के
0: नाम। दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं

0: के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, जहाँ पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहाँ पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहाँ ट्रेनिंग्स दी गई है।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक

निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिएगा गजलें। आज की कलाकार हैं संजीव पाराश्री और दिव्यता अग्निहोत्री। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रही हैं संजीव पाराश्री के स्वर में गजलें।

अभी आप सुन रहे थे संजीव पाराश्री और दिव्यता अग्निहोत्री के सुर में गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश के सुर में, और इस गीत के लिए फरमाइश हम तक भेजी है बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और फुंदीबाई बागरी ने। कार्यक्रम के पहले गीत को पसंद किया है बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर सुमिता गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुनने वाले हैं सुधा शर्मा काजल मीरा सोनाली और अनामिका शर्मा। जेल रोड रायगढ़ से खत आया है लालचंद्र मिश्रा रमेश चंद्र और कुमकुम का। डोंडी लोहारा बालौद से हैं कमलेश शनि चौक खंडवा से हैं पिंकी मिंकी और रिंकी। बिलाईगढ़ से खत भेजा है देव तुषार और अजय देव ने। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से सुनने वाले हैं दीपक ढींगरा विजय और अनुश्री ढींगरा। इन्हीं के साथ हैं राजकोट से हेमा सुधा और संध्या। डोगर गांव छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है

राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय की। जालंधर से सुनने वाले हैं मीना कौर और संदीप। मुताला महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद किया है विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम शंकर ने। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू की। बक्सर बिहार से हैं राज डी एस अंसारी और इन्हीं के साथ हैं फातिमा राज अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से हैं बीबी अंसारी, डब्लू अंसारी और दानिश। झील रोड रायगढ़ से हैं नरेंद्र यादव, महेंद्र और जाह्नवी। बागपत से इस गीत को पसंद किया है ममता ढींगिया और कुणाल ने। चमन पार्क दिल्ली से इस गीत को सुना चाहा है सोनम और अदीबा ने। पुराना तालाब डुमराज से सुनने वाले हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमनाज अंसारी और शबनम बानो। चंद्रनगर सहारनपुर से इस गीत को सुना चाहा है दीप शंकर यादव, प्रभा रानी, सुरेश और नरेंद्र ने। खंडवा से हैं राधिका, अनिता, सपना और राकेश। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मुकेश के स्वर में फिल्म अनाड़ी से।

फिल्म अनाड़ी में अभी आपने सुना मुकेश को, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जितका किशनपुर से इस गीत को सुनने की ख्वाहिश हम तक भेजी है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज ने। ईदगाह गेट मुरादाबाद से हम तक मैसेज आया है शफी अहमद अंसारी और रईस दूल्हा अंसारी का। कार्यक्रम के इसी गीत को इन्हीं के साथ पसंद किया है। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया ने। छत्रपति संभाजी नगर से सुनने वाले हैं राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। रेशमी नगरी मुबारकपुर से हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रकीबा शाहीन, तूबा और शमीम अख्तर, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं आजमगढ़ से। नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है लक्ष्मी देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, कीर्तन पुरी गोस्वामी और इन्हीं के साथ हैं निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल ने। अनारकली बाजार जगराओं से हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, विनोदपुरी और जयपाल यादव। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है बेड़ी से राजेश, सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज ने। जमशेदपुर से सुनने वाले हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और इनके बहुत सारे साथी। पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है मिंटू, पिंकी और आरती अरोड़ा ने। मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करियाना उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सागर, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना, ओमवती, खनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह ने। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनने वाले हैं पुणे से पंकज, प्रियंका और इनके मम्मी पापा। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर

E. करेली बरेली से इस गीत को पसंद किया था मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा शमीम और माहे नूर ने। गांव नथाना पंजाब से इस गीत को सुना चाहा था हरजिंदर, जसवीर, जसी और इनके साथियों ने। ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से थे तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनना चाहा था अजीत कसाना, माया देवी, आदित्य और इनके बहुत सारे साथियों ने। राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से इस गीत को पसंद किया था आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया और आरुष ने। बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा था नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और इनके मम्मी पापा ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। फाजिलका पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है भूषण, विशु, विशाल, शालनी, वाणी और इनके साथियों ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से सुनने वाले हैं हाजी गफ्फार खां, सिमरन खान, राजिया खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इनके साथ हैं इरफान खान। भटिंडा रोड डवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया और लकी नारंग, अकरम हुसैन, बीगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज नदीम, शमीम अकरम, ममता रानी, पूनम कुमारी, ये सभी हमारी श्रोता साथी हैं कलेर बिहार से। मलौट पंजाब से हम तक इस गीत को सुनने की ख्वाहिश आई है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, साइना और निवान शर्मा की। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से इस गीत को सुनना चाहा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया है प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय ने। सहारनपुर गांव कुम्हार हेड़ा से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और इन्हीं के साथ हैं अदीब हसन और इनके बहुत सारे साथी। जामा मस्जिद रोड सनावत से हमें ख़त आया है हाजी इस्तेहाक मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी का। वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से सुनने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से इस गीत को सुना चाहा है लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना अंसारी और इनके साथियों ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से सुनने वाले हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इस्तेहाक, खतीजा मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा।

यह वतन माल महाराष्ट्र से इस गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशम तक आई है लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, शैलेश प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और रियांश की। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म गोरा और काला से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार को। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से इस गीत को पसंद किया था मुन्ना भाई सुनकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से सुनने वाले थे राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। कुंडलवाणी महाराष्ट्र से थी गंगाधर सावनकर और विजय लक्ष्मी। बुडाला महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद किया था अमोल, शोभाताई दीपाली और श्लोक कुमार ने। इन्हीं के साथ थे सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमेध कुमार। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक और यश मंसूरी की फरमाइश पर। वार्ड नंबर 1 फुफाली जिला यवतमाल से हैं जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। महाराष्ट्र से हैं रुपेश, महेश, प्रगेश और प्रतेश।

0: सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से इस गीत को सुना चाहा है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येलेश और इनके साथियों ने। डेर पाटल गुजरात से सुनने वाले हैं धीरज। बाबा कुटीर रायगढ़ से इस गीत को सुनने के लिए हम तक पसंद भेजी है शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान ने। अमरावती महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है प्रवीण, योगिता, प्रियाली और इनकी साथियों ने। शीतला चौक खंडवा से हैं विशाल सिंह और विवेक सिंह। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म एक फूल दो माली से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।
1: ये पर्दा

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीत का कार्यक्रम गीत गाता चल। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: और संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।

0: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
4: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
5: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
5: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
4: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
2: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend Piyush Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Taga Ram Bhil, Ratilal Mohanlal Bori Sagar, Swami Brahmadev and Kumar Bose. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
4: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India or SIDBI today, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
6: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
4: The initiatives launched include the SIDBI MacFin Mart, a digital platform to help MSMEs access machinery through a structured marketplace supporting price discovery, standardization, and technology adoption. The finance minister also launched the RRB co-lending portal to operationalize partnerships between SIDBI and regional rural banks for improving credit flow in rural and underserved regions. Another major initiative launched was MOR, or Modernization of Rural Enterprises, a program aimed at providing

इसी गीत के साथ सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं हेलो रामपुर।

0: हेलो रामपुर सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आइए देखते हैं हमारे पहले श्रोता साथी कौन हैं जिनसे हमारी बात होने जा रही है। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बताइएगा अपना।
1: आपको दीपिका मैम से मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से पड़ता है, मेरा जिला है, उसे मंडल में लगता है, कानपुर में लगता है, तो छोटा सा जिला है, तो उसी से बात कर रहा हूँ।
0: सतीश जी, आज आपकी कॉल लगी है और आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
1: ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, जैसे अभी तो गर्मी पड़ रही तो पानी ज्यादा पीना चाहिए और पक्षियों को पिलाना चाहिए, पुष्प जानवर हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए, बुजुर्ग लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, तो पेड़ पौधे ना काटे हैं और पेड़ पौधे लगाना चाहिए कि पर्यावरण बचाना चाहिए, क्योंकि इसी जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमारे लोगों को क्या होगा, इसलिए गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, गर्मी पड़ती है तो इसी लोग दिक्कत आती है, तो ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ये कहना चाहता हूँ।
0: सतीश जी, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने गर्मी के मौसम में।
1: अभी अब गर्मी के मौसम तो जैसे नींबू पानी है उसका सेवन करना चाहिए, गन्ना का रस है तो उसका सेवन करना चाहिए, तो अभी हरी पत्ती वाली सब्जियाँ नहीं रहेंगी तो अभी तो खीरा है, ककड़ी है, कलीले हैं, तरबूजा है, उसका सेवन करना चाहिए कि गर्मी मौसमी फल को सेवन करना चाहिए
0: जी।
1: और जो सब्जी में है तुरैया है, भिंडी है और सब्जी है, तो उनका सेवन करना चाहिए।
0: आपकी हमारे कार्यक्रम में कॉल लगी है।
1: तो आज फिल्म का नाम है दिल गाने वाले ओ प्रिया प्रिया, उसमें कोई तो आपको गाना मिले तो उसमें कोई सिलेक्ट कर देना, उसे आपको गाना बताइए प्रिया प्रिया, और दिल फिल्म में कोई फिर आपको मिल जाए तो उसमें कोई सुना दीजिए।
0: सतीश जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और अपना
1: मैं तक तो मित्रों को नाम देना चाहता हूँ
0: जी। दीजिए,
1: पहले आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ सबसे पहले, और दिव्यांशु हैं, समा प्रवीण हैं, वासी हैं और बख्तार जितने तमाम सुनने वाले हैं सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, राकेश शिमला से अनुप कुमार भट्टाचार्य जी है और मांगीलाल चंदेल जी, सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, गाना मेरे प्ले कर दीजिए मैम जी।
0: सतीश जी, अपनी पसंद का सुनिए ये गीत।
1: अब मैम पूरा गाना सुनवा दीजिए मेरा।
0: कमल खान, कुमार सानू, अलका याग्निक और नितिन मुकेश के स्वर में फिल्म दिल से ये गीत। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कार्यक्रम हेलो रामपुर में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जो फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो हेलो रामपुर,
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूं।
0: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: सर नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। ये बताइए आजकल क्या चल रहा है?
1: आजकल घर पर ही हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, घर पर आराम कर रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: रामपुर सुन रहे हैं और खत लिख रहे हैं।
0: ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। सर आज आपकी कॉल लगी है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: संदेश तो यही देना चाहूँगा कि आकाशवाणी रामपुर सुनते रहो, गुनगुनाते रहो, कॉल लगाते रहो।
0: बिल्कुल, और हर गम से दूर रहो।
1: जी बिल्कुल।
0: सर आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे?
1: मूवी का नाम है नया दौर, रफी साहब की और आशा भोसले की आवाज है और गाने के बोल रहे हैं जब जब जुल्फे तेरे सवारियों का दिल मच ले। और कुछ सुनने वालों के नाम है
0: जी बताइए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, सूफी मस्जिद से शाहिदा परवीन, शानूर अंसारी, शबनम अब्बासी, मसूर हुसैन, रीना तमान, गुलाब खान, आकाश रस्तोगी, नासिर भाई रिक्शा वाले, पम्मी पक के बाद से संदीप सक्सेना, हबीब अहमद इदरीसी, यही सब सुनना चाहेंगे।
0: सर कार्यक्रम में कॉल लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं,
1: बहुत शुक्रिया।
0: आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में, फिल्म है नया दौर।

हेलो रामपुर, हेलो रामपुर, लगता है हमारे श्रोता साथी की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए तब तक सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया है।

हेलो रामपुर, हेलो रामपुर।

हेलो रामपुर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है। हेलो हेलो रामपुर, लगता है किसी वजह से हमारे श्रोताओं से बातचीत हो नहीं पा रही है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है और ऐसा हो चुका है 2 बार। तो चलिए हम सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये गीत अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के स्वर में। फिल्म है बाहर आने तक।

0: दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जो हेलो रामपुर में जुड़ना चाहते हैं। हेलो रामपुर।
1: हेलो, हेलो रामपुर
0: जी, नाम बताइएगा अपना और हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जो हमसे बात कर रहे हैं।
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: अनूप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि, असम से तालुका है, है ना
0: जी।
1: और हमारे दीपिका जी, एक बात कहो आपको।
0: जी बताइए।
1: जीवन का हर दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कोई भी बीता हुआ दिन दोबारा नहीं आता, है ना?
0: बहुत अच्छी बात कही सर आपने
1: जी। और दीपिका जी।

0: बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब आखिर तक जब फोन लगता है तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना।
1: और इस समय आपकी हमारी बातचीत हो रही है, हमें भी उतनी ही प्रसन्नता हो रही है जितनी शिद्दत से आपने कॉल लगाई थी।
0: जी, तो चलिए आज इस प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
1: जी नाम बता,
0: फिल्म का नाम है हाथी मेरा साथी, और गाने का बोले से चल चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी चल ले चल, खटारा खींच के चल यार, धक्का मार बंद है मोटर कार, ऐसे करके गाने हैं। और दीपिका जी को दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
1: जी बताइएगा।
0: पहले है हमारे सतीश भाई के लिए, सतीश भाई बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। और सेकेंडली बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, अमर सिंह साहू जी है, प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, और उसका नाम है विजय सिंह लखेरा। और कश्मीर से हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और खास करके दीपिका जी के लिए, है ना
1: सर कार्यक्रम में आपने कॉल लगाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा
0: थैंक
1: रहे
0: यू
1: हैं
0: मैम।
1: आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।
0: जी जी थैंक यू।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जिनसे हमारी बात होने जा रही है। हेलो,
1: रात की चांदनी आपके आंगन में आए, हर तारा लोरी गाते सुलाए, और आए इतने हसीन ख्वाब कि आप नींद में भी मुस्कुराए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, नाम बताइएगा।
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ मैडम, पालदाना का, इंदौर से।
0: इंदौर से रेडियो सेट पर हमारे साथ जुड़ी हैं हसीना जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे मैडम, आपके?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज आपकी कॉल लगी है, क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोता साथियों से?
1: सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ मैडम कि आप कब से निभा रहे होंगे, तो कम से कम अपना पानी पीने का ध्यान रख लीजिएगा और घर जाके भोजन जल्दी कर लीजिएगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी,
0: आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फूल और कांटे का गाना है और गाने के बोलने

0: करता है, ये सुना दीजिए।
1: कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत अलका याग्निक और
0: शुक्रिया।
1: कुमार सानू के स्वर में, फूल और कांटे फिल्म से।

0: हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर मैम जी, आदाब।
0: आदाब। हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जिनसे हमारी बात चल रही है?
1: मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निम्न श्रोता अनिसुर रहमान बात कर रहा हूँ मैडम आपसे।
0: अनिसुर रहमान जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल लगी है। आज आपकी कॉल लगी है, क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि फिलहाल आपके प्रोग्राम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिलहाल दूर दूर से कॉलें आती हैं और नए नए श्रोताओं की कॉलें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है रात के समय में। हेलो रामपुर में
0: जी, कार्यक्रम में आपने कॉल लगाई है तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, मैं फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी और कोई से भी सॉन्ग ले लेना, हम कोई से भी सॉन्ग प्ले कर देना मैम आप उस मूवी का। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैम
0: जी बताइए।
1: जी, गर्मी का मौसम हो रहा है तो गर्मी के मौसम में मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि अपने पशु और अपने पक्षियों का फिलहाल सभी का ध्यान रखना चाहिए और फिलहाल गर्मी के मौसम में जब भी घर से बाहर निकलें तो अम्ब्रेला लगा के निकलें तो बहुत अच्छा रहेगा मैम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अपने सेहत का ध्यान रखें क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। कार्यक्रम में आज आपने कॉल लगाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का
1: मैम कुछ
0: ये
1: नाम
0: गीत।
1: लेना चाहता हूँ मैम,
0: जी बताइए।
1: ग्राम क्रिएटर से मोहम्मद कामिल।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ టచ్ చే.

0: हेलो रामपुर,
1: हेलो रामपुर।
0: हमारे कौन
1: हेलो,
0: से श्रोता साथी हैं जी, बताइएगा अपना नाम।
1: सत्यम बात कर रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश से।
0: सत्यम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी कॉल लगी है और चूंकि समय भी बहुत हमारे पास सीमित है, तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: गाने को सुना दीजिए, सारे गाने बढ़िया है।
0: कार्यक्रम में आपकी कॉल लगी है और आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी और अलका याग्निक उदित नारायण के गाए इसी गीत के साथ आज का हेलो रामपुर कार्यक्रम अब संपन्न करने की दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो रामपुर। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gundola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operations was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sanshu border outpost in the morning tomorrow, where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण। कल प्रातः 5:50 पर मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर अपनी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।